0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सिंधे। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक स्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। पर्यटन मंत्री रिशा जिवाल के अनुसार आदिस अबेबा को हब के रूप में इस्तेमाल करते हुए इथियोपियन एयरलाइंस का मॉरिशस आगमन अफ्रीका के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका के लिए विशाल अवसर खोलता है। उनके मुताबिक इससे न केवल पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि ऑफशोर और आयात निर्यात क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा। कल गुरुवार को रियोबेल के पास स्थित बेलिया पोम्पुनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के जियोमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद से संबंधित है। उपस्थित संगठनों के अनुसार ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसमें उखड़े हुए फिलाओ पेड़, क्षतिग्रस्त गैबियंस और तटवर्तीय

से संबंधी समस्याएं शामिल है। विशेष रूप से सार्वजनिक परामर्श और परियोजना की शुरुआत में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। क्यूपिप कॉलेज से ये विज्ञप्ति चंद्रदेव सिंह जदुसीरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि आज

0: को पढ़ाई नहीं होगी। आपको बता दें कि चंद्रदेव सिंह जादू सेरू शिक्षक और फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख थे। हालांकि कर्मचारियों को सुबह 8:30 से कॉलेज आने की मांग की जाती है ताकि स्वर्गीय शिक्षक को अंतिम श्रद्धांजलि दिया जा सके। विदेश में यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाता है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है। उनकी टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो पर 1996 में 2 विमानों को गिराने और अमरीकी नागरिकों की हत्या के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। और अब मौसम का हाल। दक्षिण की जी हाँ, मौसम का हाल इस प्रकार है। दक्षिण से आने वाले हवाओं का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है और एक एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से पाए जा रहे एक एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय दिन के दौरान बादल कुछ घिर आएंगे देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर। हल्की वर्षा होगी सेंट्रल प्लाटू पर रात के दौरान और बाकी इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा हल्की रहेगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर आरएम3 रेडियो।

सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम। मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह माहे दुल्हिज्जा का बाबरकत महीना आखिरकार हमारे दरमियान आ ही गया। दुल्हिज्जा इस्लामी साल का वो बारहवां महीना है जो हुरमत वाले महीनों में शामिल होता है। इस माह मुकद्दस के इब्तदाई 10 दिन बरकतों और रहमतों वाले होते हैं, जिनमें रब कदीर की रहमत बंदों पर हर वक्त बरसती है। इस महीने के पहले 10 दिनों में जितना हो सके हमें अपनी नेकियों में इजाफा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, माहे दुल्हिज्जा के पहले 10 अय्याम बहुत अजीम होते हैं। इन 10 दिनों का अमल अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद है। अगर इन 10 दिनों के लिए कोई रोज़ा रखता है तो हर दिन का रोज़ा, एक साल के रोज़ों और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर हैं। इस माह मुबारक के पहले 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल नहायत ही पाकीज़ा और सवाब वाले होते हैं। हर एक अमल का सवाब 700 गुना बढ़ जाता है। ये पहले 10 दिन कई फ़ज़ाइल व बरकात और खसूसियात से मालामाल हैं।

0: सामईन कराम, आशिकों के इमाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरनवार की हाज़िरी के लिए इस कदर बेकरार रहा करते थे कि सख्त बीमारी भी आपको दरे रसूल की हाज़िरी से ना रोक सकी। यही आप रहमतुल्लाह अलैह की मंजिल मकसूद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह बस किसी तरह रोज़ा रसूल की एक झलक देखकर अपनी आँखें ठंडी करना चाहते थे। भले ही उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं। सामईन, माह दुल्हिज्जा के मुबारक मौके पर आइए जामा मस्जिद पोटलवी के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामद बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक ईमान अफरोज खताब समात कीजिए।
1: नहमदुल्लाह वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह वाला आलिही वसहाबिही अलतकिया अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर وعن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأداحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: यानी तरीक़त हिल्लती उमिरना बे इत्तिबाएहा। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तरीक़ा है जिसको फॉलो करने का हमें कमांड किया गया, जिसकी इत्तिबा का हमें हुक्म दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कि मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, हनीफा, कि वो हर बातिल से अलग हैं, कि वो बातिल से रूह मोड़ कर, रुख मोड़ कर हक की तरफ आने वाले हैं। सो मालूम हुआ कि फ़हिया मिन अश्शराइल क़दीमतिल लती क़र्ररतहा शरीअतुना, कि क़ुरबानी क़दीम जो शरीयतें थी उसमें से है जिसको हमारे शरीयत ने बाकी रखा, और हमारी शरीयत में भी इसका हुक्म दिया गया। क्योंकि इस्लाम में बहुत से अहकाम ऐसे हैं, बहुत सी इबादत ऐसी हैं जैसे जो पहली उम्मतों में हुआ करती थी, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं, क़ालू फ़मालना फ़ीहा या रसूलल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या है, यानी मिन सवाब, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है। काला आपने फरमाया बिकुल शारतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के बदले नेकी है। कालू उन्होंने कहा कि फसूफ या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊन में, तो फरमाया बिकुल शारत मिन सूफ हसना, ऊन में भी हर बाल के बदले, इन जो बेड़ बकरियां होती हैं, फरमाया उनमें भी हर बाल के बदले नेकी है। अब अगर जानवर के बालों को काउंट किया जाए तो वह हज़ारों में नहीं लाखों में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क़ुरबानी करने वालों को लाखों में नेकियाँ मिलती हैं। फिर जितनी क़ुरबानी ज़्यादा होती है तो फिर नेकियाँ भी ज़्यादा होती हैं। ये अल्लाह का हुजूर इस्लाम की उम्मत पर ख़ास, अल्लाह की का ख़ास एहसान है हुजूर इस्लाम की उम्मत पर, और बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जानवर के हर बाल के बदले क़ुरबानी करने वाले को नेकी अता की। अल्लाह पाक हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल खुश दिली से क़ुरबानी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: सामईन कराम, उर्दू मजलिस सबाल खैर में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। और अभी आपने जामा मस्जिद पोटलवी के ख़तीब व इमाम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी एक बयान समात फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब ये अगला कलाम मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो लोग हज के लिए जाते हैं उनको हज के बदले में ऐसे अजीमुलशान इनामात से नवाजा जाता है जिनके बारे में सुनने के बाद हमारे दिल में भी उस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत का अरमान मचलने लगता है। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज किया करो, क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है।

रब नजरों को आज ऐसी बिनाई दे, जिधर देखूं मुझे मदीना दिखाई दे। काश ऐसी रवानी हो आज हवाओं में, नबी पर दरूद भेजूं और जवाब सुनाई दे। सामईन कराम, इन अशार के साथ हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम सबाल खैर अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अल्लाह तबारक व ताला तमाम हुज्जाज कराम के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनको सलामत अपने अहलो अयाल में लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआया कलिमात के साथ अब निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है। आपसे रुख्सत होने का तो दिल नहीं करता, मगर क्या करें, यही दस्तूर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फी अमानिल्लाह।

बड़ जोगनो कन्हैयो बड़े दिल जीतनारो हवने वालो लागे परण ही प्रेम नो पर्याय एना मन मा शू हाले भाई कोई न जाने पण ई तो जाने बात दाना दलड़ा नी वात तने धार्यु एना मन नु ही कर तो कराव तने साम दाम दंड भेद कोई पण उपाय प्रेम मा पड़बु एना माटे एक रमत छे भले पछी दिल ना कटका थई जाय कटखट न कराळ जाने नंद जी नो लाल हवने प्राण थी ये प्यारो ही तो लागे बहु वालो जीवन जीवाड़े वळी हव ने नचाड़े अने दुनिया ना रंगो एनी नजरे बताड़े बोले मिठू मत जेवु बता ने फसावे पाछो एना सुर ताले आखा जग ने रमाड़े हस तो हसाव तो ने गीत गवडाव तो राज राखे दुनिया ने मुख मलकाव तो दिल नो ए बाजीगर जो ने केवो जादूगर दिलो ने मिलावे गमे तेम एवो कारीगर रंग रंगलो वळी थोड़ो छे हटीलो मारो कानूडो कोडीलो सदा रहे तो मजीलो।

प्रणाम श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है जिस मन में भक्ति का दीपक जलता है वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। कर्म ही मनुष्य की पहचान है और भक्ति उसकी आत्मा की श्रद्धि। आइए इस विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना।

श्रोताओं, सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को इंसानियत सिखाए। ईश्वर केवल शब्दों की पूजा नहीं अपितु अच्छे कर्मों की भाषा समझाते हैं। आइए इसी के साथ एक और सुंदर भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, जब मनुष्य अपने कर्म को पूजा समझ कर करता है तब सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। भक्ति हमें धैर्य देती है और कर्म हमें आगे बढ़ने की शक्ति।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम जारी है। श्रोताओं, कहा जाता है जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। मंदिर की घंटियों से अधिक पवित्र वह हृदय होता है जिसमें प्रेम और दया हों।

श्रोताओं, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में ईश्वर का विश्वास हो तो राह आसान हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में इतनी शक्ति है। आइए एक और सुंदर भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम जारी है। कहा जाता है कि भक्ति मन को शांति देती है और कर्म जीवन को सार्थक बनाते हैं। ईश्वर हर उस हाथ को आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत और सेवा में लगे हों।

श्रोताओं, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है वहां सुख और शांति का वास होता है। दूसरों की सहायता करना भी ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। आइए इसी के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और आशा करती हूँ आप सभी के मन में आस्था और भक्ति रहे। पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम और शुभ दिन।

0: आपकी देवी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हिंद महासागर के दक्षिण में एक फ्रांसीसी मैरीन द्वारा 800 किलो ड्रग्स जब्त की गई। ये जब्ती एक नाविक में छापे के दौरान की गई, मतलब इस ड्रग्स के बारे में पता चला। इस पर अधिक जानकारी अन्य बुलेटिनों में हम आपको देंगे। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। पर्यटन मंत्री रिशा उज्वाल के अनुसार अजीस अबेबा को हब के रूप में इस्तेमाल करते हुए इथियोपियन एयरलाइंस का मॉरिशस आगमन अफ्रीका के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीकी के लिए विशाल अवसर खोलता है। इस बीच पर्यटन मंत्री ने ये भी बताया कि जून महीने से आइबेरोजेट मद्रिद से प्रति सप्ताह एक उड़ान संचालित करेगी और जुलाई में वर्ल्ड टू फ्लाई भी इसी तरह की साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। बिलिया पोम्पोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया जो देश के जियोमेट्रिक पास पर स्थित 21 लग्जरी विला के विवादास्पद परियोजना से संबंधित है। ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है। स्थल का दौरा कर रहे लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले एक पूर्ण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता रखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर ऐतिहासिक मतदान के बाद पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कहा है कि ये मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये प्रस्ताव वनुआतु द्वारा पेश किया गया है और 141 सदस्य देशों द्वारा समर्थित। उनके अनुसार इस मतदान ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश भेजा है। मंत्री राजेश बागवान ने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश के लिए जलवायु परिवर्तन पहले से ही वास्तविकता बनी हुई है। यदि आप किसी निर्माण परियोजना में लगे हैं तो आप जानते हैं कि सीमेंट या लोहे की कीमतें कितनी अप्रत्याशित हो गई है। इस क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास वापस लाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण उपकरण को अपडेट किया है, वो है नेशनल सिजुल ऑफ रेट्स। ये एक मुफ्त राष्ट्रीय डेटाबेस है और ये निर्माण मंदी की वास्तविकताओं से जुड़ा है। विदेश में, जी हाँ, विदेश की खबरों में रूबिया ने कहा है कि वाशिंगटन की प्राथमिकता कूटनीतिक समाधान है, लेकिन चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को किसी भी खतरे से बचाने का अधिकार और कर्तव्य है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने रूबियो पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये द्वीप कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। चर्च लेन प्लेन मायो में 74 साल के 74 years old श्री रूप नारायण पतंदीन, जिन्हें लोग विजय नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनके मकान चर्च लेन प्लेन मायो से उठाकर प्लेन मायो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। नंबर 25 लैंपास शातु दू थोंकबाओ पोर्टलिस में 55 साल की 55 years old श्रीमती नंदिता कुमारी कंतावादू, जिन्हें लोग नंदू नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी माँ प्रेमिला कंतावादू के मकान नंबर 25 लैंपास शातु दू थोंकबाओ पोर्टलिस से उठाकर थोंकबाओ की श्मशान भूमि ले जाई जा रही है। रॉय रोड फोन जुसाक में 56 साल के 56 years old श्री जय सिंह परयाग, जिन्हें लोग संजीव नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी

ही आज इसे पहर के 3 बजे इनकी पत्नी मनीषा परयाग के मकान रॉयल रोड फूंजी साकर से उठाकर ओसाई फूंजी साकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। एरी गादू स्ट्रीट मिडलैंड्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री चंद्रदेव सिंह जादू सिरू, जिन्हें लोग पारे नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे क्यूपिप कॉलेज में एजुकेटर और

0: ले जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और एरोस लिंटन के पापा है मैं 47 साल के 47 years old श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें लोग अजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी रविवार को सुबह 10:30 बजे इनके मकान एरोस लिंटन के पापा से उठाकर प्रेंदे पापा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन संडे एट 10:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। शुक्रवार 22 मई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:08। RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का हम वेलकम करते हैं। मैं हूँ सुमी और सुहाना सफर इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना, और उम्मीद करते हैं दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और अभी से लेकर 2 बजे तक खूबसूरत गाने तराने आपके लिए हम चलाने वाले हैं, और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। तो पुराने गाने के शौकीन हैं, पुराने गाने सुनना आपको पसंद है, कोई एवरग्रीन तराना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, बस जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम से रेडियो मनोरंजन पर। और आपको याद दिला दें हमारा फ़ोन नंबर है 4028070, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 5250600 पर। साथ ही थोड़ी देर में हम हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, आप वहां पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं किशोरदा की आवाज़ के साथ।

0: खाना सफर खाना सफर
1: अजी यहाँ पर फूल तो नहीं लेकिन आपके डेडिकेशंस हमें ज़रूर मिल रहे हैं, आपकी फरमाइशें हमें ज़रूर मिल रही हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। दोपहर का वक्त है, बहुत सारे लोग काम पर है, तो लंच करते करते अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को बुनापेची कहेंगे, शुभाहार। और बहुत सारे लोग घर पर है और बस रेडियो बैकग्राउंड में चल रहा है, जहाँ कहीं से भी हमें सुन रहे हैं, साथ दे रहे हैं, शुक्रिया। थोड़ी देर पहले अनीता जी ने फ़ोन किया था कटरबोन से, कठपुतली फिल्म का जो गाना मांगा है अनीता जी, एक बात पूछूँ, वो गाना हमारे पास नहीं है तो हम इस दूसरे गाने को आपके नाम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ पर जो है बड़े ही प्यार से जितने भी सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार भरे साथ के लिए। यही गाना आपकी बहन मून के लिए भी जाता है, सभी गुड़िया परिवार के नाम जो कटरबोन से हमारा साथ दे रहे हैं। और कठपुतली फिल्म का ये जो गाना है हम आपके लिए चलाएंगे, कठपुतली फिल्म का ये टाइटल ट्रैक, उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: सुहाना सफर।
1: यस, दिस इज योर सुहाना सफर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। हर रोज की तरह सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम है दोपहर के 2 से 12 से 2 के बीच में चलता है, और इस समय बड़े ही प्यार से हमारे लवली लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं, अपनी डेडिकेशन हम तक पहुंचाते हैं। और अभी तो अगले गाने की ओर बढ़ने की बारी है। इस समय जो है हमारा साथ दे रही है शेला जी बुनमिया से, और अगला गाना उनकी प्यारी बेटी ल्यूसी के नाम जाएगा।

सभी माकुना परिवार के नाम। साथी फिल्म का ये तराना है मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ों में, और यही गाना माला जी आपके नाम हम करते हैं। रिवेजी रोंपा से हमारे साथ जुड़ी हुई है माला जी। अगला तराना आपकी ओर से किरण, केविन, कनिल, कविश, कनिश, शिव, सत्यम और सभी गिरधारी परिवार के नाम जो इस समय रिवेजी रोंपा से हमें सुन रहे हैं। तो चलिए कोई खूबसूरत सा तराना किसी के नाम करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5250-6200 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, आप अपने डेडिकेशंस वहाँ पर भी हम तक पहुँचा सकते हैं। वी हैव रीना, विम, रीनू, कियारा, अंजुलि, अमांता, पास्काल, सरिता, सभी ही बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं और बस देते रहिएगा। 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। और साथी फिल्म का ये गाना चल पड़ा आप सभी के नाम।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: चलिए ड्रीम गर्ल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और गाना जो है पिक्चराइज्ड हुआ था ऑब्वियसली धर्मेंद्र जी पर, और साथ में थी द ब्यूटीफुल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी।
1: सुहाना सफर
0: यकीनन हमारा ये सफ़र और भी सुहाना और भी यादगार और भी मेमोरेबल हो जाता है जब हमारे लवली लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स हमारा साथ देते हैं, तो थैंक यू सो सो मच। और चलिए अगला जो तराना है दो रास्ते फिल्म का ये गीत है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। इस समय सायरा बानू जी जो है काम करते करते हमारे साथ जुड़ी है, हम भूल गए आप कहाँ से हमारा साथ दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फ्यूल पर पेट्रोल पंप पर काम कर रही है और हमें सुन रही है। तो अगला गाना आपके नाम सायरा बानू जी, आपके शौहर अब्दुल के लिए, आपके सभी कलीग्स के लिए जो इस समय आपके साथ काम कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और ये गाना उन सभी के नाम भी जो लता जी और रफ़ी साहब के फैंस हैं। और बहुत सारे हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वी हैव कविता, वी हैव शैलेंद्र जी, सूरज, केतिका, प्रिया, सलमा, विमला, आंशा, क्वीन, पूनम, फिया, माधुरी, वीमी, सेनेगाल से भी हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, श्यामा जी, रेणुका जी, ब्रिंदा, एंजल, फिरोज़, एलएफसी, इंदिरा जी, यही गाना आपके बेटियों के नाम और आपकी ग्रैंड डॉटर के लिए, वी हैव प्रतिमा, चेष्टा, रायना, सभी साथ दे रहे हैं, रंबा जी, इसी गाने को आपके जीजा जी के नाम हम करेंगे, और एनजी और सुनीति जी, ये गाना आप लोगों के लिए भी चल पड़ा।

सुहाना सफर चलिए सुहाना सफर देखते ही देखते दोपहर के 12:50 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं और खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। ऐसे पुराने गानों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो काफ़ी दिनों बाद हम सुनते हैं तो दिल को एक अलग सी खुशी महसूस होती है ना। तो चलिए ऐसा ही कोई गाना आपके भी मन में है, आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू कैन श्योरली कनेक्ट विद अस। और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे मुकेश साहब और आशा जी की आवाज़ों में हम दोनों मिलके। और ये जो गाना है ये गाना जाता है सुबह जी आपके नाम, आपने कहा ये आपका फेवरेट गाना है। ऑलराइट सुमन जी इसी गाने को आपके नाम हम करते हैं। सुनीति जी लॉन्ग माउंटेन से हमारा साथ दे रही है। वी हैव रीता, वी हैव कल्याणी, सूद जी फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो सो मच। दुनिया भर से यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और यहाँ पर चलिए इस गाने की ओर हम बढ़ेंगे।

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आप सभी जुड़े हैं दे और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं एक बजे के समाचार की ओर। जाते जाते यही गाना जाता है लीना जी आपके नाम मेरे जीवन साथी एक दूसरे के लिए इस फिल्म से लिया गया सूज जी जो फ्रांस से साथ दे रहे हैं यही गाना आपके लिए भी हम करते हैं। सनी है जो बॉम्बू से हमारे साथ जुड़े हैं एजे ये तराना आपके लिए यही गाना परी आपके लिए भी और डॉक्टर तेरी हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो वंश थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। राज जी भी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। संध्या जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर मौका से किरण जी हमारा साथ दे रही है। अगला गाना आपकी मामा के लिए जाता है विधि जी यही गाना आपके लिए भी और इसी गाने के साथ एक बजे का समाचार होगा और समाचारों के उस पार फिर सुहाना सफर इस प्रोग्राम के सेकंड आवर में हम आपसे मिलेंगे।
2: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
3: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
2: ओह माय गॉड मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
3: हिंदी कविता है ना?
2: हाँ।
3: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
2: तुम और हिंदी कविता?
3: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता?

मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। सरकार के 2025-2029 कार्यक्रम में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है।

इस कानून के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। एक सदी से अधिक पुराना मौजूद कानून अब संशोधित किया जाएगा ताकि एक आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। इस नए ढांचे का उद्देश्य वर्तमान महामारी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना है। अफ्रीका दिवस जो हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है के अवसर पर मॉरिशस स्थित मिस्र के दूतावास ने अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक स्मृति समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कल गुरुवार 22 मई की शाम एबेन स्थित मिस्र दूतावास में आयोजित हुआ। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं थी बल्कि दीपक फराओ की प्रतिमाएं और कई ऐतिहासिक वस्तुएं मेहमानों को मिस्र की समृद्ध और आकर्षक सभ्यता के केंद्र तक ले गई। अफ्रीका दिवस के अवसर पर मिस्र दूतावास ने साझेदारों और अतिथियों को एकता और साझेदारी की भावना के साथ एकत्र किया। दक्षिण हिंद महासागर में फ्रांसीसी नौसेना ने 800 किलो से अधिक के हेरोइन और उससे जुड़े मादक पदार्थ जब्त किए हैं। ये ड्रग्स 15 मई को समुद्र में किए गए एक अभियान के दौरान एक मछली पकड़ने वाले जहाज से बरामद की गई। दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर ये चौथी बड़ी ड्रग्स जब्ती है। इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में अब तक कुल 4.4 टन से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना ने 16 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग विंड टर्बाइन स्थापित किया है। थ्री गोर्जेस पायलट नाम का ये टर्बाइन स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री पवन टेक्निक के क्षेत्र में एक नया विश्व रिकॉर्ड माना जा रहा है। ये विशाल विंड टर्बाइन हर साल लगभग 4,200 घरों को बिजली प्रदान करने में सक्षम होगा। इससे विशेष रूप से गहरे समुद्री क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है जहां पारंपरिक विंड टर्बाइन काम नहीं कर सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लोटिंग विंड टर्बाइन टेक्निक समुद्र में उपलब्ध विशाल पवन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुरपा के शोक समाचार।

0: शोक समाचार सुनिए। राय रोड फोजसाक में, राय रोड फोजसाक में 56 साल के 56 years old के श्री जय सिंह परयाग, श्री जय सिंह परयाग जिन्हें संजीव के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी मनीषा परयाग के घर फोजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओसाई फोजसाक की शमशान भूमि ली जाएगी। कृष्णचर्या 3 PM चर्च लेन प्लेन मानियो में 74 साल के 74 years old के श्री रूप नारायण पतानदीन, श्री रूप नारायण पतानदीन जिन्हें विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर प्लेन बाजियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। कृष्णचर्या 3 PM राय रोड बयाश मोताईलोंग में 68 साल की 68 years old की श्रीमती दालिनी बहोरा पैदाशा पदारत और जिन्हें दालिनी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री सुभाष बहोरा के घर बयाश मोताईलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्रिव की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

0: अजी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है यहाँ पर चल रहा है। सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में, सुहाना सफ़र के इस सेकेंड आवर में आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है।
1: सुहाना सफर।
0: 1:10 आज है फ्राइडे। यस, फाइनली फ्राइडे। बहुत से लोग फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब सप्ताह भर काम करते तो बस ऐसा लगता है कि कब फ्राइडे आएगा और कब जो है छुट्टी आएगी सैटरडे संडे और कब आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सैटरडे संडे भी काम करते हैं। उनके लिए ना फ्राइडे होता है, ना सैटरडे होता है, ना संडे होता है। जब काम होता है तो काम होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हूँ सुमी और आप सभी का साथ दे रही हूँ। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। ये वादा रहा फिल्म का तराना है और ये जो लवली सा ट्रैक है ये है किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में अंजू। ये गाना आपके नाम अंजू है, शाइना है, रिहाना है, मामा इंदिरा है। यही गाना एजे और परी आपके लिए भी, साधना जी, श्रद, करुणा, सीला, रमन जी। ये गाना आपके नाम भी, एंजल 71, रेणुका जी, गीता जी, पिंकी बिहाब, बड़े ही प्यार से इस समय विश्वानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ट्रियोले से। विश्वानी जी, यही गाना आपकी मामा इंदिरा के नाम, आपके पापा आनंद के लिए और सभी जरी फैमिलीज के नाम। और वी हैव नायरा, वी हैव एनटीआर, वी हैव प्रवीण, आनंद, इंदिरा और श्याम जी। ये गाना आप दोनों के नाम भी हम करते हैं। सो भूलिएगा नहीं 5250600 पर आप अपने डेडिकेशंस भेज सकते हैं, अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, आप वहां पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।

इस सफर को और भी खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। प्यार का मौसम फिल्म का ये गाना होगा, तुम बिन जाऊँ कहाँ। गाना जाता है अमृता जी आपके नाम, माहिन जी आपके लिए भी। बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। वी हैव यास्मीन। अनीता जी कैसी हैं आप? राधा जी इसी गाने को हम आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं। रजिया खान जी हम आपको भी नहीं भूले हैं। नीतू गोपाल जी हमारा साथ दे रही है। राहुल यादव, श्रिया, शफीनाज जी बड़े ही प्यार से हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेज जिस भी आ रहे हैं। अनीता जी फ्लिक ऑफ लॉक से हमारा साथ दे रही हैं। अगला गाना आपके पति राज के नाम बेटे, अंतिश अंकुश के लिए बहू है मनीषा, आशिमा पोते हैं हिमेशा, आद्या आंच सभी आपके फैमिलीज के लिए हैप्पी फ्राइडे। आपको भी थैंक यू सो सो मच। ओके, कविता है जो हमारा साथ दे रही है। कविता जी कोई बात नहीं कविता जी, होता है, मैं समझ गई। और यहाँ पर माला हमारा साथ दे रही है कटरबोन से। माला ये गाना आपके लिए भी जाता है। और चलिए बहुत सारे लोग जो है मौसम के बदलने के कारण जो है बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं। तो जितने भी लोगों की तबीयत थोड़ी सी डल है, थोड़ी सी बीमार है, तो चलिए आप लोगों को गेट वेल सून हम कहेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमारा साथ दे रहे हैं बीमार होने के बावजूद। तो थैंक यू सो सो मच ये लवली सा तराना आप सभी के नाम। यही गाना जाता है वीना जी आपके नाम, नोबेल फ्रांस से साथ दे रही है पति देव के लिए।

0: सफर।
1: और चलिए सुहाना सफर में अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये जो तराना है जाता है एमी आपके नाम। बबीता जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है, सो हम आपको भी नहीं भूले हैं। सुनीता जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी हैव राजीव, पुरन जी, सनी, फिया, वीना, मिमी, कवि, अंजू, हरीश, सभी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर उमा जी क्यूपिप से हमारा साथ दे रही है, कह रही है लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, नाइस सिलेक्शन, सो थैंक यू सो सो मच यहाँ पर उमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और यहाँ पर एक के बाद एक आपकी फरमाइशों को हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है जानकर हमें भी खुशी हो रही है। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये तराना आप सभी के लिए चल पड़ा।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफर देखते ही देखते 1:26 ऑलरेडी हो चुके हैं। थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम भी देखते ही देखते खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कुछ और डेडिकेशंस हम शामिल करते हैं। अगला गाना हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से लिया गया है, फूलों का तारों का। ये गाना जाता है प्यारी सी माधुरी जी आपके नाम परी की ओर से, और यहाँ पर आपके पूरे परिवार की ओर से गाना जाता है फॉर ऑल सिस्टर्स, शोभा बीना रेखा उषा भाई रवि है ऋषि है और जितने भी लोग इस समय साथ दे रहे हैं ये गाना, उन सभी के लिए भी हम करेंगे। खासकर माधुरी जी आपके नाम गेट वेल सून आपको हम कहेंगे। यही गाना मानिता जी आपके लिए, रजनी जी निधि जी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं।
2: You're listening to RM3 Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए सुहाना सफर है और इस सफर में एक के बाद एक जो है आप लोग जुड़ते जा रहे हैं।

है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला जो तराना है यहाँ पर जाता है उन सभी के नाम जो पुराने गानों के शौकीन हैं, है ना। और साथ ही यहाँ पर मानिता जी हमारा साथ दे रही हैं। अगला गाना बुनमे की CWA टीम के नाम रीता जी हमारा साथ दे रही हैं। प्रनील, अगला गाना आपके नाम और आपकी वाइफ संजना के नाम। ओके, वी हैव सवी मीला जी, थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए। अंश, आपके मैसेज को भी हमने देखा, थैंक यू सो मच। अतवाल मनिंदर जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीता जी, घर ऑन द फिल्म का कौन सा गाना आपको सुनना है बताइएगा ज़रूर हमें। जो गाना मैं सोच रही हूँ क्या उसी गाने की ओर आपका इशारा है, तो चलिए थोड़ी देर में हम उसे चलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी के लिए अगला जो गाना है सौतन फिल्म का ये तराना है शायद मेरी शादी का ख्याल, खासकर CWA टीम के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। ऐसे कल इंटरनेशनल टी डे था तो उस समय हमने ये गाना चलाया था कल आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, और बहुत से लोगों को ये गाना पसंद आया था। तो चलिए आज भी किसी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की तो हमने फिर चला दिया आप लोगों के लिए। ऐसे इस गाने में राजेश खन्ना साहब और टीना मुनीम नजर आई थी, है ना।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफ़र यहाँ पर जो है, कहते हैं ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में बसे होते हैं, दिल के बहुत ही करीब होते हैं। उन गानों को सुनकर कितनी यादें ताज़ा हो जाती है, या कितने मेमोरीज जो है, जैसे कि हम उन्हें फिर से जीने लगते हैं, या कितने इमोशंस जो है हम महसूस करते हैं। ये जो अगला तराना है ये भी कुछ ऐसा ही है। मानीता जी, आपके नाम हम करेंगे घरौंदा फिल्म का ये तराना। वी हैव मान, रिया, सरीन, शीतल, प्रेमिला जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। अगला गाना छाया जी आपकी ओर से जाता है। आशा, वरुणा, दीपा के नाम। राधिका जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। इंग्लैंड से यश हमारा साथ दे रहे हैं। जितने भी सुनने वाले रेडियो के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। और टिकटॉक के हमारे सभी फॉलोअर्स के नाम भी ये अगला तराना चल पड़ा।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: दीवाना।
4: एक दीवाना शहर में।
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: अजी कमाल की बात है ही, क्योंकि आज भी लोग जब ऐसे पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं, पुराने गानों की फरमाइश करते हैं, उन्हें इतना तक याद होता है कि फिल्म का गाना, मतलब कि गाना किस फिल्म से है या इसमें कौन एक्टर कौन एक्ट्रेसेस नज़र आए थे। तो काफ़ी कमाल की बात है ये। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत दिनों बाद हम किसी गाने को सुनते हैं या किसी फिल्म के बारे में सोचते हैं तो फिल्म से जुड़े सभी किरदार हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं। अगर हमने उस फिल्म को काफ़ी गौर से देखा होता है तो कब क्या होने वाला होता है ये भी हमें पता होता है। ऐसे में पुराने गानों की पुरानी फिल्मों की बात ही कुछ और है, इसलिए तो ये एवरग्रीन कहलाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर इस समय छवि हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया छवि जी आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और यहाँ पर जो है इस समय वरुणा जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, थैंक यू सो मच आपके इस साथ के लिए। और बृंदा जी आपको भी हम नहीं भूले हैं।

0: और यहाँ पर रिहाना जी आपका भी साथ हमें यूं ही मिलता रहे ग्रांगोप से, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कटरबोन से, माला जी हमारा साथ दे रही है, और इसी के साथ ये जो अगला तराना है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। सिलसिला फिल्म का ये जो गाना है, हमें पता है कि सिलसिला फिल्म का गाना सभी लोगों को बहुत बहुत पसंद आता है। सिलसिला फिल्म भी अपने आप में बड़ी कमाल की रही थी, जहाँ पर अमिताभ बच्चन थे, जया भादुरी थी, रेखा थी, संजीव कुमार थे, इतने बड़े बड़े सितारे इस फिल्म में नजर आए थे।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और इसी गाने के साथ जो है सुहाना सफर ये जो प्रोग्राम है ये भी खत्म होने को चला। 12 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बजे आप सुन पाएंगे समाचार, और समाचारों के बाद आप अंजू घरबरन जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे गीत नृत्य और परंपरा इस प्रोग्राम को, तो उनका साथ आप जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे रेडियो मॉरिशस पर दोपहर के 2:30 बजे से आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, तो वहां पर भी हमारा साथ देना मत भूलिएगा।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day.
4: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
5: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। दक्षिण हिंद महासागर में फ्रांसीसी नौसेना ने 800 किलो से अधिक हेरोइन और उससे जुड़े मादक पदार्थ जब्त किए हैं। ये ड्रग्स 15 मई को समुद्र में किए गए एक अभियान के दौरान एक मछली पकड़ने वाले जहाज से बरामद की गई। दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर ये चौथी बड़ी ड्रग्स जब्ती है। इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में अब तक कुल 4.4 टन से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। सरकार 2025-2029 कार्यक्रम में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। इस कानून के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। एक सदी से अधिक पुराना मौजूद कानून अब संशोधित किया जाएगा ताकि एक आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। इस नए ढांचे का उद्देश्य वर्तमान महामारी और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना है। तैराकी के क्षेत्र में तैराकी स्कूलों का आधिकारिक शुभारंभ।

0: कल गुरुवार को बुबासैन स्थित सेयर अल्फ्रेड स्विमिंग पूल में किया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा मोशे स्पोर्ट्स काउंसिल के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को तैराकी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे इस पुनः शुरुआत के तहत 3 अन्य स्विमिंग मॉडल बेय पावियों और कैट्रबून भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजेगा। ये फैसला उस समय आया है जब एक सप्ताह पहले पेंटागन ने पोलैंड में 4,000 सैनिकों की प्रस्तावित तैनाती रद्द कर दी थी। ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि ये निर्णय पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नावरोकी के साथ अमरीका के संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें उन्होंने पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनावों में समर्थन दिया था। हालांकि ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये अतिरिक्त सैनिक पहले की तैनाती योजना का हिस्सा है या किसी अलग अभियान के तहत भेजे जा रहे हैं। हाल के सप्ताहों में व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत यूरोप में अमरीकी सैनिकों की कुल संख्या कम की जा सकती है। इसी महीने अमरीका ने जर्मनी से भी 5,000 सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की थी, जिसके पीछे ट्रंप और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान युद्ध को लेकर विवाद बताया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ ही सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 14 रूट प्रिजों मोरोश बोबासे में। नंबर 14 रूट प्रिजों मोरोश बोबासे में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की कुमारी विद्यावती सीता जिन्हें प्रतिभा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सुबे बेबी चंद्रागासन के घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

नृत्य और परंपरा कार्यक्रम का समय हुआ है। श्रोताओं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस के तीसरे चैनल पर, और साथ ही जो दर्शक हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारी टीम जो आप तक कार्यक्रम को पहुंचा रही है उसमें भाई शिव, रत्नमाला मंगरू जी प्रोडक्शन सीट पर हैं और साथ दे रही हैं उरुसा जी। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वे है लोकगीत, लोक नृत्य हमारी परंपराओं के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और आज की जो अतिथि हैं डॉक्टर शारदा प्रसाद जी हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं बहन जी आज के कार्यक्रम में। आप हिंदी की स्नातकोत्तर पीएचडी हैं, पूर्व प्राचार्य रही हैं रामगढ़ महाविद्यालय झारखंड से, और आपकी 16 पुस्तकें आ चुकी हैं काव्य संग्रह संपादित पुस्तकों के साथ साथ। आप लोक गीतों का हिंदी साहित्य पर प्रभाव पर भी आपका प्रकाशन पाठकों तक पहुंच चुका है। 100 से भी अधिक पुस्तकें जर्नल पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी छप चुके हैं। दर्जनों शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष

0: अध्यक्ष पद भी ग्रहण कर चुकी हैं और साथ ही आप अनेक संस्थाओं से अभिनंदित और सम्मानित भी हो चुकी हैं। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं शारदा प्रसाद जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य देने के लिए।

0: संगीत और लोक संस्कृति जो है वो साहित्य को भी प्रभावित करती है और हमारे परंपराओं से भी हमें जोड़े रखती है। तो आज लोकगीत व लोक साहित्य जनमानस को कैसे प्रभावित करता है ये आप हमें बताएं।
1: जी हाँ, बहुत अच्छा। ऐसा है कि लोकगीत और लोक साहित्य हमारी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हास उल्लास है, लोक जीवन है, उससे जुड़े हुए हैं। या यूं कहें कि जिस प्रकार चिड़िया चहचहाती है भोर की प्रथम किरणों के आने पर, और हम मनुष्य जो उस कलरों को सुनकर आनंदित होते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, लोक गीत और लोक साहित्य भी बिल्कुल हमारे मन से, हमारी माटी से, गंध से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। और यही कारण है कि जब हम लोकगीतों को सुनते हैं, हम लोक साहित्य को पढ़ते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है वह लौकिक होती है। मैं झारखंड से हूँ और कहा जाता है कि झारखंड में ईश्वर ने धरती के ऊपर जितना सौंदर्य दिया है उससे भी ज़्यादा खजाना धरती के नीचे दिया है। और वहाँ के लोगों के विषय में यह कहा जाता है कि इनकी बोली में संगीत है और चाल में नृत्य है।
0: तो हमारे गीत से बिल्कुल संपर्क रखता है जो आज का कार्यक्रम है, गीत नृत्य और परंपरा। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि समाज में लोक परंपराओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो हमारी परंपराएं हैं, जिन जो हमारी जड़ें हैं, वे कैसे प्रभावित करती हैं लोकगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य से, जो कि लिखा हुआ कहीं नहीं है साहित्य, पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है लोकगीतों के माध्यम से। हम लोरी भी सुनते हैं तो उसमें भी तो एक छोटा सा संदेश ही हमारी माँ देती है, तो वे हमारी परंपराओं से कैसे जुड़ा हुआ है?
1: उससे तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही जुड़ा होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ही उनसे होता है। आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ वैदिक साहित्य थे तो वे मौखिक परंपरा के होते थे
0: जी।
1: और चूंकि उस समय लेखन और मुद्रण की सुविधा सीमित थी,
0: हस्तलिखित तो हुआ करते थे,
1: इसलिए कंठस्थ कराया जाता था।
0: और जो मैं सोचती हूँ बहन जी कि हमारे यहाँ पे जो लोग आए थे, गिरमिटिया लोग आए होंगे, वे भी तो साहित्य को लेकर नहीं आए, पर जो साहित्य आया यहाँ पे वो कंठ से आया।
1: क्योंकि लोक गीत और लोक साहित्य एक कंठ से दूसरे कंठ में प्रवाहित होते चले आते हैं, ये सदियों से यह परंपरा चली आ रही है,
0: तो ये प्रवाह बना रहा।
1: और यही कारण है कि लोक गीत जो है उसका मुख्य भाव ही सामुदायिकता है। और आज देखिए, आज सामुदायिकता से केंद्रीयता की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज व्यक्ति का केंद्रीयकरण हो गया है, आज जो फ्लैट संस्कृति है
0: जी, एकल परिवार,
1: अब तो एकल परिवार भी टूट रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जितनी देर लगती है शादी होने में उससे जल्दी आज तलाक हो रहा है। तो आज के समय में यही कारण है कि लोकगीत और लोक साहित्य के संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी महत्ता बढ़ गई है। लोकगीत चूंकि सामुदायिकता के गीत हैं
0: जी,
1: आप देखेंगे हमारे यहाँ झूमर होता है
0: जी,
1: कर्मा है, सरहुल है, इसमें झूमर नाच होता है, सामुदायिकता है, पर्व त्यौहार है, छठ महापर्व है, सब सामुदायिकता का पर्व है जिसमें समाज के लोग जुड़े होते हैं,
0: पूरा समुदाय जुड़ता है।
1: और सिर्फ समाज ही नहीं, परिवार, नाते रिश्तेदार सभी एकत्रित होते हैं। हमारे यहाँ जो
0: वो एकता का भाव आता है,
1: अपनापन का भाव आता है
0: जी।
1: इसलिए आज के दौर में लोक साहित्य और लोक गीतों के संरक्षण की अति आवश्यकता है।
0: वो रिश्तों को भी तो संजोती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे रिश्ते नाते, आप विवाह गीत देखेंगे, आप जन्म के समय जो सोहर गाया जाता है,
0: हल्दी विधि, यहाँ पर मैं जो सुनती हूँ, गीत गवाई के समय हल्दी विधि होती है दूसरे दिन, तो उसमें हर रिश्ते को
1: बिल्कुल
0: बुलाया जाता है,
1: बिल्कुल
0: चाचा आ रहे हैं हल्दी चढ़ाने, अब नानी आ रही है हल्दी चढ़ाने, अब मामी आ रही है हल्दी चढ़ाने,
1: भाई है,
0: बिल्कुल
1: भाभी है।

0: इसका एक गीत है
1: जी,
0: मैं बताऊं क्या?
1: बिल्कुल अवश्य।
0: अगे माई हर दी दुब चाहुर ना, अगे माई हर दी दुब चाहुर ना, अगे माई हर दी चढ़ावे कौन दादाजी ना, अगे माई अपन दादा हर दी चढ़ावे ना, ओहे जे अपन दादा हर दी चढ़ावे ना।
1: ये तो दादा इस माध्यम से दादा
0: चाचा है,
1: चाचा
0: नाना है, मामा है, भाई है, ताऊ है, ननद है, नंदोई है, फूफा जी है, सारे नाते रिश्ते का नाम लेकर गाना गाया जाता है।
1: बिल्कुल, वो लोकगीत है।
0: लोकगीत है
1: जी।
0: तो आज अगर मान लीजिए एकल परिवार है और कोर्ट में शादी करते हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: तो यह उत्सव नहीं हो पाता है। आप देखिए कि पहले तो जब हल्दी चढ़ जाती थी, हल्दी से लेकर शादी तक में 9 दिन का 7 दिन का 5 दिन का होता था
1: जी।
0: अब तो 3 दिन के होने लगे हैं।
1: बिल्कुल।
0: किंतु आजकल जो बैंकेट और इवेंट मैरिज का दौर चल पड़ा है
1: जी,
0: इसमें आज नाते रिश्तेदार आते हैं, होटलों में ठहरा दिए जाते हैं, और जब कुछ विधि होती है तब वे होटल के कमरे से बाहर आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जिससे
1: पहले तो आंगन में खूब
0: बिल्कुल आधी रात तक नाच होता था, गान होता था, शाम से ही ढोलक मजीरे पर महिलाएं गीत गाती थी, एक ढोल बजा रही हैं, चम्मच से बजा रही हैं, मजीरा
1: यहां पर
0: है।
1: भी जो हम गीत गवाई करते हैं
0: हाँ।
1: यहाँ पर शुक्रवार को होती है अक्सर। आज तो तिथियाँ दिन कोई भी निर्धारित कर लें तो गीत गवाई जब होती है तो उसमें लोटा और चम्मच बजाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो ये सब ढोलक के साथ
0: परंपरा से जोड़ते हैं, हमें नाते रिश्ते से जोड़ते हैं
1: जी।
0: और यही कारण है कि आज हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए,
1: उसको कहीं लुप्त नहीं होना चाहिए,
0: नई पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो चाहे लिखे, आपकी तो बहुत सारी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, जैसा मैंने देखा लोक लय की छाओं में ऐसी पुस्तकें बहुत आ चुकी हैं, आपका तो शोध कार्य भी लोकगीत और लोक नृत्य
0: हाँ।
1: पर रहा, तो आपने जब शोध कार्य किया तो कहाँ आपने आज की पीढ़ी को पाया? आज की पीढ़ी तो जुड़ ही नहीं पाती है।
0: झारखंड में आज की पीढ़ी जुड़ रही है
1: जी।
0: हमारे यहाँ कॉलेज में भी करम महोत्सव मनाया जाता है और उसमें जावा प्रतियोगिता होती है।
1: होता है
0: हमारे महाविद्यालय में जावा प्रतियोगिता होती है। जावा टोकरी में बालू, जलाशय में पवित्र बालू उठाकर लाया जाता है और उसमें 5 तरह के अनाज के बीज बोए जाते हैं
1: जी।
0: और प्रतिदिन शाम को लड़कियां, ये लड़कियों का है, गाती तो है महिलाएं भी।
1: बिल्कुल।
0: और प्रश्नोत्तरी होती है, मान लीजिए 10 लड़कियां महिलाएं इधर हैं, 10 लड़कियां महिलाएं उधर हैं, और इस ओर से सवाल दिया जाता है, उस ओर से जवाब दिया जाता है
1: जी।
0: और सामूहिक नृत्य होता है, कोरस में गीत होते हैं, ये सभी सामुदायिकता के प्रतीक हैं।
1: बिल्कुल। तो एक दूसरे से जुड़ने का भी संभावना रहती है, क्योंकि जब सामुदायिक गीत होंगे, सामुदायिक नृत्य होंगे, तो आप एक दूसरे से जुड़ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर कहीं अब मैं आती हूँ कि दादी नानी और माँ की लोरियाँ, जिनमें कहानियाँ भी जुड़ती हैं, वो संस्कारों से जोड़ती भी हैं, और कहीं ना कहीं वो दादी की एक लोरी, वो एक दादी की कहानी जो है, बीजारोपण भी करती है संस्कारों का। तो इस पर आपका क्या विचार है?
0: बिल्कुल। देखिए, लोक साहित्य, लोक गीत, ये तो संस्कारों की आधार भूमि है, नींव है, क्योंकि हम आरंभ से ही देखते आए हैं कि जो लोक गीत होते हैं इनमें गेयता होती है
1: जी।
0: ये गाते हैं, जिस कारण
1: लोरी भी माँ गा के ही सुनाती थी हमें।
0: लोरी
1: तो
0: मैं 2-3 पंक्तियां गाना चाहूंगी।
1: अवश्य, स्वागत है।
0: जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के, अयोरी नींदिया नींदर बन से,

0: पहने से। इसी तरह एक बहुत ही प्रचलित लोरी है जो माए अक्सर सुनाया करती हैं बच्चों को, और हम सब भी वही सुन सुनकर बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल, हम भी चंदा मामा की।
0: चंदा मामा
1: हमारे लिए दूर के पुए पकाए पूर के, ये तो बहुत ही प्रचलित है और मेरे ख्याल हर माँ अपने बच्चे को सुनाती है।
0: तो इन गीतों से जो अपनापन होता है, बच्चा जैसे ही आंख खोलता है कि उन्हें ये मधुर संगीत उनके कानों में पड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसी का प्रभाव पड़ता है कि वह पहचानने लगता है कौन दादी है, माँ है, बड़ी माँ है, चाची है, बुआ है। तो इस तरह का एक और गीत है
1: जी,
0: पलंग पर रो रहा मेरो नंदलाल, पलंग पर रो रहा मेरो नंदलाल, ओ सासू जी जरा तुम भी उठा लो, ओ सासू जी जरा तुम भी उठा लो, तभी तो दादी बोलेगा मेरो नंदलाल।
1: तो उसे कितने सुंदरता से रिश्ता भी बताया और प्रेरित किया,
0: आपसी प्रेम,
1: आपसी प्रेम भी दिखाया।
0: बिल्कुल, इसी तरह सारे नाते जोड़कर गोतनी जी को बोलती है, ओ गोतनी जी जरा तुम भी उठा लो, ओ गोतनी जी जरा तुम भी उठा लो, तभी तो चाची बोलेगा ओ नंद लाला। इस तरह सभी नाते रिश्ते को लेकर के गाया जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। पर सनातन संस्कृति में, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि वे गे हैं, गाए जाते हैं, सनातन संस्कृति में साम वेद के मंत्रों को गाया जाता है, ऐसे ही मंत्रोच्चारण नहीं होता है, उसको गाया जाता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये वैदिक संस्कृति की बात कर रही हूँ मैं।
0: बिल्कुल,
1: उसमें सभी मंत्रोच्चारण जो होते हैं गे गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो इस पर आप हमें कुछ बताएं।
0: देखिए, सामगे का मूल तत्व ही गीता है।
1: बिल्कुल,
0: यूं कहे कि आत्मा
1: तो यही है,
0: आत्मा ही गीतात्मकता है
1: जी।
0: और यज्ञ के अवसर पर बच्चों को पढ़ाने के समय पहले तो गुरुकुल था।
1: बिल्कुल,
0: और बच्चों को मंत्र सिखाए जाते थे गा गा कर
1: जी,
0: और इस गाने का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि वे याद हो जाते हैं,
1: याद हो जाते हैं,
0: लय में झूम झूम कर गाया जाता है
1: जी।
0: इससे होता क्या है, पहले तो यज्ञ वगैरह जंगलों में होते थे, उपवनों में होते थे
1: जी,
0: और वातावरण इससे बहुत ही शुद्ध हो जाता था। अभी भी आप देखिएगा कि नवरात्र के समय
1: जी,
0: महालया के दिन आप देखिएगा रेडियो से कार्यक्रम जो प्रसारित होता है
1: जी,
0: वह भी गीत है। चंडी पाठ जो होता है वह भी गीतात्मकता में है।
1: बिल्कुल,
0: सामवेद से ही गीतों का उदय हुआ है, सामवेद को गीतों का जनक माना जाता है। और गीत इतने मधुर होते हैं, कर्ण प्रिय होते हैं, रस में घुले होते हैं कि वे अनायास ही हमारे मन में उतर जाते हैं, और जो नैसर्गिक आनंद की प्राप्ति होती है, हम कह सकते हैं कि इसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति, हम मधुमती भूमिका में पहुँच जाते हैं और इतने डूब जाते हैं कि हमारा संपर्क परमात्मा से हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो बहुत सही बात आपने कही कि जब आप एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, आंखें बंद हों और आप उसे गाएं मंत्र को, तो वह आपकी आत्मा को भी तृप्त करता है और आपका संपर्क जो है ईश्वर से भी करवा पाता है।
0: बिल्कुल, गीत में तो जो आत्मा की लय है, जो ताल है, जो छंद है, वह हमें सीधे परमात्मा से जोड़ती है, और यही आनंद ऐसे रसमय भाव भूमि का निर्माण करता है कि हम साधारण मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: प्रेम का संचार होता है,
1: प्रेम का संचार भी होता है। और जब भी नृत्य की बात करें, हम लोक नृत्य की बात करें, तो नृत्य भी, अब जैसे मीरा के भजन
0: बिल्कुल
1: नृत्यात्मक थे, नृत्य करती थी, तो वे अपने ईश्वर से संपर्क बनाए हुए थी, उन्हें लोक लज्जा की कोई सोच भी नहीं थी,
0: इसी कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा।
1: बिल्कुल,
0: इन्हें कितने अत्याचार सहने पड़े, किंतु उन्होंने नृत्य संगीत और भक्ति को नहीं छोड़ा,
1: क्योंकि वो लोग नृत्य

0: और लोकगीत जो थे भक्ति से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें जो हैं वो सशक्त करती हैं कि हम वेद मंत्र भी पढ़ें, वेदों से जुड़ें। सामवेद में तो जैसे आपने बताया कि गीतात्मकता है, तो वो गीतात्मकता हमारी जड़ों को तो भी संजो रही है, और वो जड़ें ही सशक्त करती हैं तो परंपराएं बनती हैं।
1: आप याद कीजिए ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे
0: जी,
1: तो हम गाकर पढ़ते थे।
0: बिल्कुल,
1: बुंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल,
1: हम गाते थे, हमें गा गा कर कविता सिखाया जाता था।
0: तो कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान की तो सारी कविताएं ही हम जब पढ़ते हैं तो वो
1: बार बार आती है, मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो लोक नृत्य और लोकगीत हमारी परंपराओं से जुड़कर सशक्त करते हैं हमारी जड़ों को। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ तो संगीत और नृत्य को हमारी परंपराओं से क्या रिश्ता पाती हैं आप? बातचीत वही है, पर प्रश्न मेरा है कि संगीत और नृत्य कैसे हमारी परंपराओं को तो संजोता ही है, पर रिश्ता जो बनता है वो, उस रिश्ते पर आपकी चर्चा सुनना चाहूँगी।
1: देखिए, संगीत और नृत्य चूंकि हमारी भाव भूमि से जुड़ा हुआ है, और संगीत में पूरे नाते रिश्ते समाहित होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि एक लोकगीत है, लोक संगीत, जो बहुत ही मशहूर हुआ था, बड़ी प्रसिद्धि पाई थी, बड़ी प्रसिद्धि पाई थी, अभी भी वह गीत गाए जाते हैं, क्या बंगाल में, क्या बिहार में, झारखंड में। वो गीत है, बोड़ो लोकेर बिटी लो लंबा लंबा चूर, एमन माथा बेंधे थे बोलाल गेंदा फूल, एमन माथा बेंधे थे बोलाल गेंदा फूल। इसी की तर्ज पर गाया गया है दिल्ली छे का वो गाना
0: जी, ससुराल गेंदा फूल,
1: ससुराल गेंदा फूल
0: जी।
1: तो सास मतलब गारी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल गेंदा फूल।
0: तो कहीं ना कहीं फिल्मों में भी लोक गीतों को लेकर उसे नयापन देकर हमारे,
1: चूंकि हमारे रिश्ते नाते हमारी भावना लोक गीतों से जुड़ी हुई है, और शिष्ट साहित्य को उपजीव्य मिलता है लोक साहित्य से, लोक गीतों से। आप देखेंगे कि जहां शिष्ट साहित्य की धार जरा कुंद पड़ने लगती है तो वहां लोक साहित्य उसे संभाल लेता है, और यही कारण है कि लोक साहित्य का प्रभाव हम साहित्य पर देखते हैं, हमारी परंपरा पर देखते हैं, और ये फिल्में बड़ी हिट हो जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें लोक गीतों का तड़का लगा हुआ हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो सुपर हिट होते हैं।
0: हाँ, लॉन्ग लश्कारा मारे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये पंजाबी गीत तो इतना पुराना है, मेरे ख्याल से 200 साल पुराना है, पर आज नयापन लेकर वो आज प्रचलित है। और
1: ये कभी पुराने नहीं होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: ये सदाबहार है, नित नूतन है।
0: बिल्कुल,
1: मैं चर्चा करना चाहूंगी, एक फिल्म आई थी राजश्री प्रोडक्शन की, नदिया के पार
0: जी,
1: वो रांची में 2 साल तक चली थी एक सिनेमा हॉल में, और उसे पुरस्कृत भी किया गया था। आप उस फिल्म को देखेंगी तो लगेगा कि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपनी माटी से जुड़ रहे हैं। उसमें जो परंपराएं हैं, जो रिश्ते नाते हैं, कैसे उसमें जोड़ा गया है, यह हमें देखने को मिलता है, और यही कारण है कि जन सामान्य इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है।
0: मुझे आपने कहा पुरानी फिल्म नदिया के पार बनी थी, मैं एक फिल्म की चर्चा करनी चाहूँगी जो कि बहुत लंबे समय तक चली, बालिका वधू।
1: बिल्कुल,
0: बालिका वधू में जो गीत गाया गया, बड़े अच्छे लगते हैं, तो वे उस गीत को आज धारावाहिक का रूप दिया गया है।
1: बिल्कुल,
0: बड़े अच्छे लगते हैं,
1: बालिका वधू भी धारावाहिक बनी,
0: बालिका वधू भी
1: धारावाहिक
0: वर्षों चली। तो ऐसी ऐसी लोक गीत और लोक नृत्यों से ही जुड़कर सिनेमा बना, और सिनेमा से धारावाहिक भी बन रहे हैं, क्योंकि आज टीवी का जमाना है, लोग, हमारी दादी नानियां ही बैठ के देखती हैं और हम भी देखते हैं
1: क्योंकि हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी जो
0: उसमें हम अपनापन पाते हैं,
1: बिल्कुल, हम, लगता है कि हम जुड़ गए उससे।
0: बिल्कुल,
1: और इसीलिए
0: हर एक परिवार की एक महिला की कहानी कहीं ना कहीं

0: जुड़ाव पैदा करती है।
1: हमारे रिश्ते नाते उसमें दिखते हैं, कैसे भाई भाभी का प्यार है, देवर भाभी का प्यार है, सास ननद है, देवर है, एक पूरा परिवार है, हंसता खेलता भरा पूरा परिवार है। और यही कारण है कि आज इसके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है।
0: मेरे ख्याल से आपने जो शोध कार्य किया, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो चिंगारी जगी होगी कि मुझे इसको संजोना है, तभी आपने शोध कार्य की और आपका झुकाव हुआ कि लोकगीत और लोक नृत्य पर शोध कार्य होना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि आप कैसे इससे जुड़ पाए।
1: मैं बचपन से ही इस ओर आकर्षित थी। मुझे ये जो सामूहिक नृत्य होते हैं, सामूहिक गीत होते हैं, जब मैं छोटी थी तो मुझे सबसे पहले गीत गाने के लिए बुलाते थे, किंतु बड़े होते होते तो ऐसा नहीं हो पाया। यह बचपन की बात
0: है।
1: 9-10 वर्ष की जब मैं थी उस समय मैं खूब गीत गाती थी, विवाह के गीत, सोहर, और चूंकि बहुत छोटी थी और बच्चों की आवाज़ से बड़ों को सुनने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए वे लोग मुझे आगे कर देते थे और मैं भी साथ साथ में गाती थी। और यही कारण है कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं लोकगीत, लोक नृत्य, और जब मुझे अवसर मिला।
0: और उनमें एक सादगी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कोई लय कोई ताल नहीं, जहाँ कदम बढ़ पाए वहीं लोक नृत्य आ गया।
1: बस बस, और मैंने कहा ना झारखंड में तो भाई कदम कदम पर लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है
0: जी,
1: तो सामूहिक नृत्य होते हैं वहाँ। और फिर वही क्यों, हर प्रांत में आप जहाँ जाएं सिर्फ क्षेत्रीयता का फर्क होता है।
0: हाँ, नहीं, भारत सब, में तो काली क्षेत्र है, अलग है।
1: आप असम चले जाइए बिहू है,
0: गुजरात चले जाए डांडिया है,
1: डांडिया है, गरबा है,
0: गरबा है,
1: राजस्थान जाइए घूमर है
0: जी,
1: बिहार और झारखंड में झूमर है
0: जी।
1: इसी तरह हर प्रांत पूरे भारत वर्ष में आप देखें तो सामुदायिकता का भाव है।
0: और हरियाणा पंजाब की ओर जाए तो भांगड़ा है जी, गिद्दा है,
1: भांगड़ा है, गिद्दा है। आप देखिए कैसे जीवंत बना देता है माहौल को।
0: बिल्कुल।
1: और आज हम जिस,
0: और हिंदी सिनेमा में भी आजकल भांगड़े के बिना कहाँ कोई गीत बन रहे हैं।
1: ना, पंजाबी लोक गीत के तर्ज पर है।
0: बिल्कुल।
1: वो गीत है ना, रातें लंबियां लंबी है
0: जी जी बिल्कुल।
1: भाई सनी देओल की फिल्म थी और गीत था, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन मैं उसे याद नहीं, बोल नहीं पा रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत ही हिट हुआ था वह गाना।
0: तो बहुत से गीत ऐसे हैं जो कि लोक गीतों से उठाकर उनमें एक तर्ज बदल के, एक लय बदल के उनको प्रस्तुत किया गया है।
1: आत्मा से उनका जुड़ाव होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जनमानस, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, खेतों में काम करता हुआ हो, गाँव का हो, शहर का हो, महानगर का हो, हर कोई उससे अपना अपना जुड़ाव महसूस करता है।
0: हम तो पुरानी फिल्म की बात करें, उपकार है, मनोज कुमार की फिल्मों में खेतों में महिलाएं गीत गाती हैं, मेरे देश की धरती कितना प्रचलित रहा और आज तक भी देश प्रेम के लिए वो एक उदाहरण माना जाता है।
1: भारत कुमार ही उन्हें कहा जाता था।
0: बिल्कुल। तो वो देश प्रेम, देशभक्ति के लिए जाने गए क्योंकि
1: लोकगीत
0: के साथ जुड़े हुए थे।
1: जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और महात्मा गांधी जहां भी चले जाते थे तो उनके लिए गाया जाता था एक मगही लोकगीत, बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ था, एक छोटी चवन्नी चांदी का जय बोलो महात्मा गांधी का, एक छोटी चवन्नी चांदी का जय बोलो महात्मा गांधी का।
0: तो मतलब ये मिट्टी से जुड़े और मिट्टी से उभरे गीत हैं।
1: अब तो चवन्नी उठ गई है।
0: बिल्कुल।
1: अब आज के बच्चे नहीं जानते कि चवन्नी
0: क्या है,
1: लेकिन लोक गीतों में यह सुरक्षित है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज जहां शिष्ट साहित्य
0: कौड़ी, आज बच्चे कहां जानेंगे कौड़ी क्या है,
1: गिल्ली डंडा
0: पर गीतों में है।
1: बिल्कुल है।
0: बिल्कुल।
1: गिल्ली डंडा
0: जी
1: आज कहाँ खेलते हैं, हमारे खेल भी तो आज
0: स्टापू खेलते थे,
1: है, पिट्टो है
0: जी,
1: कबड्डी है,
0: गिट्टे खेलते थे हम लोग
1: खेलते थे
0: जी। तो ये सब लोक गीतों के साथ

0: मिट्टी है हमारी, उन जड़ों ही हैं हमारी, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपकी पुस्तकों में भी आपने जब शोध कार्य किया तो ऐसे ऐसे उदाहरण उसमें भी दिए होंगे आपने।
1: मैं कई स्थानों पर गई, कई कार्यक्रमों में, जैसे छत्तीसगढ़ को लिया है मैंने, तो छत्तीसगढ़ के जहाँ कार्यक्रम होते थे मैं वहाँ गई, वहाँ के विवाह समारोह में शामिल हुई। कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी में गई, वहाँ से भी पुस्तकें मैंने लोक साहित्य पर उठाया। इसके बाद बिहार, उस समय तो हमारा झारखंड बना भी नहीं था,
0: बिहार पहले बिहार ही था,
1: बिहार था। तो हम अपने आप को ऐसे भी है, तो अब चूंकि भौगोलिक कारण से हम अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन बिहार से हमारा रिश्ता नाता बिल्कुल बना हुआ है। और भोजपुरी लोकगीत,
0: वो एक लकीर जो खींच गई उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है,
1: जो दिल की दीवारें हैं उसे तोड़ नहीं पाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दिल में कोई दीवार नहीं है, वह कोई भी लकीर खींच नहीं पाई। और हम आज भी अपने आप को बिहारी मानते हैं और वे भी अपने आप को झारखंड का ही।
0: संगीत में तो कोई बैरियर है ही नहीं,
1: कुछ नहीं,
0: संगीत तो मुक्त है।
1: हमारे जो चारों धाम स्थापित किए गए हैं
0: जी,
1: उसे हमारे ऋषि मुनियों ने यही सोच समझ कर ही स्थापना की है कि पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोना है, और जो भक्ति और अध्यात्म है वह भजन और कीर्तन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज चारों धाम की यात्रा जो हम करते हैं इसी भावना से प्रेरित होकर करते हैं, इसी लोक संस्कृति को इन्होंने जोड़ा है, और ध्यान में यही बातें थी जिस कारण से चारों कोनों पर चार धाम की स्थापना की गई।
0: चलिए, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। एक गीत के माध्यम से कार्यक्रम को सजाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा जारी रहेगी।

0: गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, आज हमारी अतिथि शारदा प्रसाद जी हैं, डॉक्टर शारदा प्रसाद, जिनका की शोध कार्य ही लोक नृत्य और लोकगीत हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर शारदा जी, तो इसमें हमारे जो विवाह संस्कार हैं, हमारे जो लोकगीत, चाहे वो लोरियों से, जैसे हमने बातचीत शुरू की थी कि लोरियों से कहीं ना कहीं माँ अपने बच्चे में वो संस्कार डालती है, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हमारे लोक गीत संगीत के माध्यम से हमारे मंत्रोच्चारण जो सामवेद में है वे भी गान के रूप में है। तो ये सब को देखते हुए हमारी विवाह जो होता है, विवाह संस्कार में भी तो गीत गवाई और कैसे हम लोक संगीत से जुड़ते हैं, इस पर आपने बहुत सारा शोध कार्य किया हुआ है, आपकी पुस्तकें छप चुकी हैं। तो इसमें विवाह संस्कार में क्या भिन्नता पाती है? मॉरिशस में जब गीत गवाई होती है तो विवाह में हम अपने सबसे पहले तो देवी का आवाहन करते हैं, जब ढोलक बजनी होती है तो उसकी पूजा होती है। तो ऐसे ही भारत में भी, बिहार से ही हमारे भी पूर्वज आए हुए हैं, तो कैसे हम अपने रिश्ते नातों को और कैसे लोक गीत लोक नृत्य को जोड़ पाते हैं हमारी परंपराओं से?
1: ऐसा है कि मैं

0: मॉरिशस में अब लगभग एक वर्ष हो चले हैं मुझे प्रवास के, और मुझे कई सज्जनों से, साहित्यकारों से तथा अनेक यहाँ के स्थानीय जो कार्यक्रम है उसमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मुझे कोई अंतर महसूस नहीं होता है। और यहाँ के लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है, जो स्नेह दिया है, वह मुझे लगता है कि यह भारतीय संस्कार ही है जिसके बीज यहाँ मॉरिशस में पड़े हैं।
1: जी,
0: चूँकि वे जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में 1834 में यहाँ आए, वे ही, उनकी पीढ़ी ही आज यहाँ चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी निवास कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: और वे आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसा मुझे अनुभव हुआ, जो मैंने देखा।
1: जी,
0: मैं आपको बतलाऊं कि हमारे जो संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, किंतु मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिसमें जन्म है, विवाह है, मृत्यु है।
1: मृत्यु है।
0: मैं आपको बतलाना चाहूँगी, जब मैं मॉरिशस के आदरणीय डॉक्टर बीरचंद जगा सिंह के यहाँ गई थी उनके दर्शन के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहीं पे किन्हीं की मृत्यु हो गई है, और उस समय रामचरितमानस का पाठ होता है, तो हमें वहाँ जाना है। तो कहाँ भिन्नता है, भारत में भी वैसे ही होता है, वहाँ भी देखिए कि निर्गुणिया गाया जाता है अंतिम संस्कार के समय।
1: जी,
0: यहाँ तक कि जिस समय अंतिम यात्रा होती है, तो अगर बुजुर्ग है, 100 वर्ष पार कर गए हैं या काफ़ी उम्रदराज हो गए हैं, तो वहाँ तो ढोल नगाड़े के साथ उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुँचाने की प्रथा है, और निर्गुणिया गाते हुए चलते हैं। बंगाल में भी यह प्रथा है, निर्गुणिया गाते हैं, कबीर के गीत गाते हैं कि किस प्रकार हम माया मोह के जाल में उलझ कर इस शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं, और आज यह प्राण पखेरु उड़कर अपने वास्तविक निवास को जा रहे हैं,
1: पहुंच रहा है।
0: आत्मा का मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे फिल्म जगत इससे अछूते नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: महाश्वेता देवी का उपन्यास जो था, उस पर वो फिल्म बनी थी रुदाली,
1: जी,
0: जिसमें स्यापा की प्रथा है।
1: हाँ।
0: आज भी स्यापा की प्रथा है, यानी जो व्यक्ति इस संसार को अलविदा कह चुके हैं, तो हम अपना दर्द उन्हें बतलाते हैं कि हम दुखी हैं, और जो उस समय गीत गाए जाते हैं उसे स्यापा कहते हैं, कई प्रांतों में भारतवर्ष के प्रचलित है। और गजोल पुराण का पाठ होता है, जिससे
1: स्यापा वैसे एक पंजाबी शब्द है,
0: पंजाबी शब्द है।
1: बिल्कुल,
0: और पंजाब हरियाणा में यह ज्यादा प्रचलित है,
1: कोई ज्यादा राजस्थान में भी होता तो बोलते हैं कि क्या स्यापा पड़ा
0: क्यों
1: हुआ
0: कर रहे?
1: क्यों स्यापा पड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: पंजाबी शब्द है जी।
0: हाँ, पंजाबी शब्द है
1: जी।
0: तो साहित्यकार तो सभी भाषाओं से, साहित्यकार तो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे परे होते हैं, सबसे परे होते हैं, उनका तो ना कोई जात है, ना धर्म है, ना समुदाय है, वे सबसे परे संभाव हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और तो, यही कारण है कि लोक साहित्य और लोकगीत हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: हमारा जो शांति पाठ होता है उसमें धरा से लेकर के खगोल तक, द्यूलोक तक की शांति की कामना की गई है।
1: बिल्कुल,
0: जो संस्कृत में है शांति पाठ है, और जो गा करके गाया जाता है।
1: तो विवाह पर भी आपने बहुत से गीतों की चर्चा की है अपनी पुस्तक में।
0: जब विवाह का आरंभ हो जाता है
1: जी,
0: जिस वक्त सबसे पहली बार दोनों परिवार के लोग मिलते हैं, लड़की वाले के यहाँ आते हैं लड़के वाले, और जो भोजन करने बैठते हैं
1: जी,
0: तो उधर से भी 5, 10, 15 जितने लोग आते हैं भोजन करने, एक साथ पंगत में बैठते हैं, तो लड़की वाले के यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मोहल्ले की महिलाएं हैं, परिवार की महिलाएं हैं, मामी, चाची, नानी, दादी हैं, और होता क्या है कि
1: आसपास के पड़ोसी हैं,
0: सबसे एक नाता होता है।
1: बिल्कुल,
0: नाम लेकर कोई किसी को नहीं पुकारता है
1: जी,
0: कोई चाची है, कोई नानी है, उम्र के हिसाब से
1: बिल्कुल
0: नाता जोड़ लेते हैं, और वे सभी आकर उस समय गारी गाती हैं
1: जी,
0: और कहें कि जो आनंद लोक की सृष्टि होती है, जो आनंदमय उल्लासपूर्ण वातावरण होता है, वह लगता है

0: की एक आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित कर रहा है। और जानती हैं, गाना सुनने के लिए वे देर तक धीरे धीरे खाना खाते हैं ताकि हम और गाली सुन सकें, और गाली में गीत गवाई में पैसे मिलते हैं जिसे वे फिर मिठाइयाँ खाती हैं, सब मिलजुल कर, और हास परिहास होता है।
1: जी, इसका उदाहरण आप देना चाहेंगी?
0: मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, मैं क्रम से ही शुरू करती हूँ।
1: जी,
0: ये तो देखा दिखाई की बात हो गई।
1: जी,
0: उस समय से ही गीत शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: एक उल्लासपूर्ण,
1: हाँ,
0: उल्लासपूर्ण वातावरण हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: फिर इसके बाद जब विवाह तय हो जाता है तो संझा पराती बोलते हैं। शाम के समय हर घर में न्योता दिया जाता है कि शाम को मेरे यहाँ गीत गाने के लिए आना है। उसमें पान चलता है, महिलाएं कटोरी में चमेली का तेल लेकर माथे में महिलाओं के तेल लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, ढोलक की पूजा होती है तेल सिंदूर लगा करके, और उसके बाद देवताओं का आवाहन होता है।
1: बिल्कुल।
0: सबसे पहले 5 गीत गाए जाते हैं देवताओं के, और इसे ही संझा कहते हैं। और जो प्रातः काल में भी गाया जाता है उसे पराती बोलते हैं। प्रातः से पराती,
1: हाँ,
0: संध्या से संझा, सांझ।
1: बिल्कुल।
0: तो एक इसी तरह तुलसी विवाह से शादी विवाह का मौसम शुरू होता है। सबसे पहले तुलसी जी का विवाह होता है कार्तिक महीने में।
1: जी,
0: तो लोक गीतों में आप देखिए कि हमारे इतिहास और भूगोल दोनों की चर्चा होती है। यह गीत जो है तुलसी गीत, इसमें जेठ महीना से लेकर के कार्तिक महीने तक का नाम ले लेकर के कैसे उसकी प्रगति होती है, जो प्रतीकात्मक है, और यह कन्या से संबंध रखता है। तो तुलसी दल वैष्णव धर्म में ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिना तुलसी दल के पूजा सफल नहीं होती है। और हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी की पूजा तो बिना तुलसी दल के होती ही नहीं है, विष्णु जी की पूजा। तो तुलसी विवाह से ही विवाह का आरंभ होता है। और एक लोकगीत है, कौना महीना तुलसी

0: अंकुर भइल कौन महीना, जेठ महीना तुलसी कोड़ी कुदाल जी, कोड़ी कुदाल आषाढ़ महीना तुलसी अंकुर भइल, हे नारायण हे गोपाल, हे नारायण हे गोपाल। कौन महीना तुलसी दुई दुई पात कवन महीना, कौन महीना तुलसी चारी चारी पात कवन महीना। सावन महीना तुलसी दुई दुई पात जी, दुई दुई पात भादो महीना, भादो महीना तुलसी चारी चारी पात, चारी चारी पात। हे नारायण हे गोपाल, हे नारायण हे गोपाल।
1: अब विवाह की ओर बढ़ना है, देख दिखाई के
0: बाद। जैसे बारात आती है
1: जी,
0: तो बारात आती है उस समय जब दूल्हा गाड़ी में ही बैठा होता है तो परछन कहते हैं
1: जी,
0: प्रथम परछन यानी उसका वह स्वागत है।
1: बिल्कुल,
0: उस समय दूल्हा के परिवार के और दुल्हन के परिवार के सारे नाते रिश्तेदारों का नाम ले लेकर के गीत गाया जाता है,
1: होता है।
0: परछावन के समय भी, और गाली भी देते हैं। अगर लड़की की शादी है तो बारात लड़के वाले लेके आए हैं तो लड़का के दादा नाना मामा चाचा सबका नाम ले लेकर गाली देते हैं, और जब लड़की विदा होकर के ससुराल जाती है तो लड़के वाले के यहाँ लड़की के परिवार वालों के नाम ले लेकर के वहाँ भी पहले तो स्वागत किया जाता है, फिर गाली दी जाती है, और इस तरह उसे अपने परंपराओं का निर्वाह करते हुए फिर घर के अंदर सम्मान के साथ
1: बुलाया
0: ले जाया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो एक गीत है बारात के समय।

0: सोने का चक्र डोलावे तेरा दादाजी, मोती लागल अचरा परी छे तेरी दादी जी, मोती लागल अचरा। सोने के छत्र डोलावे तेरे बाबा जी, सोने के चक्र डोलावे तेरे बाबा जी, मोती लागल अचरा परी छे तेरी अम्मा जी, मोती लागल अचरा परी छे तेरे अम्मा जी। देखे ये जो लोक परंपराएं हैं, यह हमारी जो भारतीय संस्कृति है, कहा जाता है कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, यहाँ दूध की नदी बहती थी और सोने चांदी हमारे यहाँ बहुत आयत में थे, और वहाँ यहाँ जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष होते थे, वे गहनों से लदे होते थे, सोने चांदी के गहनों से, मोती के गहनों से लदे होते थे। तो सासू माँ, दादी माँ, नानी माँ, अपनी माँ, चाची जो परछन कर रही है, उनके साड़ी का आंचल भी मोती से भरा हुआ है।
1: और वो फैशन की बात नहीं कर रही है, वो
0: परंपरा की बात है, लोक की बात है।
1: बिल्कुल,
0: इससे यह साबित होता है, लोकगीत यह दर्शाता है कि भारतीय जो समृद्धि है वह कैसी थी,
1: बिल्कुल
0: किस प्रकार संपन्नता थी।
1: जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हल्दी ही होती है सोने की कटोरिया,
0: सोने की कटोरिया में,
1: तो सोने की कटोरी हाँ। है जिसमें हल्दी रखी हुई है
0: हाँ। सोने के मचिया में
1: जी
0: सासू जी बैठी हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वो गीत जो है ना, निमिया के डारी मैया झूले ली झूला नवा की झूली झूली, मैया गावेली गीतिया की झूली झूली।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें भी वह जब जाती है, उन्हें प्यास लग जाती है और वह मल्हारिन के यहाँ पहुँच जाती है और एक बूंद पानी को कहती है, तब वह कहती है कि मैया मेरे गोद में तो नादान बालक है, मैं आपको कैसे पानी पिलाऊं। तो कहती है मलिनी सुन के खटोले ललना सोलाव, एक बूंद पनिया पिलाव, एक बूंद
1: सोने मतलब के खटोला होगा तभी वो अपने बच्चे को सुलाओ
0: और मुझे ये पानी पिलाओ।
1: पानी
0: और जो पानी पिलाते हैं वो गड़ूरा भी होगा सोने का,
1: बिल्कुल
0: सोने के। अमिताभ बच्चन का वो गीत आप देखिए, सोने के थाली में जेवना परोसा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमारे जो लोक गीत हैं उसमें बर्तन सोने चांदी के हैं,
1: बिल्कुल समृद्धता
0: दिखती है, हमारी समृद्धि का बखान करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कि भारतवर्ष गरीब नहीं था, यह सांपों और मदारियों का देश नहीं था,
1: बिल्कुल
0: यह तो वेदों का ज्ञाता था, यह तो विश्व गुरु था,
1: बिल्कुल।
0: किंतु कालांतर में हमारी दुर्दशा होते चली गई, हमारा जो धीरे धीरे सने सने है कालांतर में,
1: हमारे लोकगीतों से बचाए हुए हैं,
0: लेकिन हमारे लोकगीतों में हमारी समृद्धि, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारा राष्ट्रप्रेम सब छुपा हुआ है, और हम इन लोकगीतों के माध्यम से ही अपनी भावी पीढ़ी को एक समृद्ध
1: इतिहास से भी परिचित करवा रहे हैं,
0: सौंपते हैं, इतिहास से परिचित करवाते हैं, जहाँ शिष्ट साहित्य, यहाँ तक कि इतिहास मौन हो जाता है, वहाँ हमारा लोकगीत मुखर हो जाता है और वह इतिहास के दर्शन कराता है।
1: चलिए, हमने बहुत सुंदर चर्चा की, समय की सुइयां हमें बता रही हैं कि कार्यक्रम अंत की ओर आ रहा है। तो आज मॉरिशियस के नौजवान, आप तो भारत से आई हैं, आपने शोध कार्य किया लोकगीत लोक नृत्य पर, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका संदेश, आपका विचार क्या रहेगा हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए, कि वे किस तरह यहाँ पे गीत गवाई के लिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं, परंपरागत गीत चल भी रहे हैं, पर कैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जड़ों को संजो पाए, जुड़ी रहे इन जड़ों से, इस पर आपका विचार जानना चाहूँगी, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं।
0: आज हम बड़े ही संकटमयी दौर से गुजर रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: आज यह तो सही है कि पूरा विश्व विश्व ग्राम बन गया है और एक मुट्ठी में दुनिया समा गई है,
1: मोबाइल ने दुनिया को छोटी कर दी है,
0: दुनिया को छोटी कर दिया है। हम अगर विदेश भी जाते हैं तो एक दूसरे से जाने पहचाने लोगों से अचानक मिल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: यह बहुत अच्छी बात हुई।

0: लेकिन लोकगीत जो है हमारे उत्थान की कथा तो कहती ही है, हमारे पतन की गाथा भी कहती है कि कैसे हम पतन की ओर अग्रसर हो गए। तो लोकगीत और लोक साहित्य के माध्यम से यह संदेश हमारी भावी पीढ़ी को दिया जा सकता है कि हमें अपनी परंपराओं को बचा कर रखना है। आज नई पीढ़ी में एक तरह से होड़ सी लग गई है कि हम ज़्यादा पाएँ, ज़्यादा चमक की ओर हम दौड़ रहे हैं, तो हमें उनसे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है
1: और उस चमक से मिट्टी की ओर जुड़े रहना।
0: बिल्कुल, हम आधुनिकता की ओर जाएं लेकिन पुरातनता को छोड़े नहीं।
1: बिल्कुल,
0: हम आधुनिकता के कारण अपने नाते रिश्ते को छोड़े नहीं। और आज बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि जो आज की युवा
1: रिश्ता बनाने में तो वर्षों लग जाते हैं और रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगता है। पल भर की भूमिका है कि हम रिश्ता तोड़ देते हैं।
0: सही है कि हमारी आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन सिर्फ उन्हें जड़ से जुड़ने की आवश्यकता है। तो हम पूरे विश्व को बदलने का मादा रखते हैं, नई चेतना, नई संस्कृति, नवोन्मेष, नव अनुसंधान को एक नवीन दिशा और दशा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो आज की हमारी पीढ़ी कर सकती है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत प्रतिभाशाली है।
1: आप डॉक्टर अंचराज जी की बात कर रही थी।
0: मैं डॉक्टर अंचराज जी की बात कर रही हूँ। डॉक्टर अंचराज जी ने अपनी साहित्यिक जड़ों को, अपने पुरखों के देश को, अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को ढूंढने के लिए बार बार भारत जाते हैं। बेशक वह उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के ध्येय से गए, लेकिन उनके हृदय में जो ललक थी, जो चिंगारी थी, वह शोला बनकर भड़क उठी थी।
1: यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, हमारे स्थानीय लेखक हैं डॉक्टर लालदेव अंचराज जी, उनकी चर्चा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ
1: जी।
0: और मैंने उनका जो साहित्य पढ़ा, मैंने उनसे जो बातें की, लालदेव जी इतने सहज, सरल और सच्चे इंसान हैं, देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने बतलाया था कि वे कोपवा, उनका गांव है भारतवर्ष में डुबराव के पास, वे जब चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे सन 1982 में, तो दिसंबर की बात वो बतलाते हैं। उस समय बिहार में बाढ़ भी आई हुई थी और बाढ़ आने के बाद की बात है। इन्होंने बड़े मुश्किल से डुमराव पहुंचते हैं, खोजते खोजते अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले नेपाल जाते हैं, नेपाल से फिर आते हैं बिहार, रक्सौल आते हैं, यहाँ से पूछते पाछते पटना पहुंचते हैं, वहाँ से डुमराव जाते हैं।
1: तो अपनी जड़ों तक पहुँचने की,
0: जड़ों तक पहुँचने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, गांव में जब संदेश भेजा गया तो गांव वाले 6,000 लोग इनके स्वागत के लिए ढोल ताल मजीरा लेकर के आए, इन्हें लेकर के गए अपने गांव, और जो इनका स्वागत सत्कार किया गया,
1: यहां पर ये शक्ति बताती है लोग
0: कि उन्होंने जो वर्णन किया है, वे निशब्द थे, निशब्द थे। वहां उन्होंने जो अपनी परंपरा देखी, अपनी संस्कृति देखी, अपनी जो समृद्धि देखी, जो अपनापन पाया, वह काबिले तारीफ है और उसे आज के युवाओं को, नव पीढ़ी को अपनाने की आवश्यकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कमी है, नहीं तो हम चर्चा जारी रखते।
0: मैं नमन करती हूँ मॉरिशस को, धन्यवाद मॉरिशस, और भारत को, जय मॉरिशस, जय भारत, जय झारखंड, नमस्कार।
1: टीम के साथ आप सभी को प्रणाम और नमस्कार।
2: गीत, नृत्य और परंपरा।

एक मामले में शामिल रही थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले सरकार, पुलिस आयुक्त और एमसीआईटी के एक अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया था जो इस मामले से जुड़े आपराधिक पहलुओं में शामिल थे। किसी भी पक्षपात या पक्षधरता की धारणा से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया। अब ये मामला 26 और 27 मई को एक नए बेंच के सामने सुना जाएगा। गौरतलब है कि नागरिक मुकदमे में पीटर वैन रॉबर्ट्स ने अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड से $3 million का मुआवजा मांगा है। और अन्य खबरों में बात करते हैं अब हम

0: अफ्रीका दिवस जो हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है, एक के अवसर पर मॉरिशस स्थित मिस्र के दूतावास ने अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक स्मृति समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कल गुरुवार 22 मई की शाम एबेन स्थित मिस्र दूतावास में आयोजित हुआ। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं थी बल्कि दीपक, फराओ की प्रतिमाएं और कई ऐतिहासिक वस्तुएं मेहमानों को मिस्र की समृद्ध और आकर्षक सभ्यता के केंद्र तक ले गई। आपको ये भी बता देती है कि अपने संबोधन में मॉरिशस में मिस्र की राजदूत अबीर अलाम एल्दीन ने इस वर्ष की थीम जल के सतत प्रबंधन पर प्रकाश डाला। उन्होंने मिस्र द्वारा बुनियादी ढांचे और विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण परियोजना का भी उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप के केंद्र में स्थित एक अस्पताल के एक हिस्से को घुसाई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब एक युवक, जिसकी इबोला से मौत होने का संदेह था, के परिवार और मित्रों को उसका शव दफनाने के लिए ले जाने से रोक दिया गया। स्थानीय राजनेता ल्यूक मालेम्बे के अनुसार भीड़ ने अस्पताल पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी और यहां तक कि आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग हो रहे टेंटों में भी आग लगा दी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है आप सबों का। और आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम ज़्यादातर कानूनी जो बातें होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमेशा की तरह हम आज भी उसी विषय को लेकर आए हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, चलिए उनसे मिलने का समय हो गया है। तो आज के हमने के संगे हमने के मेहमान हैं एक बार फिर हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत कर रहे थे थलोक के।
1: शुक्रिया।
0: और हम यही बोलब कि हमने के पिछली बार जो रहा जो हमने लोन पर बतियेले रली जा, ओकर में अभी बहुत कुछ बाकी रह रहल। तो आज वही जो टॉपिक बा ओके हमने पूरा करब जा। तो हमने के जितना भी श्रोता लोग हमन जा जो कुछ भुला गए जा, तो हम थोड़ा से मांग करब कि कुछ ना कुछ रिकैप हो जाए।
1: अच्छा।

0: मेर्सी बहुत जाने ना एक हाँ सकेला एक बार हम भाई बहन लोग जो सुनले हुई प्रोग्राम वहाँ हो वाला कोनो भाई बहन साइट नहीं सुनले हुई तो फिर एगो रिकाप करब सर तो साइट उलो के भी एगो को मजा एगो को कौन से नियर मिल जाए अरे हमने हो वाला बात कर रही सर लोन लोन के मतलब अप्रेंट मंगत हो मांगत हो
1: अभी देखो उधारी
0: उधारी अरे हमने बोते आज के दिन देखते

0: भाई हो वाचों से देखब जो सब ओब्लिगातो होल बा पैसा मांगे के बस की काहे पैसा सब कोई के हाथ में तो नहीं बा ना, ना घर में बा ना लाभक में ना कुछ बा। अब तोहरा मन बा एगो कुमा जे एगो है एगो पोजे करे के अब एगो पोजे करे के शायद जो सालिया तोहरा मिलेल बा वो कुमा जे कम बा। आज खे के मिला था हो इतना बड़ा बड़ा पैसा, ये सिर्फ देशवा में नहीं है दूसरों देश में कि पैसा होतना नहीं बा। आर जैसे बोले न सन लावी जीवसिल हो गल बा,
1: बहुत ज्यादा महंगा हो गल बा।
0: हाँ तो देखी ना सा हमने अब एगो कुमा जे जे भाई बहन ओके मन हुई लंसे करे के एगो भोजे एगो बिजनेस या गो घर बनाए के जैसे हम दिखले रही सा या एगो रेनोवेशन करे के वो घर या एगो जमीन खरीदे के। और सबसे बड़ा हर माँ बाप की इच्छा ये कि कब कर लड़का के भेजी दूसरा देश पढ़े
1: के लिए।
0: तक केकर संगी बा कब उतना पैसा कब एचएससी कर दे बा मिलियन लगेला दूसर देश में जाई के कहूं जाई बा अंग्लेतिर जाई बा लाफ्रांस जाई बा ऑस्ट्रेलिया जाई बा
1: अब का बने के रहला तो घर में तो और भी ज्यादा खर्चा रहला
0: और ज्यादा। हां तो ई फासिल नहीं अब ये आदमी के कुमा छोटा सा छोटा पैसा 3 मिलियन नहीं रही तो नहीं सके कुमा जब वकील के हई कुमा जब हई एग्जाम वहां कर या
1: पहले के जमाना में रहल जितना तेल उतना अचार।
0: हाँ ना? हाँ जरूर जरूर।
1: अभी कौन सी हो गल बा अभी फुजिदिया चला मतलब सब कोई पर तो कोई बात नहीं तेल ने बता अपनी फुजिदिया किन ले ला चा तो एक बल जला पैसा प्रीति करे के। और अभी के जमाना में जो भी बात करत हुआ पढ़ाई के तो जहाँ हमने शादी भी बोली ला जाते सब कोई पैसा प्रीति लेके शादी करा था
0: खूब बोल रहा है शादी के जैसे बोल शादी के जब एगो माँ बाप अपन बेटी की या बेटा की शादी करता तो के चाला हॉल चाला खाई पिए के दे के सब सब कब गनब तो ओके मिनिमम चाहे ला मिलियो
1: एगो एगो शादी आज सकब जब बोले एगो लग्जरी हो गलबा।
0: हाँ, हाँ,
1: ना
0: हाँ,
1: आगे शादी हुआ तो हल जितना रहल उतने में शादी हुआ था हल। अभी जब शादी होला तो सब कोई के बताए खातिन बड़ा बड़ा हॉल बड़ा बड़ा दिकोगाशो अब तो यहाँ तक कि अब आजकल के दूल्हा तो हेलीकॉप्टर में भी आवेला।
0: खूब बोल रहा है शादी के विषय में मैं दूसरा
1: लेकिन बात हर लागे करबा तो अच्छा बात बा लेकिन जब लोन लेके सब चीज करबा तो अपन कपार में कितना बड़ा देख डालत हो एक नहीं नहीं सोचे लंजा।
0: हाँ जैसे बोले एगो छोटा सा है सदिया के विषय में बोल रही है। हाँ शादी तो कुमा जे एगो है रहल एगो लेपोक आदमी बहुत शादी करे थे संगे अब एगो लामो हो गल बा जीवोस शादी करत आदमी आज काल जीवोस का हमने कि हम इतना
1: आज कल जीवोस भी सेलिब्रेट करत हो जा।
0: हाँ
1: देखो काटत हो जा देखो आशो हुआ था
0: वकील के पे करे आपकी ना कबू सब लाको हर एक सुख काश नहीं लगेगा।
1: हाँ।
0: मैं ये भी देख पा कभी एगो आदमी मज एक बार जिनसे शादी कर ले बाकी पैसा चाहे वो के नई बात जीवोस करे के तो जाना वो का करे बेचारी वो भी या बेचारा वो भी जाना जा एगो लोन मांगेला देख ला हर चीज में
1: पैसा
0: अभी के लिए पैसा के कुमा जा आर खोटना अभी कोई संगे नहीं बा पैसा की कुमा जा एगो काम करी आली जैसे एगो कुमा जी देख ले रही सर पहले के जमाना में रहल एगो मनी लैंडर्स आख वो रहल जनसे हमने बतले सा कासेया कासेया लोग के का करे पैसा फुते करे का पैसा फुते करे
1: जमीन
0: जमीन अंगाजे कर दे और जहाँ 100,000 मांगत हो वो बोली 200,000 दाल पपियवा में तब हम तो के दे पैसा न तो नहीं दे मैं आदमी के मजा का उबलीजे हुए बस की पैसवा चाहत लोनवा चाहत होकर से मांगे के तो होल मैं शर्मा का होल गुवेनवा जोन पासे कहलन सन देखा था कि एगो कासे लोग डोमिने करे बस करलक वो जो लाइसेंस रहल सब रिवोक कर देलक अब हमने के मोनी लैंडर्स नहीं बा हमने के देश में
1: पैसा लेके रही तालाब मांग जा
0: अब पैसा। हाँ अभी नहीं दूसरा जगह बाए हवारा देख ली सत का नीला मांग आधे कल से दूसरा जगह के देवेला था हमने बोली ला सर जहाँ अब जैसे बोला तुहरा मन हो पैसा चाहे ला लोन चाहे का हो गल बा तो एगो अंपैट लेके एगो पैसा लेके बहुत सा आदमी जीरेक जाला लाभक लाभक एगो इंस्टीट्यूशन है वो देवेला पैसा मैं लाभक छोड़ के और इंस्टीट्यूशन बा जैसे हमने देखब सब कब बोरोवर्स लैंडर्स कब आपसे देखब सर वो नहीं दिख रही सब बोला कंपनी है कंपनी भी रहेला कुमा जा कोनो इंस्टीट्यूशन भी बा ओकर कमु पोके लिसेंस बा दे के कुमा जा पैसा दे के लाइसेंस
1: बा दिखा के लगे पैसा बा उसके पैसा दे मैं समझ चला लेते रे दे के।
0: हां त उ देख लो सिनेमा हां ले तेरी ते ते चल भी करेला जे पैसा पर एकरा और भाई बहनियों में कोनो बोल रहे हम अभी देवत है तो के 100,000 में हम के हो तूने करिए है 125,000 या 200,000 है नहीं डाली।

qu'elle en ait dit. T'as dit que ça, institution d'une ne reconnaît pas qui a eu paysa prêté carré là ou la banque. T'as la banque qui déclare paysa prêté carré là. Ah bah, t'as dit que là ça, कौन कौन क्रिया देखले लिसा रहेला चाहेला कुमाजे ला बैंक तोरा पैसा दे हां गईल नहीं कि कुमाजे कर है दरवाजा ठोक ठोक हैला त तोरा पैसा निकाल के दिसवित मांग देला मंगला पैसा ते दे देला नहीं

0: तोरा पैसा निकाल के दे स्वीट मांग दिल मंगल पैसा थे दे दिलक नहीं सी बुझो एगो बिजनेस करी सी फाका ने कौन चीज करी तो ऊ देखी ऐसकी जो चीज हुआ ऊ के मांगा पैसा फियाब बाकी नहीं कोरेग बाकी नहीं पसी हर काली के जाफे लाबक नहीं खाली पैसा निकाल के पुष में से ओके कुमार जी आदमिया के दे दे नहीं एक बार खुते दिखेला अब देखे वो जो पोजे हुआ कर ले हो जाए कि चीज करे खो जाता ऐसकी कोरेग बा कि नहीं कोरेग बा पसी वो माने जो जो लोन लोन माने जो हमने बोले सर वो तो अपने स्पेशलिस्ट है वो जाने ला कौन कौन केशों पूछी कौन कौन जाफे देखे और कौन कौन खुते चाहेला ताकि लाभों को ओके पैसा दे अब देखे कबो के मांगी तो पहला ओके बोली ना कि तर है कि अच्छा अरे एक तो पोसे कोरेग बा हमने एक्सेप्ट है सर है तो दे के पैसा मैं काम कौन करे ले तू तुर काम कौन ची करे ले कितना तो के महीना में पैसा मिलेला अब मंगले बहिया मिलियों के अब यहाँ काम कर रहा था वेंसेंक मिलो पी पमुआ के तो खाई पी आई के सब नहीं पास तो कहाँ से हो गए पैसा आने क्योंकि तो पूछे ना ही सब तो एगो बोली के देखी कितना कर पैसा मांगा तो कर खीते अब कौन चाहिए तो ओकर दिखेला ओकर अब मांगे बोले हम तो जान ले एगो जनरल मैनेजर है यहाँ 50,000 मिलेला बोले बढ़िया फेलिसिटेशन बड़ी खुशी होली बस के सब कोई बोलेला वो लोग के वेंसेंक मिल मिलेला तू तो बोलते तो कि 50,000 मिलेला बड़ी खुश तू पे स्लिप दे तो पेशी पुआ तो पूरे भन तो में लिखल बा कितना मजा सब्जी डेक्शन छोड़ छाड़ के कितना कितना मिलेला तो उमे देखी तो अब गनी कितना करी तो बोली हाँ यहाँ तो 50,000 सी बोझो मिला था ओके तो बोली आली पेशी पुआ तो दे ले हुए कब पेशी पुआ यहाँ दे दिले बा तो ओके एगो दूसरा चीज करी तो बोली अच्छा तू ई दे ले हुए गो फेव बा न मैं इसके दूसर कुमार जी दे ले ले हुए दूसर से एक भानत में वो के देख ले ले ले बा मैंने जो वा के नहीं जाके बोली ना तो कि पूछी देखिए देखिए पैसा ले हुए ले दूसर ले ले ले हुए कुछ कोई के धारत हुए तब जाते हुए दे या कौन सी करे को जाते हुए बस के एक बार तक छुपा हुए ला सब तक नहीं से बोल दे ना तो जाके कुमार जाओ कि वहाँ बोल लीजिए जेरे काली हम आ नहीं पैसा फंसे दूसर के धारी ला वो पैसा तो बोले को तो देबे नहीं करी बोले धारे ले अब कैसे सजा भैया नहीं सिखले पे ये करे तो कैसे हई लबों को तो क्या के पैसा दे बस की तब नहीं लोग कहता हमके कुमार जो पैसा से गलबे तू पे ये करे आलोस तो ओके देखे ला वो लंपते हुआ सिपा ले ले बा पैसा सकी पे ये करे कि नहीं तो देख ले लग सब चीज अब एगो चीज ओके बोली एगो बड़ा चीज भाई भाई के कब आवत है ये भी इस चीज हुआ मैं हमके यही एगो क्वेश्चन पूछलक अब लोन ले बा आज के दिन लाभक बोलेला कोरेक बासी बुझू हमनी तोरा पे करब सर मैं तोहरा मिलेला 50,000 न हर महीना तो तोरा हमनी के चाहला थोत मिलू पी लाभक आगे पे करे के हमनी के उपमा जे है रूल्स एंड रेगुलेशन जीरेक तोहर पैसवा जब तोहर पाथो तोहरा पे करे एम्प्लॉय
1: तबे बता जाए
0: हुए से हमनी के लाभों को हमें तोरा चाहे ला हिया डिपॉजिट करे के पैसा हाँ जी पे ये करे के तोर पाथो पे ये करी लाभों को आके अब लाभों को आ जीरे कैसे होवेला लाफे जी मुआ काट के ले लेवेला ओकर पैसा उ में तला जी फेंसवा जोन रहेला ई तोहर पैसा है देख ला लाभ एगो पहले ही सब नहीं रखल दिन दिन देखत उनसन लूपहोल कौन कानीचे जहाँ फेबलेस रखल तो कोई से करे के ई तो ये उतर एग्जाम्प अब तू बोल नहीं बाप हमके मिलेला हो इतना 50,000 अब तू जेरे 30,000 हुआ जो पे करे कि काट देवे कैसे हम 20,000 में वे तो बोले हाँ तो ई कौवा में नहीं सकबे ओकर पॉलिसी है लाभों को आके वैसे कर पैसा हुए तू एगो पापिये सीए कर देवेला ओके नहीं चाला हर महीना के पूछे के काटे के पे ये करे के तो सब जो जगह काट दे हुआ से जब हमने देख ले रही सर
1: हम एक सवाल से कब करे
0: हाँ,
1: थे
0: जी, पूछते
1: अभी हमने बोले थे जा कि पैसा जब हम ले ला जा तो ऐसा कंपनी है जहाँ पर सकबा लोन प्रेते ले पैसा ले जैसे लाभ मौक ले बा कोनो एसोसिएशन है जहाँ से सकबा पैसा दे अब मान लो हम अपन बहन से पैसा ले ले हैं 100 मिल बोले देखो पापिये कर कि तू हमारे से 100 मिल पैसा ले ले हुए तो और हमने पापिये कर दिले है जा अब हम गई लाभांक में हम गए लाभांक पे पैसा चाहेला तो हाउ जोन 100 मिलवा बा लाभांक जानी की हम 100 मिल रूपी पैसा अपन बहन से ले ले है
0: एगो जोली के शो बोली द 7,000,000 डॉलर के मजे वो बात तो हर के शो हुआ जाने ला एगो एगो छत चीज है भाई बहन में हाँ। जैसे हो वाला देख ले सर रिकोनेसेंस दे डेट पपीवा में सब लिख दे ले हो सब चीज की पे करे के चला ये पपीवा एगो चीज बोल रहा नहीं नेसेसरी बा रजिस्टर करे के अब हम बोली एक बार हमने के एक बार चीज करब एगो हमार तो एगो पापी कर लैस।

0: हम क्यों नहीं चला जाके बी को अनरजिस्ट्रे में उपी हुआ अनरजिस्ट्रे करे के कब सके ओब्लिगेटोर जाके लाकू उपी हुआ के ओकर वाले देखी कि उ जोन बनैले हैं से बुझ हमार तू ए पोतबा कब एगो केस लाकूर में आई तब लाकू कब देखेला तो हिया उ जोन बा पपी हुआ ओकर आकत हुआ तो देखी बोली अनरजिस्ट्रे नहीं बा लाकू बोली कि हाँ हम नहीं सकब कुमा जे कोट ले कुमा जे हई पपेवा जोन बनैले हवे लिखल बने खी सब को रेक बा मैं अनरजिस्ट्रे नहीं बा हम नियर आबो का बाइक बना वो का बोले हाँ माई लोड हमने एक्सेप्ट है सा अनरजिस्ट्रे करे के हमने लिप्स लंगाजमा जीजमा के अगाड़ी दे के नहीं नेसेसेर है जाके अनरजिस्ट्रे ही करे के ऊ डॉक्यूमेंट यानी कि
1: एगो लेट जब दिखल बा कर मैं तो सगबा ले तो अपन लागे रखे हां ना एगो कॉपी दे देला अपन एगो कॉपी रख लेला
0: जोली
1: ना तो फिर ओकर बाद में आज मान ल हो अदमिया तो हर पैसा नहीं पे करता मंगला मंगला मंगला नहीं देवता नहीं देवता बोलबे देख हम केस कर देब लाकू भाई जो दे कुछ करबे तू पापिया वाले के गर्ल अपन आबो का अपन आबोए आबोए ओके अनरजिस्ट्रे कर दे
0: ना नहीं अभी से बुझो नहीं अनरजिस्ट्रे बा आबो को वा खाली देख ले बा वो वा देख ले बोले बोले जाने नहीं अनरजिस्ट्रे बा ते बोले कोरे के बा केस जब से लाकूर में दली अब हां
1: नहीं
0: कर लेबा जीते खाली अबुकवा लाकूर आदमी से करेला बोले हम एक्सेप्ट हैं लंगाजमा ले हई माई बाप हमने अनरजिस्ट्रे कर पपी हुआ
1: यहाँ पर हमने के जितना भी दर्शक लोग हमने के देखा था लोग के एक एगो चीज सकब सब बोले हमने के श्रोता लोग की कि कहीं भी आप किसी से पैसा लेवत हुआ देखा एकर में शक के कोई बात नहीं बा ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं बा लेकिन एगो आदमी जब तुहर से पैसा मांगता और जब आप ओके पैसा देवत हुआ तो एगो अपन भरोसा अंगाजे करत हुआ एगो अपन ओकर भरोसा बाकी उदे तो जब आप ओपर सगबा भरोसा करे तो ओकरो भी चाहला तोहर पर भरोसा करे के एगो पापिए हमेशा करिए और सीए करिए कि देखा फलनवा पैसा ले बा और हई पैसवा वो हमके बोले बा कि आवत बरिस हमके ईद महीना में लौटा दे तो दोनों जना सीए करत है जा और बस है ये दू जना के बीच में गो लेत हो जाए सीए कर दे बा काल आज हो इंसान के ओकर ईमान डगबगा जाए काल आज ओकर मन में चलाए कि हम काहे देव पैसा हम तो नहीं देव ना बोली हम नहीं देव पैसा तो कोई चीज सकबा करे तो हर लागे कम से कम एगो सबूत बा एगो पापी बा जो सकबा लाकू में पूजा करे तो हमेशा याद रखे कोई के पैसा देबा हमेशा एगो पापी चाहला तोहरा बनाई के
0: अरे एगो जुड़ी चीज बोल रहा हमने आपसे एगो दूसरा हाला एगो प्रोग्राम लेके सियाचिया के वाले का है कौन ओकर वालेर है काहे चाहला सियाचिया करे के नहीं रहेला सियाचिया तो का होला हमार तू एगो अग्रीमेंट कर ली सर सुबोजो हम तोरा बोलब एक मिलियों हम तोहरा दे हिया बना दे ले सब पापिए न तू सीए कर लेब न हम सीए कर ले कहीं कौन वाले हुआ बा समझ लन अरे एक बान आप सके नोतिर यहाँ जाला आदमी नहीं सीए करेला आँचे सियाचिया के ओकर वाले हमने आपसे एगो प्रोग्राम लेके काहे ऐ पोता हो सीए करे के चाहला और सीए करे के गाड़ी कौन कौन चीज देखे के चाहला एगो दुखी मम्मी अच्छा आज के लिए अभी भूल जाइल सर हमने आयल सर लोन में अब लोन में कब यहाँ लाबंकवा कब भाई थोड़ा पैसा देवता तो दूसरा एगो कोंजिशन बोले बोले भैया हम के खोरेक बा यहाँ लाबंक एक्सेप्टे बा कुमा जे तोर खुतेवा में दे के मैं चाहेला एगो आशी हंस एगो लासिकंस लेके एगो फेम जो लासिकंस को मजे आसिगे करी कि कम को तू ओके पिए कर आसिकंस दे वी जम जैसे बोल जा सर ओके चाहे ला एगो लासिकंस लेके ते वो फेम देखी वो कौन जाए वो कंपनी देखे जो लासिकंस करेला वो आदमिया के को मजे आसिकंस दे वी ओके को मजे हर महीने में पिए करे लासिकंस वा के ये काहे मांगे लंसन जब वो आदमी आज पैसा ले ले बा अंप्रेंटे हुआ ले ले ले बा पैसा लासिकंस वा के जो करेगो रही कुछ काल हो जाए तो लासिकंस वा ने पे हुए ला अभी एक आदमी मुझे काम करता जब एगो काम करता एगो फेम में तो कर पातों बोली कोरे बा तुर लावी जुन बा हमने आश्रय करी ला सर तो एगो फेम लेके आश्रय करी सी बोझो एगो मेडिकल इंश्योरेंस अब कल आदमी मलाद हो गल तो चल जाइए क्लिनिक में या
1: लासिकंस
0: वा पे ये करी तो यही ऐसने अनमन जब लाबंग देवेला पैसा तो बोल रहा चाहे ला तो के एगो लासिकंस लेके और लासिकंस वा जे तू कुछ काल हो जाल सी बुझो है गुजर गल तो कुमा जल्ला से

0: तो आप ये करिए।
1: एक दिन चाहे राशियांस पर पे ये को प्रोग्राम करिए।
0: हाँ कुरिए कहाँ जब खुशी आई हुई हमने आई हुई।
1: अभी लोन के देखिला जा।
0: हाँ अली तो दूसरा देखिला सा क्या करेगा लाभांक सकेला मांगे ये को राशियांस ये देवी एक बगल पैसा दे बोले सिल्मा हमके चाहे ला ये को जीबीए और गारंटी समझ लें तुम्हारे वो जमीन रही
1: हाँ।
0: तो बोले वो जमीन के बियाँ अं गारंटी मतलब एगो लिपोटेक ले उ है जमीनवा में जे नहीं सकला पे ये करे तो तोर है जमीनवा से जी करके बेच दे ते ई भी हुए सिर्मा दीपा कितना पैसा मांगत हो तब लासी हंस देवी आने गारंटी मांगी जीबियाँ में कि एगो लिपोटेक डाल दो एगो है के एगो जीबियाँ के तब लिख दे अरे ई तो दो तीन गो कृत्य देख ली स और तीसरा पर खुते हुआ जो आवा था गारंटी मांगता एगो आदमी के पोते गारं जैसे हमने बोल जा सर एगो आदमी दूसरा आदमी गारंटी करी या नहीं बताई सर लाशीगंज नहीं बोलते हैं सर कि ओकर जिबियाँ गारंटी करी एगो आदमी खड़ा रही जे काल तू नहीं सकलक पे ये करे लबंकुआ के ता लबंकुआ फुसफीव करी हो गारंटी वा जो आदमिया खड़ा होलबा तोहर ओके पे ये करे के
1: यानी कि हम गईनी लोन ले हम ले नी एक महीनों के लोन ले गई नी और हम हमके बोलन सा कि एगो गाँव चाहे ला तो हम बोली तो वकील जी हमारे एगो गाँव ची खड़ा हो जा तो तू अब गाँव ची दे बा हाँ लापे मिले ला इतना पैसा मिले ला सब कुछ ठीक बा दाल दिला सब कुछ हो गल अब हम नहीं सकते पे करे तब पैसा तोहर कटाई
0: है क्या कटाई नहीं अभी देखब से कितना पापी भी ओके है कि भेजे के चैनल ये सब पहला चीज खड़ा नहीं हुई गाँव ची हमने तो एगो लिमन दोस्त है सर कल हमके बोलब है भाई रघुनंदन खड़ा हो जाहू हमारे गोला हमके मनबा पैसा लेके हम बोली माफ करिय सब चीज बोलिय आके आके घर में खा उ लिय या एगो रस्ते में बैठ के लिमन से खा लेब सर या एगो चाली मन से
1: फिर सर देवत है हियर राजा गाची नहीं
0: गाची खड़ा नहीं गाची खड़ा में बहुत सा रिस्क बा
1: ढेर झंझट बा
0: झंझट कभी ऊ आदमी या नहीं सुती हो गमट करता जोन देले बा अभी हम बोला नहीं काहे तो हिया कब तू खड़ा होल बा सब टेम सब जोन कालिते बन ओ लाबंकवा बोली तो ओ कोंत्रावा के टेम वा ou garantwa responsable ba bole la ou me inday bole en maaf kari anglais bole lagli je ou nay sakrap paye kare debite wa ji paiswa mangle ba tu ka ganchi khada ho ta tohra chahe la paye kare ke final tak okar l'intérêt okar capital paiswa aur la ban छोड़ के कुमार जी है के देवी तेवा के जोन पैसवा मंगले बा गारंटी जोन खड़ा बा ओके पूछवीव करी बस उ जाने रहे खड़ा होल बा गारंटी ओकर तक कुमार जी ओकरो जमीन हो या कुछ
1: लेने के देने हो गल
0: हाँ यही का दिन बोली ना बड़का इस बाक नहीं सब कुछ करे जहाँ लेने के देने हो गल इसे में बोली सब चीज करिय गारंटी नहीं खड़ा हुई हाँ एक्सेप्शन बा एक्सेप्शन बा जहाँ मैं भी बा उ सब मैं कहाँ बिल बिल पैसा मजा रहेला खड़ा हुई के
1: भरोसा नहीं रही तक बोली जाना गाँव से खड़ा हुई के
0: कभी भरोसा में हम देख लेंगे कि बांच याद से नहीं है
1: घर में भी खतरा बा
0: इमें भी खतरा है एक आदमी में भरोसा कर दिल कल तुरा थाई कर दिल भरोसा गिर गल भैया
1: हमके कोई बोली हमके कोई बोली जाके गाँव से खड़ा हुई के हम बोलो हमके वकील बाबू बोले बा गाँव से नहीं खड़ा हुई के
0: आओ खा लिया चा पी लिया मैं नहीं के खड़ा नहीं के का करेला लाभंक फुसफीफ करी गारंटी आके कब आदमिया देबीते हुआ नहीं पे करता तब ओकर में सब चीज ओके सिल्म कानून में ओके जनाए के जना हर छः महीना में अच्छा ये बोले कि हर छः महीना में लाभंक चाहेला भेजे के एगो ले देबीते वो हिया और जे गारंटी हो हिया कि देख ले ले रे से बोझो एक मिलियो इतना पे करे गलबा इतना रह गलबा इतना आल तक पे उलबा समझो कर बैलेंस जैसे हमने बोला सर कि कितना कितना हर छः महीना में ई एगो ओब्लिगेटो जैसे हमने बोला सर आउटस्टैंडिंग डेट ओके बा पे ये करे के तेल आरु के चाहे ला लागंजमा करे के हई गाँवा के पे ये करे के बस के उदे बीते हुआ जो पैसा ले ले बा नहीं सकता पे ये करे
1: अब ई जान गल कि वो नहीं सकता पे करे तो कुछ सही करे हाँ, गाँव खड़ा बा
0: सिर्फ का करी लाभंक क पापी भेज दिलक सब चीज देखता उमें भी नहीं पे करता न हो बुआ तो खड़ा रखल न गाँची वा गाँचिया नहीं खड़ा होला खाली वो पापी सीए करेला
1: तुम्हें हाँ, बोली सबके बोलेला कि एगो गाँची खड़ा है कि कोई चीज बा खाली कुछ नहीं हम सब कुछ हम ही करब तू खाली सीए कर
0: हाँ,
1: हाँ, इसने बोले
0: इसने बोले
1: हम ढेर करके सुन ले देखना पैसा ले बताए गाँची के काम

0: बा तू के कुछ नहीं बा करे के हाँ? पैसा तो हम ही पे कर हाँ? तू खाली सीए कर तो हाँ? हो सिंगा छेवा के पीछे कौन ची बा हाँ? हमने के तनी बतावा
1: आली इस ही बतिया सब लबंकवा के बोले रल गाहा छेवा के तू खड़ा हो थे ना किसे तू बोल ए खड़ा हो जो दो कही तो मैं कुछ हम तो पे कर कब गारंटीवा एन जे में आवे ला कब ओके प्रॉब्लम होवे ला कब इ डेबिटे हुआ जुन पैसा ले पे ये नहीं कर ले बा
0: यानी कि जितना ही कर लोन बा जितना पैसा बा ओके चारा पे करके जे गाओ खरावा
1: हां अब का कर ले बा कब घर ला बंकवा के आगे तो मैनेजर वाला बंकवा के एक्सप्लिके कर ला लोन मैनेजर जी से हमने बोला था ना तो वो बोले रल देख वो नहीं पे करी था तो के पे ये करिए के चाला वो एक्सप्लिके करे ला वो बखत
0: तो हां बखत में जब एक्सप्लिके करी तब तब सके कर दिमाग घूम जाए बोली देख हमने से कब गाओ छ खड़ा हम तो भाग जा
1: एक बार बा ये वो सेम जिस तो तोरा बोली ला आ दे वो छोड़ के रही के काहे ई कॉन्टेक्स्ट वा में अलग
0: हां
1: एक बार आदमी का करेला ओ चाला ओके कुमा जे एगो लाफिदाविद करे के
0: हां
1: ते एगो लाफिदाविद करे के कोनो विषय के एगो लाफिदाविद दे सक्सेशन हो या कुछ हुई बोली जाने ले हमर खातिर खड़ा हो जो एगो कुमा जे एगो लाफिदाविद करे के चाला हम के चाला दुगते मोए तो दुगो ते मुआ के गल देखे ना खड़ा हुई के लाफी दबिदवा बस ऊ खड़ा ऊ नहीं सीए करी तो हई लाफी दबिदवा में तो तब वाले नहीं बा एक बान आदमी बोले बोले कुछ अब नहीं भयो हमें खाई कुमाजे सीए कर दे कुमाजे है खाली वो तो लाफी दबिद इच्छा कुछ नहीं हा बेगो बोली के जोन चीज बा ऊ लाफी दबिदवा में हई दुगो ते मुआ वहां खड़ा रहल अब जाके कुमाजे ऊ जोन बोले कोई कोनो चीज हो गए लाफी दबिदवा में या एगो झूठ के बाद बोल देलक जोन एगो आदमी जीते रहल ऊ के हुआ लिख दिले रहल कि मर गल
0: तो सही वर्कआउट करे
1: नहीं बकाउट नहीं है तो कर प्रॉब्लम हो गल दो बरिस के कई सकेला चल जाए फुस लाफी दाबित करे के बस जा का है तो यहाँ तो सेमो नहीं करेला कब लाफी दाबित हुआ करेला जीज के सेक्रेटर हाँ, के आगे
0: दाबित हो रहा तो छाना सेमो रही
1: के तो सेमो कर लेता बोले सच किसी का कुछ नहीं बोली ना हाँ। यहाँ तो झूठे बोला बाहू में निकल बा तो यहाँ तो ऊ तो नहीं जाना था बोलते सैफ खाली खड़ा हो जो तो कब देखू वे होल कि एक मजे जो लफी देवा लफी दाबित हुआ कर लग वो एक मजे खोरेक नहीं बा झूठ है तब देख बला पुलिस एगो लंकेत करी तो पूछपिछ करी ओके कब मिश्रा के आगे बोली मिश्रा बोली हाँ आल हुए तो एगो केस बा कि फोस लाफी दाबित कर ले हुए और जो अब जनलक कि हाँ वो लाफी दाबित हुआ फोस हुए बा तो हिया तो के बोल कान बोली तो कि हम के बा दो बरिस तक कुमा जम सकब तो बंद करे या गोलामान भी बा तो खाली खड़ा हो गए गांची वो नहीं रही से हो तो गांची वो का बोली हिया कि हम नहीं जाना था कि कुमा जे कि वो नहीं सकी पे ये करे अब का करी लाबा कब देखता वो आदमिया दीपिते हुआ जो मन लग पैसवा नहीं सकलक पे ये करे तो कर चक पैसा ना चाहिए ओके ना ऐसे करते लाबंग तो लाबंग तब फाइट हो जाते तभी तो लाबंग तो बहुत पैसा करेला जल्दी करेला अरे तो के हुआ गारंटी हुआ जो खड़ा हो आदमिया अब ओके बोले कोरेक बा पपेवा भेजलक रिस्पॉन्स आल देखता कुछ नहीं होल बा तो का करी अंकलों से करी एगो केस लाकूर में अब लाबंकवा के ओकर तो आबो याबो का सब बा वो लोग के बोले एगो भाई नोटिस मिजन दे में एगो पापिये भेज ले गाल कि आके पे ये करे के अब आदमिया नहीं सक पे ये करे अभी भी नहीं कर लग तो बोले सैफ हा वो रिक्विजे करे के उद्दे तुआ जो पैसवा दे ले बा तो सेजी करी जिबियन है के जो गारंटीवा बा तीन कार तो दिबिते जो गलबा पैसा मांगे ओकर तो जिबिया हुए नहीं बा बा कोनो के ऊ भी लाबंक मांगे ओकरो जिबिया और गारंटी हुआ भी फिर मांगी लाबंक है मिसिल मत तीन कार जोन के गलबा पैसा मांगे वो बोले काहे आन ले बागो दूसर गाँव करे के बस ओकर तो नहीं बा जमीन उन और यहाँ लाबंक बोले दे हम तो के दे पैसा मेरे को गाँव आन मैं गाँव हुआ कि ना जिबिया हुआ में ओकर कुमार जे हाथ दल ले बा तहिया कब नहीं पे कर लग दिबिते हुआ गारंटी हुआ खड़ा खोल ओकर तब बोले को रे बा को नम दिल ओकर आबू आबू का तान कर ले बाबा कब ओकर कुमार को लबों को के बोली एगो केस कर तो केस कर के हिया डाल दे कुमार जे लाकुर में तहिया दिखब अब ओकर एगो केस आल
0: अब गारंटी जुन बा क्षमा करिया मान रहा कि एगो गारंटी एक जना के बोले वंश गारंटी खड़ा हुई की तो कर खाली एगो लापे ही मिलेला ओकर जमीन जायदाद कुछ नहीं बा खाली एगो लापे ही मिलेला तो खाली ओकर लापे ही कटाई ओकर जमीन जायदाद तो नहीं बा तो ऐसा गाँव खड़ा होला कबू
1: नहीं दे पहला ई चीज लबंकुआ भाई पगला नहीं है ना बोले हाँ ईद गांची नहीं बकाल तो के हो तो तोर कमुआ नहीं हो जाए और ना तो के पैसा मिलता अलीगो बोली के जैसे हो वाला देख ले तोर कमोई नहीं बा काम रल हाँ अब बिला गए कमुआ कहाँ से पैसा मिली तो के पे करेगी तो हमने नहीं से कब से क्यों पे करे तो एगो खरीदे इम्पोर्टेंट ला बैंक

0: गाहों के बोली गाहांची हो तोर जमीन में कि नहीं सकी ऊ पे ये करे तो तू पे ये कर बे तो का करेला अपन आबुका हुई के दिख लेलक खेस के कुमा जब डाल देलक मस्त कोथिया तो आई एगो सेजी से एगो सेजी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हमने बोल सब मस्त कोट के आवेला उकर सब कहीं दूसरे आदमी कंपनी से केला पे ये करे को घर जमीन उनके तो केसो आवेला लबार में जहाँ सेजी हुएला तो ऊ जो गाँवा खड़ा रहल ओकर जमीनवा सेजी करी लबंकुआ ओकर के साइल आई हुआ अब पूछे करी हमने एक दिन आपसे वो पोका में लाभ कैसे होएला है कैसे एक मजा शुरू वाला एक आदमी के ओकर है जमीन उन नहीं सकला
1: के चक्कर में ढेर कुछ पता आज सीखेगी हमने क्या
0: हां नहीं नहीं कुछ ये अच्छा नहीं जहां जैसे तू कभी है पूछत हुआ जोली जोली के शो बाए हम तो आप ऐसे करते हैं बस ये फिटिंग हुआ था कुमार जी एक बान चीज में जो तू पूछत हुआ मैम के निकित है बा लोन बस कि कानून ऐसा ने को चीज है बहुत बहुत सस्ती हाँ, मामा
1: हम समझ गए नहीं कहे कि एक जना आज एक काम करता और कर खाली लापे ही बा तक काल दिखा था और कमागत नहीं सका था पे करे तो कुछ करी जाके दे मिशो दे दे बोले हम काम छोड़ा था
0: हां
1: पैसा कटाता
0: हां
1: सब कुछ तो ऊ पे करता
0: जाने लगो सेफ बा की कुम का नहीं सकी पे करे तो हम अपन आबू आबू का देख के बेचब कुमा जे हई सेजी करके हई इलाकू में तो हिया देख लो जब सेजी कर दिल हई तब सिपोज एक मिलियन के मजे हई ला डिफरेंस बा पे करे के हो दे बीते हुआ नहीं सकलक पे करे तो हिया एन मिलियन अरे घरवा हुई और जमीन हुई कब बेचलक सिपोज तीन मिलियन के गल बेचाल हुआ हाँ लबों को ओकर एक मिलियन हुआ जो बैलेंस हुआ बा उ हुई ले और जो लेवेज बा दो मिलियन हुआ ज्यादा ओके हुई तू ने करी ओके चार ओकर गारंटी हुआ गारंट के ओके हुई तू ने करी के ये तो बड़ी चीज बात पहला चीज वो चीज सीख माँ बाप ले ले ले बा झोली से एगो पैसा लाभंक से तो लाभंक हिया तो का करता लाभंक बोले कुरे बा हम के ऐसे बोझ बाप ले ले ले बा पैसा लाभंक से ओकर खई जमीन बा होई दे दे ले बा अरे हिया तो कोनो एगो बोली के जमीन हुआ नहीं बा पैसा ले हुआ पे कर दे लाभंक साची से हो रहा बापुआ जो ले ले रहा पैसवा लाभंकवा से आवं ओकर दे पे करके मर गल के लाभों का पुष्विव करी हिया तो सी बुझो गाँव नहीं बा तमने के कानून में लिखल बा कि जोन ओकर लैका रखल हो जोन आदमिया फैते कर ले रखल पैसा उमर गल ओकर लैकवा के लाभों पुष्विव करी पैसा मांगे के एक बार बोली हम नहीं हमार बाप ले ले रहा हम नहीं बोले भैया तू से विचे होवे तोर माँ बाप के या कोई भी होई मैं तोरा चाहेला पिए करेगी
1: अच्छा एगो सवाल है जो बा
0: हाँ बोला
1: माँ बाप लोन ले ला मान ला कि देहांत हो गल माता पिता की तो लैकवा उ घरवा में रहता जमीनवा जुनबा औगाजे बा ना तो लाभोंग जुनबा उ लैकवा के पुष्विव करी या लैकवा के बताए कि देख तोर माँ बाप ले ले रहल पैसा अब हमनी के पड़ता जमीनवा बेचे के कहे कि हमने के पैसा चाहला वापस नेसेसरी वाला लैकवा पर केस करी के उखाए केस करी
0: हाँ आली ई बोलीला फर्स की ओकर जेवी छे के हो जुन पैसा ले मंगले रल आर मरगल ओकर लैका या कोई भटनी भी होई की कोई
1: अच्छा बोली लैकवा के तू सग में पे करते पे कर नहीं तो अपने घर बेचा दिसा
0: हाँ ना तो हम सेजी कर दे भाई आली एगो दूसरा चीज यही में बतियाई सा कि जेवी छे के विषय हुआ में बाप ले ले रहल पैसा लाभंक से नहीं सकत पे ये करे अब हिया बा ओकर कुमा जे लैका लैका लोग के जमीन बा पौसी बपुआ तो छोड़ के चल गए रहल लाभंक ओ लोग के लैकवा लोग के अब मन बा पहताज करे के तो हिया को पहताज करे खोजत हुन सन त सीखलन सन या जनलन सन कि पैसा बपुआ ढारे ला लाभंक में एक नाम सिक्सेशियो है हमने तो पोगा में एक बार
1: माना चार गुलाई का बात
0: हाँ चार गुलाई का बा चार गुलाई का देसी दियोल बा अरे माँ बाप चट खोड़ के मर के चल गल बा हाँ देत ले ले रलन सन अब चलो हमने अपन पताज कर अब सब जुन जुन हमने के माँ बाप के पैसवा बा
1: तो आने हाँ
0: ऐ का अपने बोल नहीं सकियन सन करे उपतजवा उपस की एगो सिक्सेशियो में का तब ले
1: नहीं पे

0: नहीं सकल दाई कुमार जी अब वो कहा वही तो जान जाए तो पूछिए ना तो हुआ तो देख भाई गो कुमार जी एगो ऑब्जेक्शन जिसे बोली जा सर एगो ऑब्जेक्शन बा लाभों के एगो ऑब्जेक्शन डाली कि कुमको हमर ओकर बाप ले लेल पैसा अब लोग पताश करता तब लेक नहीं दियन सन हमर पैसा मन हमर मतलब लबंकवा के तो हमने एक्सेप्ट नहीं है सर कि उ लोग पतजुआ करी तो देख ल सब जमीन सिक्सेशो में सब अपने हियाँ रगल और यहाँ तो बोले अरे बाप माँ बाप तो छोड़ के मर गए हियाँ छोड़ दिलवा बड़का जमीन हमने तो पोपितर बनल सर।
1: अब अगर मैं ई भी बा कि आज मान ल कि जमीन की बात करत है जा कि माँ बाप जोन बा वो लोग एगो लड़का खातिर लोन ले लन सा एगो लड़का जोन मान ला एक जना वकील बने कर बाप बा पढ़ाई करे ओकर खातिर बड़ा लोन ले ले हुआ सा जमीन औगाजी कर लन सा वो बाकी लाइक पन कुछ नहीं जानत हुआ सा वो लोग ना
0: जानी नहीं जानी हो लैकवा एक्सेप्टे रलन सन या नहीं एक्सेप्टे रलन सन की बपुआ
1: पिता चल गल तो सब के बड़ी
0: सब के चला सब जीवचे के ओकरे नाम हो आफी दाविद सिक्सेशन कब करल जाला तो बोलल जाला ना कि ई हमर बाप मजे के शादी करे ल हमर मां से तब चार गो लैका हो रल चार गो लैका एते ल तेल है स हमनी के नमो ह समझ ओकर जीवचे हो जाला तो उ जीवचे वा कब हो जाला एक एक गो के कुमज बुजुम बपुआ ले ले रहा लोन जैसे हाँ। बोला वकीलवा के वहां भेजे के तो हिया का होल हो लोग मेम की जानी या नहीं जानी चाहे ला चारू जोन बा लैकुआ पेये करे के कंट्रीब्यूए करे के एक बार हमने के बाद देख लें सर बोली जाने ले हम तो वकील जी हम नहीं ले ले रही है कोई सू ये तो हमारे बाप हमारे भैया के दे ले रही है हमारे बहनिया के हम तो नहीं जाने ला हम नहीं भरब
1: हमारे तो बाप के तो लड़का तू भी हवे ना
0: हाँ तो ही यहाँ ओके चला
1: धरी जब लापौताज हो तो तोरा अपन जायदाद में हिस्सा चाहिए तो हाँ। जब लोन भरे के बाद लोन में हिस्सा का ही नहीं
0: और हिया जहाँ बपुआ तुहर तो अपन बाप है जो ऊ कर ले बा लोनवा मजे इनकय कर ले बा तो तुहरा चाहेला पे करे के तो देख ल हिया ओके पे करे के चाहेला या कॉन्ट्रीब्यूए करे के या देखी या न तो पताज नहीं है सकेला कोई उसकी बोले हमर पता हमर
1: मान ला ऊ लड़को अपन घर किन के कहूँ और चल गलबा चार गो लड़का में से एक जना अपन घर किन के ऊ कहूँ और चल गलबा ओकर जमीन जायदाद दूसर बा
0: हाँ कुछ नहीं बा मैं हिया कर बपुआ के लड़का था बा ना वो खाली तो घूमे बकर नमुआ तो सिबोज कर नाम है रघुनंदन बपुआ के नाम है रघुनंदन रघुनंदन सखी छोड़ के दूसरे देश जाए
1: नहीं हमर कहे कि मतलब ई बा कि चार गो बेटा में एक गो बेटा शादी करके घर बना के चल गल बा एक
0: हाँ, बगल एक बगल से पाले रहता
1: से पाले बा हैया जमीनवा में तीन गो भाई रहता तो जब बाप माँ बाप चल गल मतलब लोन पे करे के बा तो हो जोन एक बगल चल गल बा ओकरो चाहना पे करे के
0: ओकरो पे करे जब ओकर चाहे ना ओकर नमुआ डाले के ना को पता सुवेला तो एगो प्लान आप वे दही करेला ड्राफ्टी करेला तो दफ्ते वाम करी ना बोली ये ऐते लेते लदमी कुमार जी हमने के हई करत हैं सा पताश करत हैं सा अरे एगो बोली के जोन हाउ चल गल बा एक बगल हई तीन को भईवा सके हो भईवा के पूछ पीप करे लाकू में पताश करत हैं सा ऐते तो उसे की बोले हां तू मांगत हुए हियां भी पिए नहीं कर लेवे बपुआ के मर गल बा ओकर बगल हमने तो पिए कर ले सम तू पैसा दे तब तो बगल हियां जमीनवा तो के मिली
1: यानी कि कैसो भी कर बा सब लोन पे करे के बात आवेला तो नहीं सकबा कहूं भागे परदेश में भी जाके बैठल रहबा हाँ। चला हुआ से निकल के आके पे करेंगे
0: आ नहीं आई ल देश में रहबा तो कि कातिल में डाल ले हुआ कर भाई वालों बजा कि कातिल के पे कर दे कातिल खड़ा रही हुआ देतवा जो धारा था हुआ हुआ कैसे आई यहाँ काल जमीनवा में हाथ डाले खोजी कि कातिल के बीरो में हुआ लिख देवे ला सब बा बेगो एंट्री कि हियाँ आतेल बा कैसे आल हुआ गल देखे अब कातिल भैया पैसा नहीं पे कर ले रहे तो अरे बाप के कब मर गला लाभों के हेने होने के मजे मैं ये मिधारे ले पे ये कर रही यहाँ हूँ अपनी पे करब सा तब यहाँ तुर पार मिली
1: बहुत कठिन वा
0: हाँ,
1: लोन लेवल इकर में बहुत खतरा बहुत झंझट बा सब कोई सोचेला कि लाभों के ला कोई बात नहीं जमीन घर औगाजे हो गल तब पैसा तो घरवा तो हमनी के होई लोन पे करत हुआ कितना कोई लोन सोचेला अभी एगो एग्जाम दे ला जा शादी के एगो छोकरा एगो छोकरी खुशी होलन सा छोकरी जमीन किनल ना
0: हाँ।
1: शादी करलन सा छोकरा ओकर में घर बनेलक
0: हाँ।
1: या तो फिर एगो छोकरा जमीन किनलक छोकरिया ओकर में घर बनेलक ना
0: हाँ।
1: तो अब एकर में जब एक बरिस के बाद जिवोस हुआ था तब हियां ला पता है कैसे सकी हाँ,
0: होई ये जुली सर हमने आपसे एगो प्रोग्राम
1: लोन में की बात कर रही थी सर हाँ, लोन के लोन हाँ, के हाँ। मान ला दोनों जना शादी कर लन सर लोन ले लन सर जॉइंट अकाउंट में
0: हां हां
1: ना
0: हाँ।
1: अब जीवो से होत फंसा ऐसा में कुंजी होला
0: सैप जे कुमा जे

0: एगो लोन लेले होई मिसेवा, शादी कर ले भन्छन्, मिसे मदाम हो भन्छन्, मिसेवा ले ले रहल एगो लोन एगो जमीन में एगो घर में या आजूते करे के या कुछ भी लोन ले ले रहल अकेले उ बकत हुआ उस जमीनवा में मदमा कुछ नहीं बा के पिए करे के काहे शादी करे के अगाड़ी उ ले ले ले रहल एगो लोन तो उ रिस्पॉन्सिबल हुई मिसेवा पिए करे के अब उही जिस्त हुआ अब शादी कर ले लनसन दोनों शादी के बाद मिसेवा मदमुआ एगो लोन ले ले वनसन
1: हाँ मान लो एगो घर खरीद लनसन
0: हाँ एगो घर हुई एगो लोन लेके एगो घर खरीद लनसन तो दोनों ओकरे नाम मैट्रिमोनियल होम वो घर जहाँ रेजिडेंस जैसे हमने बच्चों कर हा घरवा जहाँ मजा खरीद ले बा अब जे शादी के बाद ले ले वनसन तो वो घरवा में दोनों काहे चाहे ला पेये करे के वो घरवा के जो मजे ले ले बा लोनवा हाँ। दोनों के कॉन्ट्रीब्यूट करके पे करके चाहे
1: पे खराब सा लेकिन अभी एक फोन कॉल बा ओके ले ले लाजा चलो दिखे लाजा के होन हमने के संगे हेलो नमस्ते
2: नमस्ते वकील को भी नमस्ते
0: नमस्ते भैया
2: सभी सुनने वालों को भी नमस्ते
1: नमस्ते भाई जी नाम बताइए
2: नमस्ते दुगो सवाल बा पूछे के एगो मान ले जाए पिताजी को जमीन छोड़ के गल अब जब बंटवारा होता एगो भाई फ्लोटिंग चौज ले लेबा सकी बकरा आसानी से हो कि परिकर्जा भर के तब बंटवारा हो
0: अरे पहला चीज फ्लोटिंग चार्ज हुआ भैया ले ले बा अपने नाम में है अरे पस हो तीन गो भैया जोन बा जैसे बतियाली सर तो उन लोग कुछ नहीं जाने ला तब लेख हो भैया जोन फ्लोटिंग चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज नहीं करी मजे हो फ्लोटिंग चार्ज हुआ तो कुमाजे है जहाँ से ले ले बा लाभांश से ले ले हो वो नॉर्मल है वो फ्लोटिंग चार्ज तब लेक नहीं पे करी वो मजे है वो डिविजन पोताज दजिया पोताज वा नहीं सकेला हुई
2: अब जे लाभ को मान ले लाभ को बंद हो गल कैसे सिल्वर बैक हबी
0: हां
2: तो कैसे हुई
0: हां तो सेफ है वो भी है जब लाभ को बंद हो जाला अभी हम हाँ। हमने के तो दुआ नहीं बा बोले के लाभ के बोले एग्जांपल अभी जो नबी जो एग्जैक्ट चला था तो वो लाभ को सब ओकर चीज जो बा जे के सब ओकर केस ओकर फाइल ओकर सब बा वो भेज देवेला एगो दूसर को मजे तक ओवे जो जो नहीं लेवेला सिबुजों काले गो एडमिनिस्ट्रेटिव बा एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हुआ था वो को मजे ओकर देखभाल करेला पहले नहीं बोला मेरे को लाभ तो बोलते तो गले एग्जाम तुझे समझ जी बबी का हो रहा तो वो देख अब ओकर यहाँ तक कैसे ट्रांसफर हो गल बाकर यहाँ तो बाकर ऐप तू दे जाना था अब कल ओके नहीं पे ये करी तो नहीं सकी करी को मजे हई पता
1: चाहे ला पे करी
0: चाहे ला पे ये करी के
2: तब जे गो
0: अब काले गो कंपनी हम रखल अब सब चीज हम कंपनी वहां तोर से दे दिली तो सब चीज अब तू ओके पे कर कंपनी तो तू रिस्पॉन्सिबल हुई सबके तो सब जे ले ले बा लोन वहां फ्लोटिंग चार्ज हुई या फिक्स चार्ज हुई ओके चाहे ला पे करे के हाउ नुवो का नुवो है कंपनी वहां के जो मजे ते कोवे कर लेबा ओके भैया
2: एक प्रश्न बा
0: हां बोल
2: कैसे मान ले जाए को एगो संगत के परिवार उगो मासो हो उ घर लेके बराबर कर लापे पे सिप नहीं है हाँ। काल उखता गो मुत स्कित किने के जाता काम करे खातिर बोले भैया चल तनिका की तनिका ऑची खड़ा हो जो
0: हाँ।
2: मान ल काम नहीं चला मुश्किल नहीं सकता पे करी तो मगाजा सीज करी कि गांवचुआ की चाहिए पे करी की
0: अली पहला चीज जैसे करा जे घम बोली ना जे गांवची खड़ा हुए ला एगो आदमी तो हाउ डिबिते वा मोटरसाइकिल स्वा जे मजे बिउ पोपीते वा बन ले बा ओ के पे करे के चाहा जोन गांवची वा खड़ा उल बा बस ही तो नहीं सकता पे करी तो इवे हई में फेम हो जहां जे बजे से भाई वा क्लासिकल एग्जाम्पल दिलक एगो मोटरसाइकिल्स के गले को मजे हई मगाजे में मगाजे में बोले हई दे तब वो तो बोले ना तो पे स्लिप उपता नहीं बा कौन गारंटी बा तू पे ये कर बे हई मोटरसाइकिल तो से बुझो 45 मिल रुपी के बा हर महीना में सकबे पे ये करे 5 मिल सिवा दे मिल
1: एक जना गारंटी खड़ा हुई
0: तो के बोली ने तो बोली मगाजे में बोली एगो गारंटी के बोली या के पपीवा से कर दे के यहां
1: इन्हें से के पे तो वो पे करी
0: हई का अब ओके अब ओके पे करे ओके क्लेम करे
1: एकर में एगो एगो एगो सांस बाकी कैसे हाउ जोन मगाजे हुआ बा जोन गांव छिवा बा ओके बोली पे करे की त या तो फिर ओ मोदे सिक्रेटवा के सीजी कर ले ई भी सके
0: ई भी सकेला होई ओके बुगवा के पे करे के और हो बुगवा के से बुझो एक जोन का गांव छिया खड़े बा ओकरो नहीं बा ओकरो काम कुछ है तो सैफ अब का करी मोदे सिक्रेटवा के सीजी कर ले
1: ये तो अच्छा बा कि मोदे सिक्रेटवा लेके चल जाए कि गांव छिवा के बड़ी पे करके ना
0: हाँ मिसेल
1: अब जब मालूनेत करी था तब तक नहीं बोली नहीं तो तू ही पे कर तब तब गड़बड़ होगा
0: है का तो उसकी सैंप सैंप भैया तो समझ जा वो मगजे हुआ सीजी करी मुझे तो सिकले तो आके या

0: गांची आके चाइना पे ये करे के उ जोन भइवा के से खड़ा रहल गांची में
1: ठीक बा भाई जी।
2: हाँ अरे बस बाबा अब जमान ला छुपा छुपी मुझे बेच दिलक पापियर ब्लॉक पर कैसे सेजी हुई
0: नहीं
1: तब तो जी गांव ची खड़ा बहुई पे करी ना
0: नहीं नहीं पापिये ब्लॉम में कभी को पापिये कर ला इते इलेगल है
1: हाँ
0: नहीं है दुआ
1: तब मन हो जाए
0: नहीं इनको कर दे ले बा और नई चीज कर ले बा मैं सिल्मा दापकी ओकर कुमा जे कुआ मागाज़े हो या कोई भी हो ओकर दिले रल अदर टाइम ओको कोंठावा सीने कर ले रल गारंटी के ते एगो लाड्रेस दिले रल अरे ओकरो आदमिया के लौटा नहीं बा तो जो आदमिया के किनले रखल बान ओकर लाड्रेस ओके तब ओकर से पाछे हर एगो मागाज़े के उ लोग के भी एगो आदमी रहेला कैसे एगो ला पुलिस नियर ओ जाके अपन छानबीन करेला कहाँ बा मुझे सिकले तो कैसे बा कौन बगल बा तो समझ ला ना ओके मिल जाए मोटरसाइकिल के मैं ऊ तो कर पैसा मिले के सैम खोजबे करी ना मोटरसाइकिल तो बा कहाँ कैसे जानी तो उससे जी करी वो केस करी है के ओकर अबुका के देख के एगो केस करके सीजी करी उससे जी कर दी मोटरसाइकिल तो आई ओकरे यहाँ ना
1: ठीक बा भाई जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: शुभ दिन नमस्ते एगो और कॉलर हुई तो बात करी ला जा दिखी ला जा हेलो
3: हेलो नमस्ते बहन जी
1: नमस्ते भाई साहब
0: नमस्ते
3: और वकील जी को भी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी
0: नहीं गुरु जी तो आप भी हो बस कि हम तो हर प्रोग्राम बहुत अप्रिशिएट करी ला आर तो और बोली जो या थी मैं रेडियो में बतिया ला तो कब फोन करते हम नहीं तो भी सुनी ला सा ना
1: हाँ।
0: मैं खूब ठीक
1: बोला भाई जी कौन सवाल
3: धन्यवाद तो वकील जी हम अपन लेस पे यौस बोले थे
0: हाँ जी
3: हम यो तो
1: लोन
3: हम बोले लोन कैसे मिलेगा जैसे हम जानी रहे जहाँ नहीं अच्छा रही तो वकील
0: हाँ
3: लोन कैसे मिलेगा तहला छ महीना तोहर लापे वैसे हुई
0: बोले
1: बात हो गल बा हमने के बतावा कैसे कि
3: बोला तोहर लापे तेरा वैसे हुई कि छ महीना तोहर बेटा जे कच्चो मिलवे ले बता तो तोहर माटी बाप माँ हो तोहर माटी गाँवी दलब लाबो बगल सी उ जब लोनवा दे तोहरा कच्चो मिल तो कर में गो लासियोंस रही वो जिस खाली छोकरवा पर पस की तो हर से सोता होगा बट तू नहीं वो रही ओकर में लेटे है रही लाबों के तो हर घर माटी जो गारंटीवा रख बो चाहे ला ओकर में भी लासियोंस एगो सेट मिल रूपी हर बड़ी पे ये करेगी
0: ठीक ठीक है बोला
3: बेटा नहीं पे ये करी ओकर नहीं पे ये करी तब बाप माँ गारंटी बा ओकर में अब चाहेला बेटा के कोट छेके करेगे उकर जूस में ए हर महीना तू पे करे तो कि नहीं देखी तो तोर मोबाइल कितना रह गलबा कितना पे होलबा
0: उकर बैलेंस
3: और लोन लेबा तो चाहेला बहुत से ये रहे के अब तू लोन ले ले हो अब पागल जो आदमी के लोन नहीं बा उकर निकन करे खोजबा तो टासे हो जाइबा तो आ नहीं तो देखबा तब सोचब कि दुनिया में सबके गारंटी खड़ा हो जब तुहर देखब जेजी के दिन लाकू सिप्रेम जैब हम तो गल नहीं कितना माटी के जाफे हमें हम देखब वही कुचेवा तीन चार गो वही अदमिया बा आदमी आ तू तो जाने रह आदमी के माटी देखब तो कितना जीपे जीबे हमें बेचा जाता तब तू सोचब जब तुहर बिरागल तो ये तो खाली सोचब हम इतना ले भोंट रही
1: हाँ इता इता इता इता इता इता इता सही बोलन कि जब एगो गाँवची खड़ा हुई बा तोहरा चाहेला तोहर लापे ही देगी तो हम एक बारे में हमने ढेर कुछ बतिया ले जा हमने के समय भी अभी समाप्त हुआ था कहे कि हमने प्रोग्राम समाप्त हो जाता जैसे आगे हमने तोहर से यही पूछा थे जा कि अभी जब या अभी जहाँ पे हमने चला रहे जा अभी के ज़माने में जब एगो एगो इंसान लोन लेवता तो पीछे कितना कितना रिस्क बा कौन चीज अकेला हुई हमने एक बारे में बताया थे। जा भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आप फोन कर ला हमने की बतैला ये सब, लेकिन ये सब बारे में तो हमने पहले भी बतिया लेने हैं जब हमने के वक्त भी खत्म हो गल बा हमने के भी सिर्फ 5 मिनट रह गल बा जाए के।

0: पांच मिनट में हमने जो हमनी लोन के बारे में जो देताई हमनी के वकील जी अन्य हुआ उकर बारे में हमने तनी बतिया ले ला जा तब वकील जी हमने के बताओ अभी बतिया तरी जा जो रिस्क बा अभी मोटरसिकलेट के बारे में भाई जी बतैलन की जो अदमिया मोटरसिकलेट वा किनले भाभी पापी ब्लॉक में बोले रहा बेचे के मुश्किल बा काहे कि एगो ला पुलिस हा जेकर काम है जाके चेके करे के कि मोटरसिकलेट वा कहाँ बा
1: Parce que ou logo bi hay magasin log employé kare la ego admi ke ki jun jun cheez ko maj badka company bolat hai jaake ek maj dekhe okar ladres kahan ba motorcycle towa kahan ba ya kuch hoy jaake dekhe ke misilma hi ya ka bolat ko papier blanc me hay bech de leba me ho admi ke ba okar ladres ke jan ab okay puch pach kare ke chahla ke kar se bech le kon chi kar le kabhi kahan ba motorcycle towa ko dekhe ke na kaise dekhi to okar admi hay ke leke maj ego seziya ke देखी का करल जाए मैं एगो चीज भाई भाई बोला ना बड़ी आपस हो ली हमने तो आज के जो प्रोग्राम बोल आ करे शुरू कर सर हमने बात करती सर हई बोरोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट
0: हाँ
1: जी तू जू नहीं कर ली सर बस नहीं वक्त नहीं मिला
0: ना अभी तक अब जा करे कहे कि हमने के पास अभी
1: नहीं नहीं वही तक मतलब एगो एगो एक घंटा लगी एगो नया चीज है बस कमीशन है और प्रोटेक्शन बोरोवर्स भी बा यहाँ कब तो एगो प्रॉब्लम अनमन सब जो हमने बतिया ली सर ओकर दरवाजा चाके ठोके के चाहेला कब नहीं सकल पिए करे ऊ तोरा बोली कैसे करे कौन सी करी तोहर में एगो एग आपसे एक भाई हुसैन फुआ के बात करब सर तो ये एक घंटा लगी इही में बतियाई
0: एगो फुगवा में हमने बोले हैं जान के चार गो विषय मिल गल बा जेकर पर हमने के बात करे के भी समय लगी तो अभी हमने जब बतिया थे जा गांवची के एगो गांवची खड़ा हुई बा जब कोई लोन लेवा था तो तोरा चाहना बहुत सोच समझ के अपन कदम उठाए के काहे कि से बोल जा रहा कि लोन तो भैया ले लियन मजा करियन पैसा मिलन उड़ा दियन खैलन पीलन घूमलन फिरलन लेकिन जब नहीं सकता पे करे तो एकर पीछे तो हर जो मेहनत की कमाई बा तोहर अपन लड़का के पढ़ाई लिखाई के बा तोहर अपन बेटी के शादी करे के बा तोहर अपन घर बनाए के बा तो तोहर जो कैसे बोल जाए तोहर जो सपना बा है एगो गाँवची खड़ा हुई बा तो सकेला तोहर सपना टूट जाए
1: चकना चूर हो जाला खूब बोला तू सब हम बड़ भी खुश
0: लाखों में ऐसा ढेर केस आवेला
1: जैसे भैया बोला ना कितना गिलबा हम लोग भगवान में कर ली सा ना कि कब हेली सिकाशियों जहाँ सेजी में बेचल जाला इमोबल प्रॉपर्टी एक्ट के विषय में तो देख बहु वहाँ कितना घर आदमी जान कब नहीं सकेला पे करे बोले जीपे जीपे नियर में चला है एगो सैंक मिलियों के चीज सकेला एन मिलियों ही जाए एगो पूछे करे लन सन एगो प्रिया मीज जैसे हमने बोले सर शुरू करी से बोझो सौ एगो बोली है मिल रूपी से अबू में मोटे हुई एगो बोली मिल हम बोले वो दे मिल हमने आपसे बोली तरी लोआ एगो प्रोग्राम से लिसिटाशों में कैसे जेजी आज लाखों भरल होला भाई खूब बलन को भी नहीं बोल रही हम कब पहले रह लो कासे कब देवे वही पैसा फूटे करे आदमिया के कब नहीं सकल आए एगो केस दलक लाखों में अपने चाहे वो जमीन वहाँ करीजे पसी काहे वो पूछे करी वो जाने लो कर जमीन वा के कितना वालेरल कितना वो बा
0: वो आज मान लो 5 मिलियन के घर बा और ई 5 लाख पैसा ले लेबा तो वो तो पूछे करी तो दे मिलियो में मिल जाको तब खुफी होगल
1: ऐसने जाला तदमी नहीं बोले ला हो कि जाक तोरा मन हुई कि ने के वो जमीन दे तोरा उतना पैसा नहीं बा जा जे जी के हुआ बैठा देख पूछे करिए गो घर देख ले ले हो अगर पसी एगो सेक्युलर हो एगो सेक्युलर मिल जाला एक दो समय एक समय अगड़िए कौन कौन दिन है जे जी के कौन कौन जमीन कहाँ कहाँ बेचाए ओकर मिजा फुई डाल दे कितना से शुरू हुई पूछे करे के वो बोली 1 रुपया 2 1 रुपया 3 ऐसे मजे मोते हुई ला देले कब देखो तो कोई नहीं मांगता वो नहीं पूछे होता वो जब
0: तब तो
1: लॉस भी दे जो दे आदमिया बोले हुई 8 रुपया के मजे आल पूछे कर लक वो तो उतने में जाके बेचा दे
0: हाँ।
1: बोली अब तक बोलियो के एगो देले हुए देवेला के चैनल आपके सब पैसा
0: पैसा चल रहा है चल हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था हमने के जो वकील हवन हमने के मेहमान कपिल देव रघुनंदन जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बस एगो चीज समझ ला है चाहे गाँवची नहीं चहला खड़ा हुई के खड़ा हुई बता सोच समझ के तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में इतना सब कुछ देता है दिला प्रिय श्रोताओं हमारा कार्यक्रम जो है आज की चर्चा यहाँ समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर और फेसबुक लाइव पे तो हमारा प्रोग्राम है ही चलिए एक और कार्यक्रम के साथ अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे आज्ञा दीजिए नमस्ते।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all night, right here.
3: संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। वैध आत्मरक्षा और हत्या के आरोप के बीच 20 वर्षीय विलियम विलॉज की मौत कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्य संदिग्ध 18 वर्षीय एक कॉलेज छात्र का दावा है कि उसका सामना एक संदिग्ध चोट से हुआ था। घटना की वास्तविकता परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जांच जारी है और आज मामले का घटनाक्रम यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन भी किया गया। पुलिस अब ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि ये घटना आत्मरक्षा थी या आपराधिक हत्या। पिछले दो हफ्तों में दो विदेशी विशेषज्ञ मॉरिशस में थे जिन्होंने स्थानीय चिकित्सा टीमों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के प्रोफेसर मोहम्मद एल ग्राउर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के डॉक्टर एंड्रू लॉसन ने सार्वजनिक अस्पतालों में नई चिकित्सा प्रक्रियाओं को संभव बनाया। ये कदम मॉरिशस के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है जिससे आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। न्यायाधीश कैरोल ग्रीन जोकू ने पीटर वेन रॉबर्ट से जुड़े मामले से खुद को अलग कर दिया है। उन्होंने ये निर्णय आज सुबह असाइज़ अदालत में घोषित किया जो दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी के वकीलों द्वारा दायर एक अनुरोध के बाद लिया गया। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने मांग की थी कि न्यायाधीश इस मुकदमे से हट जाए तो जो पीटर वेन रॉबर्ट्स और अनाहिता रेजिडेंस एंड विलास लिमिटेड के बीच चल रहा है। इसका कारण ये बताया गया है कि न्यायाधीश पहले 2015 में ली आन पाल्मरोजा की मृत्यु से जुड़े एक मामले में शामिल रही थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले सरकार पुलिस आयुक्त और MCIT के एक अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया था जो इस मामले से जुड़े आपराधिक पहलुओं में शामिल थे। किसी भी पक्षपात या पक्षधरता की धारणा से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया है। अब ये मामला 26 और 27 मई को नए बेंच के सामने सुना जाएगा। गौरतलब है कि नागरिक मुकदमे में पीटर वेन रॉबर्ट्स ने अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड से $3 million का मुआवजा मांगा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप के केंद्र में स्थित एक अस्पताल के एक हिस्से को घुसाई भीड़ ने आग के हवाले कर लिया। ये घटना उस समय हुई जब एक युवक जिसकी इबोला से मौत होने का संदेह था के परिवार और मित्रों को उसका शव दफनाने के लिए ले जाने से रोक दिया गया। स्थानीय राजनेता ल्यूक

0: मालिम्बी मालिम्बी के अनुसार भीड़ ने अस्पताल पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी और यहां तक कि आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग हो रहे टेंटों को भी आग लगा दी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पेचित काबान रोड कौंड मास्क पावे में पेचित काबान रोड कौंड मास्क पावे में 63 साल के 63 years old के श्री केवल भट्टू जिन्हें अनिल सुफिया बिस के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर पेचित काबान रोड कौंडमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजर कौंडमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। टेम्पल रोड बोबुआ मोका में 58 साल के 58 years old के श्री देवानंद भट्टू जिन्हें पोगरिये के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई श्री प्रीतम भट्टू के घर बोबुआ मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to your RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। रेडियो मनोरंजन पर मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 4:12 हुए हैं। जी हाँ, 4:12 और इसी के साथ हमारा और आपका साथ बिल्कुल 5 बजे तक जारी है। तो जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं, बस आप प्यार से हमारा साथ दीजिएगा और इत्मीनान होकर आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ दीजिए। डेफिनेटली अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 4028070 नंबर है, 4028070, और रेडियो मनोरंजन के व्हाट्सएप का नंबर या आम मैसेज का नंबर है 5250620 5250620। और चलिए आज की ये चिट्ठियों का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। और कुछ बहुत ही टची, बहुत ही कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी संवेदनशील चिट्ठियां हम तक आती हैं, कुछ ऐसी भावनात्मक चिट्ठियां हम तक आती हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो सच में हमारे दिल को हिला के रख देती हैं। और कुछ कहानियां सच में किसी को कहना, किसी से शेयर करना आसान नहीं होता, पर ये जो चिट्ठियां आती हैं बेशक ये आप बहुत ही हिम्मत करके हम तक बिल्कुल आप पहुँचाते हैं। और आज की ये चिट्ठी आई है एक बिल्कुल एक लड़की ने लिखी है, वैसे नाम नहीं है, पर आप की इस चिट्ठी के द्वारा हमें पता चलता है।

लगता है कि आपने बहुत ही हिम्मत करके इस चिट्ठी को हम तक पहुंचाया है। आप लिखती हैं कि इस कार्यक्रम को सुनकर आपको भी बहुत जी चाहा कि आप अपने अल्फाजों को हम तक पहुंचाएं। वैसे आज इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, पर एक समय था जब आपने इस दौर को भी पार किया। थैंक यू सो मच, आपकी चिट्ठी को हम ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप लिखती हैं कि मैं जब कॉलेज में थी, मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती थी और ये लड़का बिल्कुल मेरे पड़ोस में रहता था। मैं उसे इतना प्यार करती थी कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे जो परिवार थे वो बहुत ही, उनके बीच गहरी अनबन बनी रही और इसी कारण हम दोनों चाहकर भी एक बंधन में नहीं जुड़ पाए। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा कि हम छुप छुप कर मिलते, बातें करते। हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, पर ये दुनिया, ये समाज कहते हैं ना कि उनकी आंखों से कौन बच पाता है। किसी ना किसी तरह से हमारे परिवार वालों को ये बात पता चल ही जाती कि हम बाहर मिले थे और हमारे साथ, खासकर मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा बदसुलूकी होती। फिर कुछ दिनों बाद लड़के के परिवार के दबाव के कारण उस लड़के ने मुझसे दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया। ये रवैया मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगा और इसी गुस्से में मैंने विदेश जाने का निर्णय ले लिया, अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने का फैसला ले लिया। हालांकि मैं चाहती तो यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी, पर इस बात को मैं बहुत ज़्यादा नहीं झेल पा रही थी क्योंकि वो लड़का बिल्कुल मेरे पास में रहता था, मेरे पड़ोस में रहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का सामना हमेशा आए दिन करते रहते थे। मैं विदेश चली गई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और सच मानिए तो अकेले अनजान देश में रहना आसान नहीं होता। आए दिन मुझे उसका ख्याल आता रहता, बहुत मुश्किल था अकेले रहना, अकेले मुश्किलियों को झेलना। पर वहाँ जैसे जैसे दिन बढ़े, जैसे जैसे मैं पढ़ाई में अपना मन लगाने लगी, तो मेरा टाइम आगे गुजरता गया और देखते ही देखते मैंने अपने नए दोस्त बना लिए। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, मेरी ज़िंदगी सेट होने लगी थी और मुझसे प्यार करने वाला लड़का, पता नहीं वो मेरे बारे में सोचता भी था या नहीं, क्योंकि ना उसके कभी कोई मैसेज आए, ना कभी उसने सोशल मीडिया द्वारा मुझसे कोई संपर्क रखने की कोशिश की। 5 सालों के बाद जब मैं वापस लौटी तो उस लड़के से मेरा सामना फिर हुआ और मुझसे नज़रें भी वह मिला नहीं पा रहा था। किसी ने मुझसे ये कहा तो था कि उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा गया है। इस बात पर मैं इतना विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि आज भी मेरे मन में उस लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लोग कितनी आसानी से प्यार को भुला देते हैं, ये मैंने आज उसके चेहरे के हाव भाव से देखा। पर फिर मुझे उन लोगों की बातों पर पूरा विश्वास होने लगा कि अब ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ था जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं फिर विदेश लौट गई, अपने आप को काम में ढाल दिया। आए दिन बहुत सारे लड़कों से मेरी मुलाकात होती रहती,

पर उनमें से मुझे एक ऐसा मिला जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगी। उससे मेरा तालमेल बढ़ा, दोस्ती बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और आज मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। मेरी उससे शादी हो चुकी है और मैं दो बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। आपकी इस कहानी, आपके इस प्रोग्राम के द्वारा मैं अपनी कहानी आपके इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करना चाहती थी। विदेश में रहकर भी मैं आपके कार्यक्रमों को सुनती हूँ, अपने देश के साथ कनेक्टेड फील रहती हूँ। अगर आप मेरी इस चिट्ठी को, इस कहानी को अपने कार्यक्रम में शामिल करती हैं तो मैं अपने दिल से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इस विश्वास के साथ इस कहानी को हम तक पहुँचाया। एंड डेफिनेटली अगर आप में से भी कोई हम तक अपनी कहानियों को पहुँचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिए 4028070 या 5250-6200 हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, या फिर आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपकी इस प्यारी सी कहानी पर हम एक प्यारा सा गाना ज़रूर जोड़ना चाहेंगे।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जी हाँ, इस वक्त 4:27 और रेडियो मनोरंजन पर हमें आपके साथ आपकी चिट्ठी मिली। यहाँ पर लंदन से हमारा साथ दे रहे हैं राजन रघुपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। सुदेवी जी भी इस वक्त रसोई घर में बिरयानी बनाते बनाते हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहती हैं, आ जाइए आपको हम बिरयानी परोसेंगे। थैंक यू सो मच सुदेवी जी, आपने कह दिया, बस यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर सच में कुछ, जैसे कहते हैं ना, एक जज्बात, एक कनेक्टिविटी, दिल से दिल जुड़ा हुआ, यही तो रिश्तों की खूबसूरती को और बढ़ावा देता है।

पर है यहाँ पर एक और बहुत ही भाव से लिखी हुई चिट्ठी। चिट्ठी से लगता है कि आपने बहुत हिम्मत करके ये चिट्ठी लिखी है, क्योंकि आसान नहीं है। मैं समझती हूँ कि अपने जख्मों को दूसरों के सामने यूं ही खोल देना, यूं ही रखना, मैं कोशिश करूंगी आपके इस भाव को इस कार्यक्रम में पूरी तरह से मैं रख पाऊं। आप लिखती हैं कि पेट काट काट कर पाल पोस कर बच्चों को संभाला, आसान नहीं था। कम उम्र में पति की मृत्यु हो गई और छोटी ही उम्र में मेरे हाथ मेरे गोद में दो बच्चों को लिए मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। मुश्किलों का सामना कुछ इस प्रकार से मैंने किया कि ना परिवार का सहयोग रहा ना किसी का साथ। कपड़े सिलकर घर का काम करते हुए मैंने बच्चों को बड़ा किया और बहुत मुश्किल का दौर मैंने काटा। धीरे धीरे करते हुए मैंने घर को पक्का बनाया। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि दुनियादारी समझ सके और दुनियादारी को समझते हुए जिंदगी में अपना नाम कमाए। आपने कहा कि मेरे बच्चे इस कदर बड़े हुए कि सच में दुनियादारी निभाने लगे। दुनियादारी में कुछ ऐसे ही खो गए कि उन्होंने वो सारी तकलीफें भुला दी। मेरे बच्चे इतने ज्यादा आगे निकल गए कि मैं पीछे रह गई। और आज के इस कार्यक्रम में मैंने अपने इस दिल के दर्द को खोल कर रखना चाहा। मैं रेडियो के माध्यम से एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, पर उन्हें हर बार ये याद दिलाना कि किस मुश्किल को आपने सहा है, क्योंकि आज मेरे बच्चे इतने आगे निकल चुके हैं कि बस मैं अकेली रह गई। आज मैं एक वृद्धाश्रम में रहती हूं और बस हर पल इंतजार रहता है कि कब मेरे बच्चे मुझसे मिलने आएंगे। इस खत को आज के इस कार्यक्रम में शामिल करना हमारे लिए बहुत

बहुत ज़्यादा भारी लगा। हम आपके दिल के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी का हर एक कतरा, हर एक पल आपने उन बच्चों के नाम कर दिया। और आज वे दुनियादारी में कुछ इस तरह फंस गए, इस कदर आगे बढ़ चले कि अपनी माँ तक को भूल गए। आप ये भी लिखती हैं कि आप जहाँ पर रहती हैं वहाँ आप जैसे कई सारे हैं जिनको किसी ना किसी कारणवश अपने परिवार से दूर होना पड़ा है। अकेली नहीं हूं पर कहीं ना कहीं अपनों का साथ छूट गया है।

RM3 रेडियो मनोरंजन पर हम हैं आपका साथ देने के लिए शाम के 5 बजे तक, और इस समय बिल्कुल 4:52, और अगर आप घर की ओर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पूरी सलामती के साथ धैर्य रखते हुए आगे बढ़ें। घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, और इस समय सुदेवी जी हमारे साथ हैं, संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं लालमाटी से, वाकवा से शोभा जी भी साथ दे रही हैं, और माया जी आपका भी प्यार भरा मैसेज हम तक आ पहुंचा है, थैंक यू सो मच। बस यूं ही जुड़े रहें, बस आपका साथ आपका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे, और ये ज़िंदगी का हसीन सफ़र है जहाँ पर अनगिनत कहानियाँ हैं हमारे समाज में, और ये कहानी नहीं ये ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जब दिल का हाल भारी हो तो बस इस भारी मन को हल्का करने के लिए एक ही सलूशन है, वो है अपने सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी रिश्तेदार से तालमेल बनाए रखना, हाय हेलो हाल चाल पूछते रहना, खैरियत पूछते रहना।

क्योंकि आज की जिंदगी के इस सफर में कई बार ऐसा भी होता है कि खैरियत पूछने तक को हमें समय नहीं मिलता और रिश्ते कब टूट जाते हैं पता भी नहीं चलता। पर सच कहें तो खैरियत पूछ लेने से भी कई बार जरूरी नहीं कि रिश्ते बने रहें। बस मन साफ होना चाहिए और दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। कोई खैर खबर पूछ ले तो उन्हें दो जली कटी बातें ना सुनाएं, बस प्यार से उनका साथ दें, उनकी बातें सुनें।

और बिल्कुल आज की कहानियां सुनकर बहुतों के दिल भर आए हैं पर ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे हमारे माता पिता हैं बहुत सारे ऐसे वृद्ध जन हैं जो ऐसी समस्याओं को आए दिन झेलते हैं कुछ खामोश हो जाते हैं तो कुछ बस यूं ही किसी ना किसी से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं जितनों ने अपनी कहानियां हम तक पहुंचाई हैं थैंक यू कहेंगे दिल से और बिल्कुल बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को अपने दिल का हाल सुनाना किसी को अपने दिल की बात बताना और इसीलिए तो ये मंच है आपकी चिट्ठी मिली जो हर शुक्रवार को चलता है रेडियो मनोरंजन पर शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच और बिल्कुल आप टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं मैसेज द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं चाहे तो चिट्ठियां भी लिख सकते हैं आज के इस दौर में क्योंकि सच कहें तो हाथों से लिखी हुई चिट्ठियों की बात ही कुछ अद्भुत होती है खास होती है जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों इसीलिए अपनों से तालमेल बना के रखें एक दूसरे का खबर एक दूसरे की खबर लेते रहें खैरियत पूछते रहें और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को इसी गीत के साथ हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे ज़रूर आपका साथ देंगे रेडियो मनोरंजन पर ठीक 4 बजे से 5 बजे के बीच हर शुक्रवार को और फिलहाल हमारे बाद आ रहे हैं रोशन हरनाम जी एक स्थानीय कलाकार को लेकर तो ज़रूर आप उनका साथ दीजिएगा हमें दीजिए अनुमति फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा और रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ संध्या आप सभी को

0: RM3 Radio.
1: अभी अभी आप लोग सुन रहे जहाँ प्रोग्राम आपकी चिट्ठी मिली पाँच बज गल बा पाँच बज के एक मिनट हो गल बा और तो हर खतीर ई कार्यक्रम
2: कलाकार की बात
1: नमस्कार हमर भाई बहिन लोगन संगतिया लोग हमनी के श्रोतागन के हम शीश झुका के और हाथ जोड़ के स्वागत करत हैं जा इहा प्रोग्राम कलाकार के बात जहां पर निकलेला एगो चमकते सितारे के बारात जहां पर होला उनकर बढ़िया बढ़िया गीतवन के बरसात त दिहा तोहर अनमोल साथ तोहर खतीन तोहर सेवक है जा उपस्थित हो गल बाते रोशन आज के हमनी के कलाकार के परिचय करे के बखत त हो गल बा एक बार आरलन और बहुत कोई उनकर अंदाज बेहद पसंद करलन जा आज हम पॉटू और जोरदार ताली से स्वागत करत हैं जा आज हमनी श्रीमती ललिता पुनीत जी के श्रीमती ललिता जी बहुत बहुत स्वागत है तो हर नमस्ते
3: नमस्ते तोहरा बहुत स्वागत
1: और कैसे हुआ जा ललिता जी
3: अच्छा है ठीक है
1: ठीक हुआ जा होतो पर ता मुस्कान बा और बहुत बहुत धन्यवाद है जा आल के तुहरा तू कष्ट उठाईला और दूसरी बार है जा आल हुआ परंतु इस बार अपन पोता के साथ भी आल हुआ
3: साथ हाँ साथ के लिए
1: प्रणव जी वो भी बढ़िया भोजपुरी में बात करेलन
3: हाँ हाँ
1: तब पहल का जब बार आ रहा तो बहुत कोई तो हर प्रोग्राम से प्रभावित हो रहन जा बहुत खुशी अपन जाहिर कर लन जा और लोग के मांग रहल लोग के फरमाइश रहल कि एक बार फिर ललिता जी यहाँ पर पधारी
3: बहुत धन्यवाद
1: तो आप चले ल है जा और एकर खातिर दिल से हम धन्यवाद करत हैं तोहरा
3: हम तोहरा दिल से धन्यवाद करत है हमरा फिर से यहाँ बुलाइल
1: बहुत
3: मौका दिला फिर से
1: तो चलो तोहरे

0: को गाना पहले हमने सुन अब जा तैकर बाद में हमने फिर से बात के जारी रख अब जा का बोले ला
1: हाँ हाँ ठीक बा
0: आज्ञा बा तुहर
1: आज्ञा बा हाँ हाँ
0: अच्छा बहुत बढ़िया था चला तुहर बढ़िया गाना सुन अब जा जो न बहुत ही नया एल्बम से निकलने हुआ खा गोरी कोची खाई के तब बाद में कर मैं बात कर अब से कर बारे में चला पहले गाना सुन अब जा सुंदर रानी यही कहते सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के चला लो रानी की तरह चला
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: प्यारे साथीगण, कलाकार के बात ललिता पुनीत जी के साथ। ललिता जी, कैसे हुआ?
3: अच्छा है।
2: अच्छा हुआ ही तो बुझा था। और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुआ ललिता जी, भोजपुरी के जो गर्दिश होकर में खूबे चमकेलन।
3: धन्यवाद।
2: और इस

तब तक का बोली तो हरा जैकपॉट लग गल इतना पॉपुलैरिटी बर्गर बातो हर हाई कौन जो भोजपुरी जगत में हा, हर कोई के होंठ पर तो हर नाम बा अब श्रोता लोग गन के बोला था काहे काहे कि आई सप्ताह में टेलीविजन पर है प्रोग्राम वहाँ चलल पकवान के प्रोग्राम उमे बहुत ही बढ़िया तरीके से तू नजर आईला और यही सप्ताह

0: और ये जो प्रोग्राम चलेला साथ साथ रेडियो पर और टीवी के चैनल पर भी चलेला भोजपुरी चैनल में
1: हाँ
0: तो बहुत कोई तोहर प्रोग्राम देख के तोहरा कुछ बोलन जा
2: हाँ बहुत बहुत जहाँ जात है तोहर प्रोग्राम देखनी जहाँ जात है बहुत खुशी बहुत धन्यवाद सब बहुत जोली अब कब जाइबा अभी कोई से बोलने आज भेट लंग सब आज ही जात है देखिए जा सांझ के लंग से हाँ बहुत खुशी बहुत धन्यवाद
0: बहुत बढ़िया ऐसे ही तू चमकते रहिया और तुहरा तो सरस्वती माता के आशीर्वाद बा
2: आशीर्वाद मिलल बा सरस्वती माता के वरदान भी मिलल बा
0: बिल्कुल और संगीत के क्षेत्र में तू आगे बढ़ गल होवा
2: हाँ
0: परंतु हम तो नहीं जानत रही कि तू आप भी पकवान करेला इतना
2: हाँ,
0: ज्यादा
2: हाँ
0: तो कलाकार के जब हमने बात करेला जा तो खाली वो संगीत के बारे में नहीं हाँ, बल्कि तू तो सर्वे गुणागर हुआ
2: हाँ, धन्यवाद
0: हर गुण में तो हर जो निपुणता है बहुत ही सराहनीय है और तनी अपनी अपन जो अनुभव है पकवान के बारे में
2: हाँ,
0: तनी हमने के सुनाव जा
2: हाँ, पकवान के बारे में कई जला आइलन एमबीसी बगल से पूजा आइलन ओकर से आगे निर्मा रलन ओकरो संगे करने पुरानिया पकवान अभी है बड़े जौवी के संक्रांति के खिचड़ी करनी मुरुम के भाजी चटनी बहुत खुशी होइलन जा अभी चलक ले जहाँ जाइला सब कोई बला खिचड़िया तो खूब अच्छा रहल भजिया तो खूब अच्छा रहल खूब जोली से भुंजत रहल
0: बहुत अच्छा तो खाली संक्रांति के अवसर पर ही तू खिचड़ी बनावेला या
2: नहीं नहीं हम लगे पकते रहेला
0: पकते रहेला
2: पकते रहेला अभी तो पति बोला थोड़ा भी काल पकाई के
0: बहुत बढ़िया
2: हाँ आज ही बोल देना काल खिचड़ी पकाई के
0: तो हर जोन गांव है बहुत ही सुंदर गांव है ना चुहरगर गांव जैसे
2: हाँ,
0: लाल माटी बोली
2: हाँ, ना लाल माटी हाँ
0: तो जा खाली तू ही खिचड़ी पकावे ना कि सभी लोग
2: आर कोई कहता नहीं जानी ला
0: परंतु ही भर मॉरिशस में बहुत ही प्रचलित पकवान है खिचड़ी
2: खिचड़ी
0: और बहुत ही स्वादिष्ट है
2: स्वादिष्ट हाँ।
0: अगर खिचड़ी के साथ एक चटनी ले ले बता
2: चटनी एक भाजी रही
0: इता तो हर उंगली कटे कटे बची
2: हाँ।
0: और जब पुराना पकवान के बारे में बात करी ला सर तो और कौन कौन पुराना पकवान जाने ला जा जो अभी आजकल के जो नई पीढ़ी के लोग है नहीं पकावे रंजा
2: हाँ।
0: बोला तो हमने के
2: कैसे आगे तो दाल पिठा रहल
0: दाल पिठा
2: हाँ। दाल पिठा
0: अभी दाल पिठा बा खाल परंतु जैसे तैयार कर गल
2: तो बनावल भगवान के आगे तो आटा सनब ये उजर आटा सान के एगो लोहिया करब ढेर चीज ओकर में नहीं लगी खाली पानी लगी आटा सान के लोहिया बना के बेल के अब ओके कारे कारे काट दो और उन्हें डाल पक गल बा उन्हें बुई हो गल बा सीज गल बा छोका गल बा उडपकता अब तो काट काट को में डल ले जा चल ले जा जब पलोते नहीं हुई में भरके परके रही अब
0: हाँ,
2: वो पारे हो जाए तब पारे तो हर चटनी बना दो पलडामुन भूंज के पहले के खाना तो ये रहल और भाजी भून दो
0: हाँ।
2: तब बहुत बढ़िया से सब कोई खाए हमने के तो हमार माँ लगे सब उतना लड़का रही सब दस गो भाई बहिन माँ बाप है सब पकी एगो देखसी में एक बड़का देखसी वो में बन जाए तो बासी बहुत स्वाद बासी बहुत स्वाद अब इतना के सब पकी
0: हाँ।
2: सबके परोस हाँ। अब कैसे पुरनिया पकवान मुरुंग के बुयो रहल कैसे आलू के चटनी रही कैसे मारछौका रहल मारछौका पका दिल मुरुंग के भाजी भून दिल है तो बहुत बढ़िया हयो ये सब पहले के खाना है
0: हाँ
2: पहले के अभी तक के पकावत है अभी के लड़के लोग नहीं जाने मरछौका कौन सी है
0: हाँ, नहीं जाने लग जाता
2: नहीं जाने लग जाता अभी तक नहीं पकेला वो सब नहीं पकेला पहले के खाना है कभी कैसे जीवे भैये है सब कहाँ रहल आगे
0: आगे तो नहीं रहल
2: नहीं रहल नहीं रहल अबे पकाता पकाव तो ग्रुपवा के तकारी पका द तो हमने लगे हमार माँ लगे या ग्रुपवा के तकारी पकी तो पकाता चलना ढेर पकाई के
0: इतना
2: हाँ तो उसे बड़ी चले
0: हाँ बहुत अच्छा
2: और में तो दूसर तकारी नहीं चाहिए
0: नहीं चाहिए
2: हाँ वे से खाली अभी तो देखे दू गो तीन गो
0: हाँ बहुत अच्छा और पकवान से निकल के हमने संगीत के ओर बरहब सर कहे कि जब कला के बात करी रह जा तो पकवान आवेला नृत्य आवेला और बेशक संगीत जहाँ पर वोकल जैसे बोलेगा गायकी और जब संगीत के बात करी रह जा मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में जब हमने के मॉरिशस के जो कॉन्टेक्स्ट बा तो ओकर में गीत

0: गवाई के बहुत ही महत्व देवल जाला गीत गवाई तो गीत गवाई के बारे में तनिम ने के बात कर उ हला इतना ज्यादा गीत गवाई पर नहीं बतियली रहला तो ई पार्ट 2 है दूसरा भाग तो चला गीत गवाई के बारे में तनी हमने के श्रोतागण के तनी समझा दे
1: तो गीत गवाई जन बोली ला सा तो खाली गीत गवाई नहीं है कि खाली लेके जात हो डांसेस के लेके तो गीत गवाई होगल
0: नहीं ओकर में विधि ढेर है
1: जैसे जाप सा तो पहला देवता देवी के गीत गवाई पांच गो देवता देवी तब महादेव के तब शादी के छोकरा रही चाहे छोकरी रही शादी के पंद्रह गो गवाई सब विधि के
0: अच्छा
1: अब जब भाई गवा गल तब ढोलक पूजा हुई
0: ते गो गाना भी चले रही सा तोहर सुंदर रानी उमे हाई शब्द आवेला ढोलक
1: हाँ
0: एक बारे में फिर से बात कर एक
1: तब धवे ढोलक पूजा हुई अब दुल्हा के मा रही कि दुल्हन के मा रही तो हमने ढोलक लेके बैसब एक जना कैसे हम ही है एगो अपन ढोलक लेके बैसब तो दुल्हा के मारे इस पर दुल्हन के मारे ही तो अपन थाली में लेके आई पान फूल कर कपूर सिंदूर लाली में तो कर पानी सब छिड़े के ढोलक में तब पान की पत्ता डाली चावल डाली कपूर डाली सिंदूर टिके वो सब हो तब धरती माँ से मान लो वो पेमिशो मांगता कि घरे बेटा बेटी के शादी बा
0: सब कुछ अच्छा से
1: बीतती है धरती माँ में अब धूम मचाई के बा तो चला धरती माँ से परमिशन मांगे के हाँ जब सब निमन से हो सब निमन से शादी बीती
0: बहुत अच्छा बात कर लो धरती माँ से हमेशा चाहना धरती माँ से आशीर्वाद
1: आशीर्वाद लेके
0: जब उठ सूर्योदय से पहले हमने कितना चला उठा
1: है
0: हाँ तो धरती माता की प्रणाम कर लो
1: हाँ तो हम नियो जब उठी ला जा अपन नियत करे के रीतिय तो अपन धरती माँ के आशीर्वाद ले लेला सा आज जन बड़ा आदमी लोग बैठल वन सा कैसे मौसी चाची लोग ढेर कोई तो उस सब के गोर लग लेला सा उस सब से आशीर्वाद लेला सा बस काहे है सब एगो छोटा बात नहीं है अब कैसे अब है हो गल तब अपन अब नाच गाना चले लगी अब कालो के हरदी बा अब हरदी बा कैसे पुरानी शादी बा तो माटी कोड़ाई होई कैसे तिलक आई छोकरा के शादी रही तिलक आई पुरानी में अब तिलक के गीत गई तिलक हो जाए तो माटी कोड़ाई होई पाँच बज के आधाई से माटी कोड़ाई हो जाए तब सांझ के हरदी बा अब तो कालो के अब शादी बा अब शादी के गाव इमली घोटाई के गाव परछावन के गाव सब विधि के
0: ललिता जी एगो आग्रह करत हैं तो से गीत गवाई के बारे में तनी चर्चा कर लीजा बहुत संक्षिप्त रूप में तो चला गीत गवाई के अवसर पर ही एगो छोटा सुने गो इंटरप्रिटेशन कर ला कुछ गादा गीत गवाई के अवसर पर कैसे करेला जब शादी में जा रहा था एगो उदाहरण दे दे हमने के श्रोतागण के कैसे गावेला
1: गीत गवाई के अवसर पर पहला है ये धरती माँ के शुरू कर ले सा सबसे पहला
0: कैसे आरंभ करेला
1: सुसुके सांजा नदी तीरे सांजा बेड़िया योरी तारे सांजा बेड़िया योरी तारे के कर दो वरिया हम जाए दो के

0: सन सोने के सिंहासन, सोने के सिंहासन, घीवा से हुमिया कराई देबो, दियारा बराई देबो।
1: बहुत बढ़िया ललिता जी, तो सब तो हर दिमाग में बा, बिना कागज देख ले ही ये सब तो हर कपाल में बा। बहुत बढ़िया, तो अभी तो नहीं जात हुआ,
0: नहीं अभी तो अधिक मास चलता,
1: अधिक मास चलता, यही खातिर तनी फ्री हो गए,
0: फ्री हो गए,
1: नहीं तो अगर हम तोहरा बुलाए थी और तू नहीं आई था,
0: हाँ,
1: हाँ। रोज के रोज तोहर प्रोग्राम
0: रहेला,
1: तो चलो श्रोतागण 402-807-0 पर हमने के जवाब

0: बाप दा तोहर बखत चलाल बा जवाब दे के आज के हमने के कलाकार होवन श्रीमती ललिता पुनित जी जो बहुत ही बढ़िया भोजपुरी गायिका होवन और साथ ही साथ हल्दी गान भी करेलन और गीत गवाए भी और अभी हमने के जो मेहमान होवन कलाकार बोलन की वो आज खाली होवन वही खती रहेलन काहे कि अभी अधिक मास चलता अब अधिक मास हम तोहर से नहीं पूछब कि कोची है अधिक मास के और दुगो नाम से हमने जानी ला जा एगो है जो अधिक मास अ से शुरू होला दूसरा है मल मास जो म से शुरू होला और एगो नाम से हमने अधिक मास के जानी ला जा जो प से शुरू होला अब जल्दी जल्दी नंबर वा मिला हुआ 4028070 मिला के हम देख हम जैसे हम बोला था तुरंत एगो फोन चला हमने के जो श्रोतागण है ना बहुत ही तेज हो जाओ कर दिमाग के हमने के दाँत चहना दे के तीन तीन को हो गल तो चल हमने एक करके एक लोग संगे बात करी ला जा अधिक मास के बोलल जला मल मास और एगो और नाम अधिक मास के हमने दे ला जा तो चलो जैसे कि ललिता जी अधिक मास पुकरलन तो हमने तुरंत हमने के जो श्रोतागण है वो लोग संगे बात करी ला जा चलो पहला श्रोता के हमने सुनी ला जा हेलो हेलो
1: हेलो रोशन जी
0: नमस्ते प्रणाम ये राधा जी हुआ मोचिदा से
1: और ललिता दीदी को भी हमार प्रणाम
2: हाँ तो हरो बहुत प्रणाम दीदी
0: राधा जी ललिता जी के जाने ला राधा जी
1: कोई बात
0: आज हम कृष्णा भगवान के बारे में पूछला नहीं पूछब हम तोरा अभी एगो अधिक मास के बारे में पूछा था है? बोला जा कौन जवाब दे बजा
1: पुरुषोत्तम मास
0: पुरुषोत्तम मास चलो तोहर जवाब के हमने लोग करे थे
1: कृष्ण भगवान आवेलन ओ लीला पुरुषोत्तम अवतार हवन और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार
0: तो चलो तोहर जवाब नोट करी ला सर देखी ला सर कि तोहर जवाब सही बात नहीं
1: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: नमस्कार राधा जी चलो दूसरा श्रोता के हमने सुनी ला जा वो लोग के मौका दे के हमने के कर्तव्य है चलो हेलो
3: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते बहन जी कौन नाम है तोहर
3: मीरा
0: मीरा कहाँ से बात करत हुआ
3: लालमाची से
0: तोहर तोहरे गांव में है जन चमकता सितारा हमने के आगे बैठल हुआ मीरा जी लालमाची से बात करत हुआ तोहर स्वागत बा मीरा जी बताओ अधिक मास मल मास के हमने और एगो नाम दे ला जा कौन कौन नाम हो
3: पुरुषोत्तम
0: मास तो चला देखब तोहरो हमने जवाब नोट कर ले हैं सा देख अब सकी तो जवाब सही है कि नहीं
3: और बहना को भी नमस्कार
2: तोहरो बहना तोहरो हमर धन्यवाद
0: धन्यवाद
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत धन्यवाद
3: ओके
0: चले गो और श्रोता से बात करी ला सा हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन जी कते से आशा जानू बोला
0: था आशा जानू जी तो स्वागत बा
4: और आज के दिन हमी के ललिता बहन जी हवन उनका मधुर आवाज में जो है गवाय के गीत सुनी जा उमन के लु, एकदम लुभा दिलन
2: बहुत धन्यवाद बहन जी बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद आशा जी ऐसे ही हमने के कलाकार के उत्साह छना बढ़ाई के हमेशा आवेला त उत्साह बढ़ावेला
4: हम यो के तहर सजे एगो सौभाग्य मिल जला कि कलाकार लोग से एगो नमन करे के दुगो बोली बचाई के
0: बहुत अच्छा बहुत कलाकार अच्छा। के संगे बात करे के इतना ज्यादा आसान नहीं रहेला ना आशा जी
4: मुश्किल है जब तार सितारा हवन जा अब हमी त सितारा लोग से मिले खातिर एगो मौका मिल जला त हम यो के लिए खुशी के बात
2: खुशी के बात
0: धन्यवाद आशा जी बोला कौन जवाब देब
4: जवाब है पुरुषोत्तम मास
0: पुरुषोत्तम मास अच्छा बा ललिता जी
2: अच्छा बा
0: बहुत ही बढ़िया आशा जी राधा जी और एगो बहन अभी फोन करे रंजा मीरा जी तीनों के जवाब एकदम सही है पुरुषोत्तम मास बहुत धन्यवाद आशा जी
4: धन्यवाद
0: धन्यवाद त बहुत अच्छा लगल श्रोता लोग के सुन के और तुहर बारे में अच्छा अच्छा बात करके तुहर तो मन गदगद हो गल
2: बहुत
0: जब बाजार में जावे जाल सगरो सगरो जब आदमी लोग तुहर से मुलाकात करे लन जा बोले लन जा की तुहरा टीवी में दिख रही रही तो कैसे लगे ला
2: तुहरा बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी
0: हाँ और जब लोग तुहर गाना सुने लन जा तुहर गाना के तब

0: होती बोलबाला बा आजकल एगो गाना बा इंद्रासन से ढोलकवा मंगेली ये खातिर हम बोला तेरे ढोलक के बारे में बहुत स्पेशल है तुहर खातिर तो ये गाना जो बेस्ट सॉन्ग 2025 में चुनल गया रहल और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला लेकिन बहुत कोई खुशी रहा
1: बहुत कोई बहुत यहाँ से विदेश तक
0: एक बोलबाला रहा बहुत अच्छा तो तुहरा बहुत बहुत बधाई हो अगर हम है गाना चलाब तो खिसा जाए
1: नहीं बिल्कुल नहीं खुशी हो बाउड़ू
0: और खुशी हो
1: बहुत खुशी के बात है
0: बोला कहा बोला ताई रोशन हुआ
1: बहुत खुशी के बात बा
0: तो चलो है गाना हम तोहर खातिर चला दे ला जे हमनी के श्रोतागण एकर खातिर ढेर इंतजार करत हुए जा तो एकर पर एक और प्रश्न हमनी करब जा तो चलो इंद्रासन से ढोलकवा मंगेली ई गाना सुना तब बाद में बातचीत हम जारी रखब जा श्रीमती ललिता पुनी जी आज हमने के कलाकार हुआ ना उनका से बात हमने जारी रखब जा ई गाना के बाद
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: कलाकार की बात, कार की बात।
2: कलाकार के बाद ललिता पुनित जी के साथ इंद्रासन से सख्यन मंगावेला और सख्यन के साथ मिलजुल के गमत करेला
3: गमत हां अकेले से तो नहीं हुई
2: अकेले से गमत कहां होला
3: कहां होला
2: तो ये जो गाना है इंद्रासन से ढोलक मंगाएला एकर बारे में तो बहुत अच्छा कहानी बात तुहर पास
3: हाँ
2: तो एकर बारे में चर्चा कर जा
3: हाँ तो वो भी जब गीत गाई के शुरू कर ले तो हमार माँ बाप से साफ गीत गवाई शुरू कर ले और भोजपुरी तो भैया राजकमल चिंतामणि उचाना बोले के मोर गुरु है
2: अच्छा राजकमल जी
3: हाँ
2: बहुत बढ़िया कलाकार हुआ
3: बहुत बढ़िया कलाकार
2: और गावेलन अच्छा से और नाचे भी
3: लन हाँ नचावेलन
2: नचावे भी सच्चे के बोल रहा
3: तो है ये अब गीत गवाई शुरू करनी तो है ये अब गीत गवाई से अब है ये माटी हम बोली ना ढोलक पूजा माटी कोड़ाई हरदी तिलक इमली घोटाई परछावन सब जब गीत गवाई शुरू करनी तो है सब पड़ल सीखे के सब पड़ल हाँ सब पड़ल सीखे के तो अभी आज है ये से आज लेता नहीं बा
2: बिल्कुल समय ने बात हरा
3: हाँ
2: एक कलाकार के जो न स्केड्यूल है उकर जो न डायरी है बहुत बहुत का बोली तो हरा बिजी
3: हाँ बिजी
2: ढेर बहुत व्यस्त हुआ जा
3: तू ही हम के फने सोने कला तो हम ही बोला थे देखना भाई गीत गवाई बा पारे होता ही
2: हाँ बिल्कुल
3: हाँ
2: आज गीत गवाई बा कल हल्दी
3: बा
2: परसों शादी
3: बा फिर परसों गीत गवाई बा
2: हाँ
3: फिर शादी बा फिर हल्दी बा
2: तो इतना सब जो मौका है ओके गवाई किने चाहे
3: नहीं नहीं नहीं कबू नहीं
2: समय के चाहना हमेशा सब जो उपयोग करके
3: हाँ हाँ
2: अच्छा बा और है जो गाना जब चलेला रेडियो पर बहुत फरमाइश आवेला रोज के रोज
3: रोज के रोज
2: एगो प्रोग्राम रहेला हर रात्रि के चलेला भोजपुरी तड़का इमें सचमुच सब जो गाना में तड़का लगा के तू गावेला ये तो काबिले तारीफ है बहुत ही सराहनीय है तो तुहरा कैसे बुझाला तुहर मन के संतुष्टि मिलेला
3: बहुत
2: इतना रोज के फरमाइश
3: हाँ हाँ बहुत खुशी सुनीला तो बहुत खुशी बहुत संतुष्ट मिलेला
2: हाँ तो है ये जो गाना एकर जो म्यूजिक है जो संगीत है ये एक स्टूडियो में तू डाले रह जा ताले के बोल ही तोहरे है
3: हाँ
2: बोलता तुहर
3: है तो हाँ
2: ये मैं भी राजकमल जी भी तुहरा सहायता कर लन
3: बहुत सहायता
2: तो चला इंद्रासन से ढोलकवा मंगेली देखो बहुत ही आसान प्रश्न बा हमने के श्रोतागण के उहल हमने हाई प्रश्न पूछते रहिए जा चला देखब सक हमने के जो श्रोतागण है अच्छी तरह से ध्यान लगा के ये प्रोग्राम सुने लन जा कि नहीं तो चला इंद्रासन से ढोलकवा मंगेली एगो जवाब में एगो शब्द आवेला जब भाई गाना सुनबा ता है गाना में एगो शब्द बा एगो फिल्म से हमने ले ले है सा बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा जगत में एगो ऐसन फिल्म बा जेकर में सबसे ज्यादा गाना बा 71 सॉन्ग्स 71 गाना यानी

0: तीन कोरी ग्यारह गाना बायू में बोला था हर सीक्वेंस में को गाना हो सकेला इतना गाना बा कहां से कब से इतना गाना अभी आजकल के फिल्म में सम्मिलित करे इतना असंभव है
1: असंभव
0: है हमने के जल्दी जल्दी बतावा 402-8070 पर 402-8070 पर कि वो कौन फिल्म के नाम है जेकर में 71 सॉन्ग्स है तीन कोरी ग्यारह गो गाना बाऊ में चला ये जवाब दे दे जल्दी जल्दी तब तक हमने एगो और गाना चलाए ला जा का बोलेला एगो और गाना हमने चराब सब सुना और हमने के जवाब जल्दी जल्दी दा

0: Gotenia sasurwa sab jarot ba.
1: Sab, ha. Sasurwa anata. Saswa jarot ba.
0: Saswa ki jarot ba, na? Bahut badhiya. Ita bahut badhiya gana gawa to tuta.
1: Basurwa anata, devarwa anata, me gotenian jarot ba.
0: बहुत बढ़िया। तो चल हमने के श्रोतागण के स्वागत करके बखत आगल बा हमने एगो प्रश्न पूछ रहे रही सर कि चल श्रोतागण से पहले मुलाकात कर रहे ला सर हमने के जवाब दे खातिर कौन ऐसा मूवी है जयकर मैं 71 सॉन्ग्स बा। हेलो
2: नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते इता शोभा जीवन बाकवा से
2: जी हाँ और मेहमान जी को भी नमस्ते
1: धन्यवाद।
0: हाँ तो प्रोग्राम सुनत हुआ
2: शुरुआत से
0: अच्छा बहुत अच्छा तब बात कर रहा बोला कौन फिल्म के नाम है।
2: फिल्म के नाम है इंद्रसभा।
0: इंद्रसभा कौन कौन सभा में जाला तू? अच्छा तो जवाब नोट कर ले हैं सर। देखो सर की जवाब सही है कि नहीं। ओके धन्यवाद शोभा जी। चलो एक और श्रोता से हमने बात करी ला सर देखो सर की पास सही जवाब है कि नहीं। हेलो हेलो
3: हेलो फिर एक बार नमस्ते
1: रोशन
3: जी और बहन जी के
0: भी। अच्छा आशा जी एक बार फिर चले पुनः तो स्वागत बा।
3: धन्यवाद।
0: कौन जवाब दे बा?
3: तो अभी बहन जी गए इंद्रासन से ढोलक मंगेलन तो हमार जवाब बाटे इंद्रसभा।
0: सचमुच सही जवाब दे रहे। शोभा जी और आशा जी बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। अच्छा धन्यवाद।
3: शुभ संध्या।

0: You have to hear अपन मनपसंद चैनल रेडियो मनोरंजन, जहां पर हर प्रकार से तो हर मनोरंजन होला। और आज मनोरंजन तो करत हुआ तो हर एगो बहुत ही बढ़िया कलाकार जेकर नाम है ललिता पुनीत जी। तो चलो ललिता जी, हमने के बतावा कि वो कलाकार के कैसे चाहना रहे के?
1: कलाकार के चाहेला निमन से बोली बतियाई के, मीठा बोली बतियाई के, बस कि हमने के सब कोई से काम बा,
0: सब कोई से काम बा।
1: कैसे वो गीत गवाई देखलन जा लोग के पसीन लगल तो तोहराई देखे, तोहरा चला नहीं घमंड में रहे के,
0: बिल्कुल
1: चला,
0: नहीं
1: चला हंसी बोली मिठास ऐसे जमे तोहरा तो मतलब तोहरा चला अच्छा करे के
0: तो हर में वो गुण चाहे रहे के ताकि वो लोग तोहरे प्रति आकर्षित हो। बहुत अच्छा। एगो कलाकार के जब अहंकार चलावेला तो कर विनाश चलावेला,
1: ओ नहीं अच्छा बात, तब तो निको नहीं अच्छा बात, विनाश चलाई हो।
0: हाँ सच्चे के हमेशा चाहेला अपन के आगे बढ़े
1: के, आगे बढ़े के, मुंह में चाहेला हंसी, चाहेला हंसी निमन बोली मिठास, तनी भक्ति भाव के बात बतियाव लैका लोग के कैसे रहे के, कैसे ले जाए के। गीत गवाइयों में जालंग समय लगे जवान जवान लैका लोग निमन सिखाईला सब देखा हमारे नाती जो नालबा लेके जाईला
0: प्रणव
1: हमारे नाती हवन
0: लेके जालन,
1: हाँ जालन ढोलक बजावेलन जोली से।
0: अच्छा
1: अब ये ताई गीत जब दे तो हवे नहीं बता मुझ बिजा में ढोलकला हमारे गीत वाला
0: तो
1: कर हाथ घड़े तई तबला में कूजालन एम जी आई
0: कोस करत हुआ
1: तो कर हाथ तक चुचाप नहीं रहेला और तबला लोटा और जम्बे और ढोल सब
0: सब
1: हाँ लैका लोग के चाहेला इस सब में डाले के हाँ इस सब में चला डाले के जैमे लैका लोग दूसर सीमा नहीं देखी निमन सीमा में निमन रास्ता में चली अंजा जब हमने के टोली में नहीं सीधा रही तो लैका लोग कहाँ से
0: कहाँ से
1: सब निमन से लैका लोग के बटोर के लेके जाइला सब और हमने के सब एगो टोली बनैले सब।
0: अच्छा हाँ बहुत अच्छा
1: तो जाइला सब तो मतलब खुशी रहलंग सब परिवार जहाँ जहाँ जाइला जा सब कोई बहुत खुशी होलन जा गीत गवाई हमने के टोली एक मतलब तो रेस्पे सब देख के लैका लोग के भी सब
0: ऐसा ऐसा कार्यक्रम से वो लोग के भटक खुली
1: हाँ
0: और संस्कार संस्कारी भी बन जा
1: हाँ
0: अच्छी राह पर चल जा
1: हाँ
0: और वो लोग के बुझा जाए कि कौन चीज बिल्कुल बुरा है
1: हाँ।
0: और कौन चीज जस्ते अच्छा निमन
1: अच्छा हाँ
0: तो यही हमने के चाहेला आजकल के नौजवान के वो लोग के हमने के बताए कि कौन चीज के चाहेला अपनाए के और कौन चीज के चाहेला ठुकराए के। अभी
1: के माता पिता जुनबा कैसे एगो को पूजा हुआ था तो लैका लोग के लेके जा बोला चलो यहाँ निमन निमन सब वहाँ ज्ञान मिला था सब हवनी तमाशे के निमन चीज कहाँ पर पूजा हुआ था भागवत हुआ था और सब में लेके जा लैका लोग के और बोला घर में कि हुआ कथा होता हुआ भागवत होता हुआ पूजा होता कीर्तन होता भजन होता चले के हुआ है सब में निमन निमन ज्ञान बा
0: बहुत अच्छा।
1: निमन रास्ता में जब लैका लोग चली
0: हाँ बहुत अच्छा। तो जैसे बोली जा कि है जो तोहर संगीत के तोड़ी बा मैं अनेकों कलाकार बा बहुत बहुत बधाई हो आपको हाई तोली के लेके तो बहुत कार्य करत हुआ
1: हाँ धन्यवाद
0: लैका के सब ले जात हुआ
1: हाँ हाँ
0: और हम तो हसे गो आग्रह करत है
1: हाँ।
0: कि चले गो हिंदी फिल्म के गाना गा दो
1: हाँ
0: सग बगाई
1: नो ढेर लमका तो नहीं सगा
0: नहीं
1: छोटा सुन हाँ एगो माँ पर गा दे वा भवित मातृ आवतन
0: मातृ दिवस अगले सप्ताह तक
1: अगले सप्ताह के बाद
0: इहु उपलक्ष में गो गाना गावत
1: हाँ हाँ
0: अच्छा एगो छोटा सुन टुकड़ा प्रस्तुत कर
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले।

में छुपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ तो कितने

0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक.
1: हाँ, धन्यवाद.
0: गाना गेले हुआ तो ई में तालियों की गूंज चाहेला. बहुत ही बढ़िया. अभी ललिता जी गैलन तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है. माँ पर,
1: माँ पर.
0: हाँ, बहुत ही अच्छा. तो चला हमनी के जवाब द 402-8070 पर कि जो हमनी के आज के कलाकार हो न ललिता जी, हई गाना गैलन तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, ई कौन फिल्म से हई गाना है. चला जल्दी जल्दी जवाब द 402-8070, ई कौन फिल्म से है गाना है. तब तक हमनी ललिता जी से बात करब जा. काहे नहीं,
1: काहे नहीं,
0: चाहे ला. और जब तू माता, आप माता के जिक्र कर ल, चर्चा कर ल, तो हर खतीर है सबसे जो पहला गुरु है वो माँ है.
1: माँ
0: तू भी तो वो माँ हो. तो हमनी के जो आज के नौजवान है वो लोग के का संदेश देव माता के बारे में?
1: ये संदेश देव कि माँ के कब्बो निराश नहीं करे के, माँ के खुशी रखे के. माँ बाप के कब्बो नहीं छोड़े के आश्रम में कि कुआ में कहूँ कहूँ नहीं. माँ देखा जब लड़का एगो माँ बाप के एगो कितना लड़का रही, सात छ गो रही, सात गो रही, दस गो रही, बारह गो रही, माँ सबके संभार के रखी,
0: सबके
1: संभार के रखी. तो काहे हवे माँ के जब लड़का लोग बड़ा हो गल, शादी हो गल, तो हवे माँ अब भारी हो गल. नहीं अब तनिको नहीं अच्छा बा. माँ के दिल दुखाई तो बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है. नहीं चाहला ऐसे करे के. देख अभी मातृदिवस आवता तो नहीं, मातृदिवस आवता तब कादू दे दिल खाली हो दिन के. माँ आज पेट मामा बा कादू आन नहीं, पेट मामा बा नहीं बा, माँ बाप के चला बराबर देखे के. जब ले रयन जा, जब ले रहन जा, नहीं कि हम काम करत हई नहीं बा ले तो ऐसे जाके छोड़ देबा, नहीं अच्छा तनिको तनिको नहीं अच्छा. मैं यही सबसे हाथ जोड़त हई जेकर जेकर माँ बाप बा अपन माँ बाप के गंती ले जा, दुख नहीं दिया जा, खुशी रखबा. जितना माँ बाप के खुशी रखबा जा तो लड़का लोग भी उसने ही खुशी फूलल फलल रहन जा.
0: बहुत अच्छा.
1: हम बहुत धन्य, बहुत हाथ जोड़त है तो लोग से. जितना माता पिता बा, जितना लड़का लोग बा, बेटा बेटी, माँ बाप के निराश नहीं कर जा, दुख नहीं देव जा, निमन से रख जा.
0: धन्यवाद ललिता जी, बहुत अच्छा विचार बा तोहर. तोहर ओर से तो चल हमनी के श्रोतागण के हमनी स्वागत करी ला जा. हेलो
2: हेलो रोशन भाई, नमस्ते.
0: नमस्ते संगीता बहन
2: जी, हम लालमाची से संगीता बोल रहा
0: था. लालमाची से
2: ललिता मामी को भी प्यार भरा नमस्कार.
1: नमस्कार तोहरो.
0: दू दू गो श्रोता लालमाची से
2: फोन कर लेन सर. ललिता मामी हो तू?
1: हाँ,
2: बहुत बहुत दिल छोड़ देली बाते से मां पर कहे हम बताए. हम अपन मां के देखिला.
1: हाँ,
2: हम अपन मां
1: के होवे से बोला थे ना.
2: माती दिवस पर मां के नहीं छ याद कर.
1: नहीं नहीं,
2: रोज के अपन मां के जाना याद कर के, रोज की जाना देखी के.
1: हाँ हाँ,
0: तो चला हमने के जवाब दे संगीता जी.
2: राजा और रंग.
0: राजा और रंग, चल हमने हाई तोहर जवाब नोट कर लेला सा, देखे सा कि सही जवाब है कि नहीं. ओके,
2: धन्यवाद रोशन भाई, ऐसे ही प्रोग्राम चलाते रहिया. जोर चाहे लगा के हमने के.
0: धन्यवाद. हाँ, दिमागी कसरत कर बहुत ही स्वस्थ रह.
2: धन्यवाद रोशन जी, धन्यवाद मामी.
1: हाँ, धन्यवाद तोहरो संगीता.
0: अच्छा, संगीता जी के बाद चला एगो दूसर श्रोता के हमने स्वागत करी ला जा. हेलो,
3: नमस्ते भैया रोशन जी.
0: नमस्ते उदय भाई.
3: और ललिता बहन को भी नमस्ते.
1: तोड़ो भाई जी, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद.
3: हाँ, सुना थे साल रसोई घर में रेजो सद है.
1: हाँ,
3: और बड़ी जोर से वो पत्नी जी दलदेवन राजू संगीत गावत होन कोनो कोनो.
1: अच्छा वाह, अच्छा वाह, अच्छा
3: वाह. हाँ, उतनी गीत गवाई में होना
1: इसे कूलिलन. हाँ हाँ, अच्छा
0: बहुत अच्छा. तो ऐसा ही नहीं सर, चाहला हमने के गीत गवाई में हमने के नौजवान लोग के दाखिल कराई.
1: हाँ हाँ, दाखिल चाहिए
3: कराई के. हमारे एगो नेवियो करोगे, नेवी भाई के एगो बेटा के कल बेचर हल.
1: हाँ,
3: पूजा होल दुर्गा माँ के पाठ होल.
1: हाँ,
3: और बाद में एगो एगो मंडलियार हल एगो टोली.
1: हाँ,
3: कीर्तन करी.
1: अच्छा बा.
3: हाँ, हमू संगे संगे साथ दिली.
1: अच्छा बा,
0: बहुत अच्छा.
3: अच्छा, तो जवाब है राजा और रंग.
0: राजा और रंग, चला तो हर जवाब हमने
3: नोट करे. जोली जोली गीत बफिमा में.
0: बहुत अच्छा. तो चला एक दूसरा मौका में तोहर आवाज में सुनब सा.

0: धन्यवाद जगदे भाई। चले गो अंतिम श्रोता के लिए राजा ललिता जी, बहुत कम समय रहे गलबा। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, के बात कर रहे हो?
1: अनिता मोदाल भी।
0: हाँ अनिता जी, तो स्वागत बा मोदाल भी।
1: बहन जी को भी नमस्कार, बहुत बहुत
2: थोड़ो बहुत नमस्कार बहन जी।
0: बताओ अनिता जी, कौन जवाब दे?
1: राजा और रंग।
0: राजा और रंग, और तुहर जवाब एकदम सही है। बहुत अच्छा, उदय भाई के जवाब भी सही है, संगीता जी के और तोहरो जवाब सही है। धन्यवाद
1: धन्यवाद आप लोगों को भी।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: तो चल आज के हमने अंतिम प्रश्न रहल हमने के श्रोतागण के, और प्रश्न करबा तो और जवाब दे बन जा, लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं बा। हम जानत हैं कि श्रोतागण तोहर से बात करे के बहुत उत्सुक होन, परंतु एगो पॉट फ्री छाना रखे के एगो तीसरा भाग थोड़े संगे। तो बताओ हमनी के भोजपुरी में तो बात बिल्कुल बढ़िया बढ़िया करेला।
2: हाँ।
0: ये तो तुहर गथला तू बोले लचा कि भोजपुरी तुहर मातृभाषा है।
2: हाँ,
0: जब से होश संभाले हुआ हाँ। तब से भोजपुरी में बात करते रहेला।
2: हाँ।
0: और भोजपुरी के बारे में हमनी के मॉरिशस वासी लोग के तुहरा का बोले के बा?
2: मॉरिशस वासी लोग कहे बोले हमने के भोजपुरी नहीं छोड़े के, ये हमने के चला जीवित रखे के हमने के भोजपुरी के नहीं छोड़े के, आ लैका लोग के भी सिखाव। हाँ लैका लोग के सिखाव भोजपुरी बतियाई के। देख हमने छोटा से हमने के दादा रहल, हमने के माँ बाप रहल, सब हब्बी तरक ले सब भाई बहन लोग हब्बी ले भोजपुरी बतियाई ला जा हब्बी ले। अभी सब ला सब कोई अपन अपन लैका लोग के जहाँ भजन बा कीर्तन बा बैसका बा विदा करे के लैका लोग के जब भोजपुरी सीखियन जा, नहीं तो हब्बी के लैका लोग तो छोड़ रहा खाली किरियोली किरियोली अंग्ले फ्रांसे। हाँ। तो नहीं भोजपुरी चाहे सब भाषा चाहे जाने के नहीं
0: मातृभाषा।
2: हाँ नहीं बोला था कि अंग्ले नहीं फ्रांसे नहीं, बस के लेकोल में तो सब होला हिंदी अंग्ले फ्रांसे सब हो गया।
0: हाँ।
2: मैं हमनी के भाषा जोन बा छूटल जाता तो लड़का लोग कबू नहीं जानी भोजपुरी कौन ची है कौन ची ओकर तो नहीं चाहे लड़का लोग सिखाई के कि हमने यही चाहे भले अंग्ले फ्रांसे पढ़त हो मैं हयो पढ़ हिंदी जा। हाँ जहाँ भजन कीर्तन पूजा पाठ सगड़ो जा।
0: तो हमने के जोन भोजपुरी गाना है।
2: हाँ।
0: जोन भोजपुरी गाना में बहुत नौजवान लोग दिलचस्पी रखे रहन जा।
2: हाँ, हाँ।
0: और खासकर जो रिथमिक सॉन्ग सा जैसे बोले
2: धमाकेदार। हाँ।
0: जब पार्टी सब होला। हाँ। शादी के मौका में खूबे नाचे रहन
2: खूबे।
0: परंतु ये भी एगो माध्यम है।
2: हाँ।
0: हमने के नौजवान के प्रेरित करे के कि भोजपुरी सीखे के
2: सीखे के।
0: कोनो कोनो नौजवान बोले लंजा कि हमने बहुत खुशी रहती सा अगर हमने भोजपुरी में गई थी सा तो।
2: हाँ, हाँ।
0: भोजपुरी में गाय के आगे तोहरा छाना भोजपुरी भाषा
2: जाने के। हाँ।
0: बहुत सुंदर भाषा है।
2: हाँ, हाँ।
0: बोले के बहुत अच्छा लगेला।
2: हाँ।
0: एक जैसे बोले लंजा टड़का लगा के बोले
2: टड़का लगा के।
0: पांच बजकर 52 मिनट हो गल बा। तो ललिता जी बहुत बहुत धन्यवाद हैजा आइला अपन समय निकाल के।
2: थोड़ा बहुत धन्यवाद भैया।
0: और कोनो प्रोजेक्ट्स बा तुहर भविष्य में और गाना निकाले के तुहरा मन करता भी कि?
2: हाँ,
0: और एल्बम निकाले के?
2: हाँ हाँ अभी हम जब ले हम जीवित रहब हम नहीं छोड़ब भोजपुरी के गीत नहीं छोड़ब। हम अभी हम खोज खोज के निकालत है अभी को वो माँ पर तो गा दिले है।
0: अच्छा,
2: अभी
0: नारी पर गए हुआ।
2: हाँ हाँ नारी पर।
0: हाँ तो कौन विषय में तुहरा अभी बुझा था कि एगो गाना लिख अभी?
2: अभी विषय में लिख लें तनी भाई बहन पर।
0: अच्छा भाई बहन।
2: हाँ बस के नारी में गा दिले है एगो टुकड़ा गा दिला।
0: अच्छा गादा
2: ओ ना।

0: महारानी।
1: बहुत अच्छा।
0: हाँ, एगो माँ मान ला सब कुछ वही वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही काली है, वही सरस्वती है, सब हवन।
1: बहुत अच्छा। और नारी के जोन शक्ति है अपार है,
0: अपार है।
1: और जोन जोन नारी के आदर सम्मान नहीं करे रंजा, बहुत ही तकलीफ के बात हो,
0: बहुत तकलीफ के बात है, बहुत तकलीफ के बात।
1: हमेशा छान अमनी के अपन से बड़ा के, अपन से छोटा के आदर
0: आदर दे के।

0: अभिता तोहरा आदर मिली ना खास करे को नारी पर कबो छामनी किने छला कैसे बोलब तोहरा अनादर करे के
1: नहीं कबो नहीं करे के कबो नहीं
0: हाँ एक ऐसा पुरुष है जो सब के आदर करेलन तो भी ओकर आदर होला हाई जिंदगी में तो कुछ नहीं रखल गा बा बोल बा ता कुछ नहीं रखल गा बा है जा खाली हमनी के नाम होला तोहरा जाए तोहरा आंख बंद करला के बाद वो लोग नहीं बोले कि तोहरा इतना धनाद रहल इतना संपत्ति रहल ओकर ओकर पास बोलिए सा एगो अच्छा आदमी रहल
1: अच्छा आदमी रहल
0: बुरा आदमी रहल तोहर जो न चरित्र ओकर बारे में बात
1: ओकर बारे में बात करें जा कहते हम तू नहीं हो मैं हो बतवा चली
0: चली बिल्कुल आज
1: हवे भक्त मोबे कर ले रहा तो मोबे वे बतिए यंग सा
0: सच्चे
1: के ऐसे कर ले रहा उसे अच्छा बात चल गल आ निमन कर ले रहा तो भी देखो इतना निमन एडमिरल अभी काल देख ली हो काल बतिए नहीं ऊपर से ऐसे अचरज के बात हो जाला
0: उदासी के बात हो जाला
1: हां
0: हां ऐसा काम कर जिंदगी में कि तोहर वाह ही हमेशा हो और बुराई से बिल्कुल बचबा
1: बचबा हाँ
0: तो ऐसा ऐसा गाना निकलते रहिए ललिता जी
1: हाँ
0: और आशा करते हैं कि भोजपुरी बेस्ट सॉन्ग 2026 में भी एगो नया गाना तो हर सम्मिलित हो
1: हाँ
0: और ओकरो जैसे इंद्रासन से धोलकवा मंगेली इतना वोट मिल रहा है
1: हाँ
0: ओकर से जस्ती वोट इस बार तो हरा प्राप्त हुई
1: धन्यवाद बहुत धन्यवाद
0: और अभी तो हमने मई महीना में है सर
1: मई महीना
0: और जुन जुन प्रोग्राम अभी तू ले ले हुआ जा वो मातृ दिवस पर हो गीत गवाई हल्दी गान शादी के जुन प्रोग्राम हो या भोजपुरी फेस्टिवल में भी तोरा मौका मिली भाग लेके तजी भर के भाग लिया
1: धन्यवाद
0: और तोहर से जो छोटा छोटा हुआ जा जो नौजवान हुआ जा ऐसे लोग के प्रेरित करिया कि ऐसा संगीत में दिलचस्पी रखे
1: दिलचस्पी रखे के
0: संगीत में भाग ले बस संगीत में रुचि रख बा तो सचमुच एगो शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बन बा
1: तेरे कहा भी हमारे पोता के ले जाएला ना अरे कभी कोई कीर्तन में बुला दे हुआ लेके चल जाता हरदी करे के अरे कभी शामदी के लेके चल गई लंग
0: और हो जाओ धुलोक
1: धुलोक पर हरदी
0: इतना नौजवान हो के इतना बच्चा भी तो बालक हो ना
1: हाँ अभी तो बालक अभी तो 12 बड़ी सो
0: तो वही आदमी लोग बहुत खुशी रहे लंजा जब वो लोग नौजवान के और बालक बालिका के देखे लंजा
1: बहुत ही जब देखे लंजा शादी में तो कबो काओ के आवेला तब काओ के बेला भी ई तो बहुत अच्छा बा इतना छोटा लड़का के हमरा बहुत धन्यवाद देवे लंगस बोले लंगस मिको लेके भर्ती होल कि देख इतना पीती लड़का के कैसे अच्छा बा तो बहुत सीमा निमन सीमा में आन देले
0: बहुत अच्छा
1: हां देख कीर्तन में
0: आसान बात नहीं है
1: हां आसान बात नहीं है
0: और बराबर पढ़ाई भी होला अच्छा से पढ़त होने कॉलेज जालन हाँ तो ओकरो हमने बहुत बहुत आशीर्वाद देवत हैं जा कि पढ़ाई के क्षेत्र में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और खासकर संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ी
1: हाँ
0: तो चला श्रोतागण आज के हमने के कलाकार ललन ललिता पुनित जी जेकर हमने बहुत धन्यवाद करत हैं सदिल से और एक और मुलाकात तक हमने तोहर से अनुमति चाहत हैं जा और 6 बजे ठीक और तोहरो समाचार सुन बजा और समाचार से पहले चला एगो बहुत ही सुंदर सा गाना हमने सुनब जा ललिता जी की आवाज में नमस्कार शुभ रात्रि हमने के श्रोतागण की
2: RM3 रेडियो

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: बाईस मई की तारीख शुक्रवार का दिन, स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच हुए समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, सुरक्षा पर प्रशिक्षण और आपात स्थिति से निपटने में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की जा रही है। अमरीकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की टेक्निकों का विशेष प्रदर्शन भी किया। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार नए पब्लिक हेल्थ एक्ट कानून लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। 20 वर्षीय विलियम विलो की मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्य आरोपी 18 साल का एक कॉलेज छात्र दावा कर रहा है कि उसका सामना एक कथित चोर से हुआ था। मामले की जांच जारी है और राजस्थल पर पूरे घटनाक्रम को फिर से दोहराया गया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 ने साल 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचा था। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर आज एक नया समझौता हुआ। इसके तहत मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की टेक्निकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। इस तरह मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। मॉरिशस इस अमरीकी सहयोग कार्यक्रम से जुड़ने वाला अफ्रीका का 24वां देश बन गया है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार एक पब्लिक हेल्थ कानून लागू करेगी जिसके तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम 2025-2029 में घोषित इस पहल के तहत एक सदी से भी ज्यादा पुराने मौजूदा कानून पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि देश को ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा मिल सके जो आज की महामारी संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। देश के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मॉरिशस आकर स्थानीय मेडिकल टीमों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की। दिल की बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मगौरी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉसन की मदद से सरकारी अस्पतालों में

0: कई नई सर्जरियां सफलतापूर्वक की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस पर प्रस्तुत है प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: 60 साल के जॉन-मार्क विल्ब्रन विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक यूनिट में एब्लेशन से उपचार पाने वाले शुरुआती मरीजों में शामिल हैं। हृदय की अनियमित धड़कन के कारण उन पर ये सर्जरी की गई, देश के सार्वजनिक अस्पताल में पहली बार। ये उपलब्धि एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्पेशलिस्ट और इजिप्ट से एक रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के सहयोग से संभव हो सकी।
2: So far we have done 14 cases.
1: 14 कठिन मामलों पर हमने काम किया है। इनमें कई लोगों ने अन्य जगहों पर इलाज कराया था जो असफल रहा। इतनी अच्छी टीम के साथ हम 100% मामले सुलझा पाए हैं।
2: All our cases are done with 100% success.
3: Pas de maladie d'arythmie là, ne traite le tout avec pas de médicaments. Donc pas de médicaments.
1: इस बीमारी के लिए आजीवन दवाई लेनी पड़ती है। इस सर्जरी से अब व्यक्ति को ये दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और वो सामान्य जीवन जी पाएगा। जीतू अस्पताल में 48 साल की जेनिफर माहिथांकील ने भी एक नवीन प्रक्रिया का लाभ उठाया। सिम्टोमैटिक फाइब्रोइड्स के इलाज के लिए उन्होंने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कराई। ये भी सार्वजनिक सेवा में पहली बार।
4: Je fais une écho privée en dehors, mais je trouve un hôpital. L'hôpital n'admet moi.
1: मैंने निजी इलाज कराया, अस्पताल आई तो भर्ती हुई, इससे बहुत सहायता मिली। इससे मरीज तेजी से ठीक हो जाता है, जोखिम कम होते हैं और बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मरीज अपना गर्भ नहीं गवाती, यानी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं, बहुत जल्द वो ठीक हो जाती है, मरीज को राहत पहुँचती है।
5: It's almost just a once off and this is a great relief for patients.
4: Il y a beaucoup de patients qui type bizarre.
1: कई मरीजों को विदेश जाना पड़ता था और अब यही पर इलाज हो पा रहा है। ये नई उपलब्धियां देश के सार्वजनिक अस्पतालों में विशेष चिकित्सा सेवाओं के विकास को दर्शाती हैं।
0: कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार एक पब्लिक हेल्थ एक्ट कानून लागू करेगी जिसके तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम 2025-2029 समय घोषित इस पहल के तहत एक सदी से भी ज्यादा पुरानी मौजूदा कानून पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि देश को ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा मिल सके जो आज की महामारी संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। कुणाल गुर्जी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
6: सलाह मशवरे की कड़ी में ये पहली बैठक रही जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लगाई गई। मकसद एक ज्यादा मजबूत कानूनी ढांचा कायम करना जो वर्तमान चुनौतियों को पूरा करने के लिए 1925 के समय के कानून की जगह ले जो अपना प्रमाण दे चुका है।
7: How can we tell a patient who's already suffering, who's already given so much of test, that udoshin pyaji? This to me is unacceptable.
6: नए पहलू अनेक हैं। बेचे जाने वाले खाद्य सप्लीमेंट, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जुड़ी बीमारियां, महामारियों के खतरों से बचने के लिए बंदरगाह और हवाई अड्डे पर प्रवेश बिंदुओं की निगरानी। स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक निदेशक अश्वमेध दिनासी ने कहा, उदाहरण के लिए पहले इबोला नहीं थी, कोविड नहीं थी, पब्लिक हेल्थ में परिवर्तन के साथ प्रणाली में सुधार हो रहा है। डॉक्टर दाऊद ओआरिस ने कहा, ये ड्रॉप देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा कदम है, 100 साल में बहुत विकास हुआ है। WHO पहले ही स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा फायदा उठाने और डिस्पेंसरी में विशेष उपचार उपलब्ध कराने की सिफारिश कर चुका है। इसके प्रतिनिधि अब्दुल सालेम गेये ने कहा, यदि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नर्स होंगे, विशेषज्ञ भी वहां जाते रहेंगे, तो बीमार बुजुर्गों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी, संक्रमण से भी बच पाएंगे।

0: इस विधेयक में डिजिटाइजेशन केंद्र में रहता है। इसके तहत सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक डेटाबेस प्रणाली विकसित की जाएगी, साथ ही गोपनीयता के सिद्धांतों का भी पालन किया जाएगा। मंत्री अविनाश राम टोहल ने कहा,
1: Who carries the liability? The doctor, the operator of that machine?

0: एक्टर, मशीन के ऑपरेटर, सरकार या मशीन के निर्माता, ये हमारे कानून में स्पष्ट नहीं है। कौन किसके प्रति जिम्मेदार होगा, ये नया कानून देश के शहरीकरण, रोकथाम तंत्र, कार्यबल, प्रयोगशालाओं के प्रबंधन जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखेगा।
1: मॉरिशस और अमरीका के बीच एक समझौता तय हुआ है। मॉरिशस पुलिस और अमरीका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमरीकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। मीगन पुनपलाइकन की रिपोर्ट पर याशना मिश्रा का विवरण।
2: स्थिति तनावपूर्ण है। SMF के ये जवान एक उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में बुलाए गए। चेतावनियों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार रहे। उनका सामना करने के लिए इस विशेष इकाई के सदस्य एकजुट हुए। वे प्रदर्शनकारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए समन्वित कार्रवाई अपनाते हैं। आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। SMF पुलिस का अंतिम विकल्प है। हम अंत में आते हैं आर्मर्ड वाहनों के साथ। कुछ अभियानों में विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होती है। कई बार बचाव दल को कठिन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ती है। रस्सियों के सहारे नीचे उतरने वाले इन अभियानों को अंजाम देने के लिए लगभग रोजाना प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ अभियानों का सवाल है, मोशन पुलिस का हस्तक्षेप समूह नियमित रूप से आत्सु की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
1: मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। मॉरिशस इस समरी के सहयोग कार्यक्रम से जुड़ने वाला अफ्रीका का 24वां देश बन गया है। इस पर करुणा लालू का विवरण।
0: ये अभ्यास डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अफसरों की प्रतिभा को दर्शाता है। ये ड्रिल एक इमारत के ध्वस्त होने से संबंधित है। ये अमेरिका और मॉरिशस के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते में शामिल एक क्षेत्र है। ये न्यू मेक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा दल और मॉरिशस की पुलिस फोर्स के बीच लंबे समय की साझेदारी से संबंधित है। मेजर जनरल मिगेल आगिला ने कहा, आपात स्थिति से निपटने और प्रशिक्षित होने के लिए आदान प्रदान का फायदा उठा पाएंगे। इस साझेदारी से एक दूसरे से सीख पाएंगे। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली ने कहा, सुरक्षा को लेकर और साथ में क्लाइमेट चेंज की सभी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके पास उचित साधन और उपकरण हैं, हमारी मदद करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और SMF के जवान भी उनकी तरह ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित हों।
3: SMF और पुलिस aussi formés dans même capacité qui va faire pour une opération।
0: राष्ट्रों के साथ साझेदारी प्रोग्राम एक अमेरिकी सहयोग पहल है जो कि 30 सालों से स्थित है। इस संधि के बदौलत मॉरिशस इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास के शार्जे डाफेयर ने कहा, ये प्रोग्राम कई दशकों तक चलेगा। ये दीर्घावधि की संधि है जिसका मकसद समझबूझ, साझेदारी और दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करना है। गृह मामलों की सचिव फंगवन पुरन ने कहा, ऑपरेशन की एक योजना बनाएंगे जहां सुरक्षा और आदान प्रदान को केंद्र में रखेंगे। अपने सहयोग की बदौलत मॉरिशस आपदा की स्थिति में हस्तक्षेप और तैयारी की

0: अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है ताकि जनता की बेहतर सुरक्षा की जा सके।
1: मॉरिशस ऑटमी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े राजनीतिक प्रतिबंधताओं वाले समझौते हैं। अब तक 67 देश इन नियमों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनका उद्देश्य एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर सके, जिनमें तूफानों की दिशा का पता लगाना और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन शामिल है। नासा के पूर्व डिप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जिम एडम्स ने आज दोपहर पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से इस सिलसिले में मुलाकात की। आत्मरक्षा या हत्या, 20 वर्षीय विलियम विलॉ की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्य आरोपी 18 साल का एक कॉलेज छात्र है, कह रहा है कि उसका सामना एक कथित चोर से हुआ था। अब जांच में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। इसी मामले में आज घटनास्थल पर क्या हुआ था इसे फिर से दोहराया गया। हिंद महासागर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी समुद्री कार्रवाई। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ समुद्र में बड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दक्षिण हिंद महासागर में फ्रांसीसी नौसेना ने एक मछली पकड़ने वाले जहाज से 800 किलो से अधिक हेरोइन और अन्य ड्रग्स बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 15 मई को समुद्र में जांच के दौरान चलाई गई। अधिकारियों के अनुसार पिछले एक महीने में इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में ये चौथी बड़ी ड्रग्स जब्ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांगो में फैल रहा इबोला वायरस अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मौजूदा प्रकोप कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार वायरस का जो प्रकार सामने आया है इसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है। आस्था गोविंद चितामन का विवरण।
2: कोंगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO के अनुसार अब तक सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के कुछ मामले पड़ोसी देश युगांडा में भी दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस बार फैला इबोला वायरस बुंदी बुग्यो प्रजाति का है, जो काफी दुर्लभ माना जाता है और पिछले एक दशक से अधिक समय बाद फिर सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ संभावित टीकों पर भी काम जारी है, लेकिन उन्हें तैयार होने में कई महीने लग सकते हैं। इबोला एक गंभीर और जानलेवा वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव जैसे खून, पसीना, उल्टी या अन्य संपर्क से फैलती है। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार या फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में तकलीफ शामिल है। बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त, शरीर के अंगों पर असर और कुछ मामलों में आंतरिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कोंगो के कई प्रभावित इलाके संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जिसके कारण संक्रमित लोगों की पहचान, इलाज और निगरानी का काम मुश्किल हो गया है। WHO, मेडेसिन सान फ्रोंटिया यानी MSF और स्थानीय स्वास्थ्य टीमें प्रभावित क्षेत्रों में उपचार केंद्र स्थापित कर रही है, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने, लक्षण दिखने पर तुरंत जानकारी देने और संक्रमित शवों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इबोला से वैश्विक स्तर पर महामारी जैसी स्थिति का खतरा कम है, लेकिन अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को तेजी से रोकना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि आने वाले हफ्ते इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
1: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमरीका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि शांति वार्ता से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि समझौता नहीं होने पर अमेरिका के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। दूसरी ओर हॉर्मुज समुद्री मार्ग में तनाव बना हुआ है। ईरान के अनुसार पिछले 24 घंटों में 31 जहाज उसकी निगरानी में इस रास्ते से गुजरे। वहीं दक्षिणी लेबानन में इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस बीच तेल बाजार पर भी असर दिख रहा है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को अभी भी अमेरिका ईरान समझौते पर संदेह बना हुआ है। एक महाद्वीप, अनेक संस्कृतियां, लेकिन संदेश एकता का।

0: अफ्रीका दिवस के अवसर पर मॉरिशस में इजिप्ट की दूतावास ने एबेन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग, एकजुटता और भाईचारे को और मजबूत करना रहा। इस अवसर पर विभिन्न अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां साझा इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और अफ्रीका के सामूहिक भविष्य पर जोर दिया गया। क्रिस्टल लिबास की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: ये सिर्फ एक साधारण प्रदर्शनी नहीं थी। फ़ाराओं की प्रतिमाएं और कई अन्य कलाकृतियों ने मेहमानों को एक समृद्ध और आकर्षक सभ्यता के केंद्र में पहुंचा दिया। इन सभी को अफ्रीका दिवस के अवसर पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। मॉरिशस में मिस्र के दूतावास ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो एकता और साझेदारी पर आधारित था। मॉरिशस में मिस्र के राजदूत अबीर आलम एल्दीन ने इस वर्ष की थीम जल के सतत प्रबंधन पर प्रकाश डाला। इजिप्ट ने नाइल बेसिन में कई परियोजनाएं लागू की हैं और हाल में विकास के लिए साझेदारी की इजिप्शियन एजेंसी के तहत एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक फंड निर्धारित किया गया। मकसद नाइल क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है। उद्योग और सहकारी मंत्री आदिल अमियमिया ने मिस्र को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसकी प्रशंसा की। उन्होंने जुलाई में होने वाले आगामी यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के महत्व का भी उल्लेख किया। ये समिट एक बिजनेस इवेंट से बढ़कर अफ्रीका के भविष्य पर विश्वास का प्रतीक है। अफ्रीकी प्रतिभा, ठेकेदारी और अफ्रीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाने का अवसर है। ये निवेश को बढ़ावा देने, साझेदारी को मजबूत करने और अफ्रीकी व्यापार के लिए नई संभावनाएं विकसित करने का अवसर है।
2: स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अफ्रीकन बिजनेसेस एंड यंग एंटरप्रेन्योर।
1: ये शाम अफ्रीकी एकता, ऐतिहासिक विरासत और आर्थिक चुनौतियों के नाम रही।
0: रेपो रेट में बदलाव नहीं होना चाहिए था। विपक्ष नेता जोली जोगो ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। आज पोर्ट लुइस में आयोजित प्रेस सम्मेलन में उन्होंने मंत्री पत्रिका सियावादेन के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। जोली जोगोत का कहना है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर की गई राशि कोविड महामारी के दौरान जनता की मदद के लिए इस्तेमाल की गई थी। अन्य खबरों में, कई श्रमिक संगठनों ने कल एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसके दौरान विदेशी कामगारों के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठनों ने उनके लिए बेहतर नौकरी परिस्थितियों की मांग भी की। इसके अलावा आने वाला बजट, बढ़ती महंगाई और 40 घंटे कार्य प्रणाली जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दासा अपालास्वामी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
3: प्रेस के समक्ष कॉन्फ़ेडरेशन दे सेक्टर पब्लिक ए प्रिवे ने मॉरिशस द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉर्म की दूसरी घोषणा को अपनाने के दौरान किए गए परहेज पर सवाल उठाया। श्रमिक संघ ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित भर्ती प्लेटफॉर्म की भी आलोचना की। उनका कहना है कि ये कुछ सुरक्षा उपायों और विदेशी श्रमिकों के अधिकारों को नजरअंदाज करता है। सभी भर्ती ईडीबी से होती है, यानी श्रम मंत्रालय के तहत ये नहीं आती है, यानी श्रम मंत्रालय के किसी भी नियम के तहत ये नहीं आती है। दूसरी ओर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन बेहतर प्रक्रियाओं की मांग कर रही है, ताकि ये तय किया जा सके कि कुछ क्षेत्रों में वास्तव में श्रमिकों की कमी है भी या नहीं।
4: Importation de travailleurs étrangers. Mais bien au moins une procédure.
3: हम विदेशी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या मॉरिशन काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं या काम नहीं करना चाहते। 40 घंटों के कार्य सप्ताह पर भी बात चली। कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन से राधाकृष्णा साजन ने कहा कि सख्त निगरानी जरूरी है, ताकि विदेशी कामगार अवैध तरीके से यहां न रह पाएं।
5: Nous besoin travailler migrant bien sûr, mais travailler migrant pas capable illégalement dans Maurice.
3: हमें प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन उनकी स्थिति अवैध नहीं होनी चाहिए। सख्त कदम चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं।

0: जीवन व्यापन में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त कंपेंसेशन देने की मांग की गई, खाद्य सुरक्षा और कानून सख्त करने की मांग भी की गई।
1: कई हफ्तों के रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ORM1 पर प्रसारित बिग BYD विन प्रतियोगिता का परिणाम आज शुक्रवार 22 मई को घोषित किया गया। राधा कृष्णा गुप्ता सीसन ने ग्रैंड फिनाले जीतकर एक नई BYD डॉल्फिन सर्फ कार अपने नाम की। अप्रैल में शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने दर्शकों को अंतिम लाइव मुकाबले तक बांधे रखा। आखिरकार सभी प्रतियोगियों के बीच राधा कृष्ण गुप्ता सीसन विजेता बनकर उभरी। कहानियों की दुनिया में नन्ही आवाजों ने कल्पना, भाषा और अभिव्यक्ति का सुंदर संगम पेश किया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए हिंदी कहानी कथन प्रतियोगिता के प्रारंभ दौर का अंतिम आयोजन किया गया। देश के चारों जोन्स के स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
2: इस कहानी की शिक्षा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता।
1: कुल करीब 100 नन्हे प्रतिभागियों ने अभिनय, आवाज में उतार चढ़ाव, चित्रों, मिमिक्री और विभिन्न प्रॉप्स का उपयोग कर अपनी कहानियों को जीवंत बना दिया।
3: जब शेर शिकार कर रहा था, वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा बोला,
4: जब मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपकी उदारता।
1: उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। इन कहानी कथनों के माध्यम से नैतिक मूल्यों, सामाजिक विषयों और प्रेरणादायक संदेशों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने ईमानदारी, दया, साहस, समय और सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित कहानियाँ सुनाई।
5: मैंने शेर और चूहे की कहानी सुनाई। इस कहानी में मुझे 2 दिन लगे और मेरी बहन जी ने सहायता दी। इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, जैसे एक जंगल, एक शेर और एक चूहा।
6: आओ सुनिए यह कहानी, ना ही राजा ना ही रानी। मेरी कहानी है, छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, सबकी दुलारी थी। अगर माँ व्यस्त होती तो पिताजी खाना खिला देते, पिताजी दफ्तर में होते तो दादा दादी की गोद में मस्त, चाव से भोजन का आनंद और चैन की नींद। ये कहानी इसलिए चुनी क्योंकि हमारी कक्षा में और अनेक पाठशालाओं में बहुत बच्चे हिंदी और भोजपुरी को भूल रहे हैं, जो हमारी शान है, और इसको भूलेंगे तो हमारी शान गायब हो जाएगी। प्राचीन युग, आधुनिक युग और भविष्य युग में भी जय हिंदी और जय भोजपुरी होती रहेगी।
7: 10 दिन पहले अध्यापिका जी ने एक स्टोरी बनाई थी, सच्ची दोस्ती, सो मैंने उस पे रिवाइज किया।
8: ये कहानी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि लालच पूरी बला है और हमें दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए।
1: हिंदी स्पीकिंग यूनियन के इस सराहनीय पहल ने बच्चों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
9: छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहानी विधा से बहुत प्यार है, तो संगठन चाहता है कि बचपन में बच्चों को अभी से अगर वे कहानी सुनाना पसंद करेंगे तो साहित्य के प्रति, क्योंकि कहानी तो साहित्य की एक विधा है, उस लिटरेचर के प्रति उनकी रुचि जागेगी। तो उद्देश्य यही है कि आत्मविश्वास से आप मंच के सामने आइए, हिंदी में कॉन्फिडेंस से बोलिए, अपनी कहानी सुनाइए, मूल्य समझाइए लोगों को, और दूसरे बच्चे भी आपको जब सुनेंगे तो साथ साथ सीखेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे।
1: रचनात्मकता, आत्मविश्वास और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम से भरपूर ये प्रतियोगिता बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ साथ हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का एक सुंदर प्रयास साबित हुआ, जिसका फाइनल अगले 28 मई के लिए निर्धारित है। मॉरिशस के हाजी अब सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और कई शहरों में हज से पहले की आखिरी तैयारियां चल रही हैं। 24 मई से शुरू होने वाले हज में इस साल करीब 1500 मॉरिशन हिस्सा ले रहे हैं। इस पाक सफर को लेकर हज अदा करने वाले लोगों में खुशी और खास उत्साह देखा जा रहा है। कोयल सितल की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।

0: लगभग 1500 मौर्शन हज यात्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हज जो इस्लाम का पांचवा स्तंभ है, जिसे सब्र और इबादत की भावना के साथ किया जाता है।
1: Il y a des affaires qui sont essentielles dans nous la vie, vu qu'il y a un pilier pour nous.
2: Nous, il y a une manière parce qu'il nous gagne l'invitation, ça qui est plus complice, peut-être qu'avoir une incapabilité financière ou la santé, mais si je n'ai pas gagné l'invitation, je ne vais pas pour venir.
1: Si je gagne l'occasion, venir jeune, définitivement venir, parce qu'il demande beaucoup de courage.
3: En tant que mon monsieur, pas attendre, pas causer, mon garçon, il accompagne moi, il amène nous. Mais je suis bien content de venir avec ce groupe-là et je suis satisfait. Toutes les bonnes affaires, tout passe bien.
0: हज की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, अंतिम तैयारियां जारी हैं। मॉरिशस हज मिशन के सदस्य मंत्री शकील मोहम्मद के साथ मीना और अराफात का निरीक्षण दौरा कर चुके हैं, ताकि मॉरिशन हाजियों के स्वागत, आवागमन और मार्गदर्शन की सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा सके। ये सब सऊदी अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
4: Dans ce monde que tout peut vivre, tout peut augmenter, mais avec la négociation dure que M. Ayoub Saab fin a mené, chaque pèlerin fin paye 500 rial en moins.
0: ऐसे समय जब सब कुछ बढ़ रहा है, सब दाम में वृद्धि है, वही कठिन बातचीत की बदौलत हर एक हज यात्री ने 500 रियाल कम चुकाया है गत साल के मुकाबले, लेकिन सेवा बेहतर है, एसी है, शेल्फ्स की भी सुविधाएं हैं। हर 24 से 29 मई तक चलेगा। इस साल दुनिया भर से 2 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान मक्का पहुंचे हैं। इस रूहानी यात्रा को पूरा करने के लिए मॉरिशन की तंबू एक दूसरे के करीब होगी, ताकि इस यादगार ठहराव के दौरान बेहतर समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन हो सके।
5: विदेश में चांद पर भारत की ऐतिहासिक उड़ान को अब दुनिया ने भी सबसे बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन को प्रतिष्ठित 2026 गॉडॉट एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचा था। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के पास चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। और वहीं पर झुलसती धरती और आग, उगलता आसमान भारत में गर्मी परेशानी का कारण बन गई है। सूरज की तपिश अब लोगों पर भारी पड़ रही है। भारत के उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म इलाका बना रहा, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर।

मौसम का हाल सुनिए। आम हालत मास्कारोइंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर आज रात से सामान्य तथा ठंड हवाओं का बहाव है तथा दक्षिण से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, शाम के समय बादल घिराएंगे और रहकर वर्षा होगी, विशेषकर देश के आधे दक्षिणी भाग में और पूर्व एवं ऊंचाइयों पर। चंद जगहों पर कोहरे छाए रहेंगे और बाद में हल्की बारिश होती रहेगी ऊंचाइयों पर, अन्य जगहों में आसमान साफ होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात के दौरान हवा और जोर पकड़ेगी तथा चंद जगहों में झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में विशेषकर पश्चिम और दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है।

तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:39 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:34 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और साथ में कंसल पर हमारे सहयोगी शिव का भी। सुनने वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं साथ देने के लिए। अब बढ़ती है शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एरोस्लिन पेंडीपापाई में सैतालीस साल की 47 ईयर्स ओल्ड की श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें अजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार को सुबह 10:30 बजे उनके घर पेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10:30 AM। रुद्बासे काट्रोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय कुमार करमचंद जबू जिन्हें कुमार के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले अवनी कोलविल बेलरोज रहते थे की मृत्यु हो गई है और वे पहले काट्रोबोन नगर पालिका में काम करते थे। उनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता जब्बू के घर काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 3:30 PM। नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट लुइस में 80 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सावित्री दलू जिन्हें अमृता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके भतीजे अश्विन दलू के घर पोर्टली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगवॉक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। टेम्पल रोड बुबुआ मोका में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद भट्टू जिन्हें पोगरिये के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई प्रीतम भट्टू के घर बुबुआ मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंसा सैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। पुचित काबान रोड कौंडमास्क पावे में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री केवल भट्टू जिन्हें अनिल सुफेबिस के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौंडमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास्क की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11:30 AM। नंबर 14 रूट प्रिजों मोरोश बुबासे में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती सीता जिन्हें प्रतिभा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सुबह बेबी चंद्रगासन के घर बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। रॉय रोड बायाश मोताइलोंग में 68 साल की 68 ईयर्ज़ ओल्ड की श्रीमती नालिनी बहुगा पैदाशनम पदारत और जिन्हें नलिनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके पति श्री सुभाष बहुगा के घर बयाश मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेव के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। एरोस्लिन पेंडीपापाई में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें अजय के नाम से भी ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार को सुबह 10:30 बजे उनके घर पेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन

0: नमस्कार, इस समय शाम के 6:40 हुए हैं। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है रेडियो मनोरंजन पर।
1: RM3 रेडियो
0: रेडियो मनोरंजन पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों का प्रोग्राम नई सोच। चलिए नई सोच हम अपनाएं और नए रास्तों को भी अपनाएं। जो दर्द देते हैं रास्ते, उन रास्तों से हटकर हम नए रास्ते चुनें, नए रास्ते बनाएं और उन्हें अपनाएं। नई सोच कार्यक्रम आप लोगों के नाम। चलिए जरा जीवन को एक सरगम बना ले हम। जीवन हमें कई ऐसे रास्ते दे देता है कि हम उन रास्तों में उछलते निकलते हैं। पथरीले रास्ते होते हैं वो, और इन पथरीले रास्तों को अगर हम अपने हाथों से चिकना बनाएं, ठीक से बनाएं, तो ज़रूर हम बना पाएंगे। इतना विश्वास रखें। इस विश्वास के साथ ही आगे चले हम, चलते जाएं हम।

चलिए जरा जिंदगी की ओर ही ध्यान देते हैं। दो पल की होती है ये जिंदगी, और दो पल की इस जिंदगी को हम किस तरह से एक हसीन पल बना सकते हैं।

चलिए जरा हम उस ओर देखते हैं, उस ओर देखते हैं कि जहाँ कितने लोग मिले हमें और कितने लोग चले गए, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहती हैं। चाहे वो बिछड़ गए होते हैं, पर उनकी यादों के सहारे हम अपना जीवन बहुत प्यार से बिताते हैं। चलिए आप इन्हीं लोगों की यादों में अवश्य

0: बस यहीं पर समाप्त होता है आज का हमारा ये सफ़र, नई सोच कार्यक्रम का सफ़र। नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों को हमने कुछ ऐसे भाव भरे गाने सुनवाए जिसके ज़रिए मन थोड़ा हल्का भी हो जाता है और मन थोड़ा हिम्मत भी पा जाता है। ये है रेडियो मनोरंजन, आपका चैनल।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: दिलों की आवाज
1: लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम दिलों की आवाज कार्यक्रम। और दिलों की आवाज कार्यक्रम में हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। आप जहां भी होंगे हमसे फरमाइशें कीजिएगा। 5250-6200 पर आप फिलहाल फोन कीजिएगा, माफ कीजिएगा, SMS कीजिएगा और आपके फोन भी हम लेंगे 4028070 पर। तो चलिए जरा हम पेश करते हैं ये पहला गाना आप लोगों के लिए। ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में है। जुनून मूवी का ये गाना है। उम्मीद करते हैं इसे सुनकर कुछ यादों के सहारे आपका ये पल बहुत प्यारा हो जाएगा।

नाम तो हमें भी लिखा हुआ मिला है, हम पढ़ने वाले हैं नाम, और सुदेवी जी की तरफ से पढ़ने वाले हैं ये नाम। बाकवा की सुदेवी जी ने मांगा है गाना बासीघर मूवी का, और उन्होंने ये गीत मांगा है थियोले की दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के विमल, वर्षा, वीर, अन्निया, मालेगा के राम रतन परिवार के लिए। तो चलिए, हमारे सभी श्रोताओं के नाम भी किया है सुदेवी जी ने ये गाना, चलिए एंजॉय कीजिएगा इसे। ये है गाना कुमार सानू की आवाज़ में, और बासीघर मूवी का ये गाना आप कुमार सानू के साथ साथ अन्नू मलिक की आवाज़ में भी सुनिएगा।

0: continuous music. RM3.
1: तेरे संग यारा,
2: ये गाना आप आतिफ असलम की आवाज़ में सुन रहे हैं। नेहा जी की फरमाइश है ये। पिछले खत की नेहा जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पति

चलिए जरा हम गायत्री जी की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। गायत्री जी पिछवेजे सैंपिया से मांग रही हैं गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, प्यार किया तो डरना क्या मूवी का ये गाना है। और इस गाने की फरमाइश गायत्री जी ने अपनी बहन अमृता के लिए की है, उनकी बेटियों के लिए नेहा, क्षिति और दिव्या के लिए। उन्होंने अपने भगीने सुधीर और कमलेश के लिए तथा बहू सुधा के लिए ये गाना मांगा है, अपनी भाभी के लिए और उनकी बेटियों के लिए गिरिशा और मेधा के लिए।

0: है मोहब्बत का नगमा जुबां पर ना आता।
1: चलिए दोस्ती निभाने की ये राह चुनते हैं हम और दोस्ती निभाते हैं हम गानों की फरमाइशों को पूरा करके। और ये गाना हम पेश करते हैं ललिता जी की पसंद का, दोस्ती मूवी का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिएगा। ललिता जी की तरफ से उनकी बहनों के लिए, सुदेवी, देवीना, ज्ञानी की तरफ के लिए, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी के लिए, सुखलाल मौसी और उषा लुकाना तथा माला राम जावन के लिए।

और चलिए जरा हम जैसे को तैसा मूवी का ये गाना सुनते हैं और इस गाने की फरमाइश एक माँ ने की है, वो माँ है पाकी नंदा जी। नंदा जी ने गाना अपने पूरे परिवार के लिए मांगा है, पुनीता परिवार के लिए, गणेश परिवार के लिए, बहू दिव्या के लिए, बेटे आशील अविनाश और अभिषेक के लिए, बेटी अश्विना के लिए, गुल्लू और अरवी के लिए और अपने पति दीपक जी के लिए।

और अब चलिए जरा श्रीनल की पसंद का गाना पेश करते हैं। उन्होंने शादी की मुबारकबाद देता हुआ ये गाना मांगा है। श्रीनल जी ने अपने कजिन रोशन देवपुल जो कोयचे रहते हैं उनको तथा दीपशिका को शादी की मुबारकबाद दी है। उनका सिविल मैरिज हुआ है आज और इस सिविल मैरिज पर उन्हें भाई श्रवण की तरफ से भाभी कृति, अभिनव, कियान, नाविया और तिलक फैमिली की तरफ से, मौसी कमला की तरफ से, मौसा अनिल की तरफ से, कजिन शिक्षा और ध्रुति तथा श्री नल स्पेशली की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रोशन जी और दीपशिखा जी। आपको आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत मंगलमय मिले, यही हमारी उम्मीद, श्रीनल की उम्मीद।

और चलिए जरा हम गुलशन जी की पसंद का गाना आप तक पहुंचाते हैं। समय 8:15 है और हमारा आपका साथ है आपके दिलों की आवाज़ के ज़रिए। और आपके दिलों की आवाज़ों में हमें वो गाने मिल रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए ज़रा गुलशन जी की पसंद का ये गाना हम पेश करते हैं। उन्होंने ये गाना मांगा है अपनी माता जी प्रभा के लिए, बहन दीक्षिता के लिए, आयशा के लिए, भोला परिवार के लिए और हमारी सखी

0: हंसने
1: हमें तो
0: के लिए।
1: पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
2: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
3: कयामत कयामत कयामत।

चलिए जरा आपके लिए हम प्यार किए जा मूवी का ये गाना पेश करते हैं। हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से रफीक मोहित जी तायक रहते हैं उनकी तरफ से, और फिनिक्स की रेहाना जी की तरफ से, और ये गाना हम बजवा रहे हैं बदवाग विदेशी जी के लिए जो तायक के रहने वाले हैं, और जिन्होंने मांगा है ये गाना अनुषा खेदन जी के लिए जो मौताबा की रहने वाली हैं।

और इस बार चलिए जरा हम कयामत से कयामत मूवी का एक गाना आप लोगों को सुनवाते हैं। ये गाना थोड़ा नटखट नटखट पन वाला गाना है। इस गाने की फरमाइश की है विद्या जी ने और उन्होंने ये गाना मांगा है अपने पति राजीव के लिए।

चलिए हम आपको सुनवाते हैं आया सावन झूम के मूवी का गाना और इस गाने की फरमाइश पोएटो पीमो से आई हुई है। जे के सुकन जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपनी माता जी सोना के लिए, मौसी सिवंती के लिए और पोएटो पीमो के पूरे सुकन परिवार के लिए।

कहीं माँ जी को चलने की इल्तिजा की जा रही है तो कहीं साथी से चलने की इल्तिजा की जा रही है। चलिए ज़रा हम सोनू निगम की आवाज़ में सुनते हैं ये गाना। इस गाने की फरमाइश की है वीना जी ने, जो रहती हैं कथोपोन, उनकी तरफ से ये गाना उनके पूरे परिवार के लिए, ख़ासतौर पर उनकी बहन संध्या के लिए। तो चलिए सुने हम ज़रा सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज़ें।

और अब चलिए जरा हम इब्राहिम जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। पोर्टलिस के इब्राहिम जी ने मांगा है ये गाना, ध्यान दीजिएगा इब्राहिम जी, ये गाना है बरसात मूवी से लिया गया और लता मंगेशकर तथा किशोर और तथा मुकेश की आवाज़ में है ही है, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों का ये गाना बरसात मूवी से लिया गया इब्राहिम जी के लिए पोर्टलिस के।

0: तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं।
1: संजय जी ने मौत ऑस्ट्रेलिया से गाना मांगा है और ये गाना कुमार

दिल का अकेलापन जो दूर करता है उसे दिल का साथी कहते हैं और दिल का ऐसा साथी इस गाने में आपको नजर आएगा। ये है सुरक्षा मूवी का गाना और इसकी फरमाइश की गई है अनुषा खेतन जी के लिए जो मौत बाकी रहने वाली है बदवाग विदेशी जी की तरफ से।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आवाज दिलों से जब निकलती है तो सीधे दिल तक पहुंचती है। चलिए जरा हम दिलों की आवाजों को आप तक पहुंचाएं, आपके दिल तक पहुंचाएं। हम पेश करेंगे आपके लिए ब्रह्मचारी मूवी का गाना, और ये गाना हम बिसेसर परिवार के लिए पेश कर रहे हैं, सूरज शर्मा बिसेसर, सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। सो थ्रिल के सूरज, निशाल, सुखलाल मौसी, नीतूषा जी और हमारी पूरी टीम के लिए मांगा है ये गाना सूरज शर्मा सजादा जी ने।

चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ फरमाइशों का ये सिलसिला बहुत अच्छा मोड़ ले चुका है, और इस मोड़ पर हम अनीता जी की पसंद का गाना पेश करेंगे। अनीता जी ने फ्लिक ऑफ रॉक से मांगा है ये गाना, उन्होंने मांगा है फिल्म सिलसिला का गीत, और ये गीत अपने पति राज के लिए, बेटे आंतिश अंकुश, बहू मनीषा अशीमा, पोती हिमेशा आदिया और पोते अंश के लिए मांगा है उन्होंने। चलिए जरा आपकी पसंद का गाना आप तक पहुँचाएं हम अनीता जी।

आशा जी आप हमारा साथ दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कटेज से आशा जानू जी ने मांगा है ये गाना फिल्म आजा मेरी जान से, अपनी मामा कुमारी के लिए, नेफ्यूज शुभम और ऋषभ के लिए, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी।

चलना है आपके साथ हम सफर बन के आपके एंटरटेनमेंट के इस सफर में आपके हम सफर बने हुए हैं हम और आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जरा हम पॉम्पलेमुस चलते हैं पॉम्पलेमुस के सचिन जी की फरमाइश लेकर। तो सचिन जी आपकी पसंद का गाना है स्टार मूवी का ये गाना जोहेब हुसैन की आवाज़ में और ये गाना आपके नाम।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: इस समय रात्रि के 9:15 हैं और हमारी आपकी मुलाकात दिलों की आवाज प्रोग्राम में हो रही है। पेश करते हैं हम फिल्म प्यार तो होना ही था मूवी का ये गाना। इस गाने की फरमाइश राकेश जी ने की है अपनी पत्नी कामिया के लिए और उनकी पत्नी की तरफ उनकी पत्नी के लिए और उनकी बेटी स्नेहा के लिए। चलिए जरा हम कौफ खो के हमारे श्रोता के नाम

और चलिए जरा बढ़ते बढ़ते चलते हैं, बढ़ते हुए हम पेश करते हैं शास्त्री बोलो माली जी की पसंद का एक गाना, और ये गाना आप सुनिएगा फिल्म सफर से लिया गया, किशोर कुमार की आवाज़ का ये गाना है। चलिए ज़रा ये गाना एंजॉय करते हैं हम शास्त्री बोलो माली जी की तरफ से उनके सभी जान पहचान वालों के लिए।

55 मिनट हुए हैं, वैसे तो 9 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहता है दिलों की आवाज़, लेकिन ये सफ़र आज थोड़ा लंबा ले जाएंगे हम, 9:15 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप लोग अपनी फरमाइश अभी भी कर सकते हैं और हम फिलहाल तो पेश करेंगे दिल तेरा दीवाना मूवी का गाना। हरीश जी की पसंद का ये गाना है, हरीश जी ने ये गाना मांगा है अपने सभी दोस्तों के लिए। चलिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें सुनते हैं हरीश जी की फरमाइश पर।

हमारी आपकी ये मुलाकात है और हमारी आपकी इस मुलाकात में हम आपको सुनवाएंगे इस बार बड़े दिल वाला, माफ कीजिएगा,

वो गाना जिसमें बहुत सारी दुआएं हैं जी हाँ ये गाना हमने लिया है राहें बदल गए मूवी से और इस गाने में बहुत सारी दुआएं हम दे रहे हैं देवयानी जी को जिनका जन्मदिन था कल फ्राकी देवयानी जी के लिए जन्मदिन की मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से

तो चलिए अब्बू जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। वाकवा के अब्बू जी ने मांगा है तलत महबूब की आवाज में ये गाना, और इस गाने को अब्बू जी ने चलवाना चाहा है आफेज जी के लिए, असलम, आयाज, जायान, जाहिरा, काला छोटी, रईस और उनके दोस्त अपी और उनकी पत्नी के लिए।

तो बस हम अंतिम गाना पेश करते हैं हमारे दिलों की आवाज कार्यक्रम का, दिलों की आवाज कार्यक्रम आज हमने थोड़ा और लंबा चलाया, 9:15 तक चलेगा ये प्रोग्राम और इस समय 9:10 होने को है और अंतिम गाना हम पेश करते हैं स्नेहा पंत की आवाज में, माँ पर आधारित ये गाना है। हम ये गाना नाम करते हैं उमा जी के, फौजी साहब की उमा जी के नाम ये गाना करते हैं, बल्कि उनकी तरफ से ये गाना उनकी स्वर्गीय माता जी के नाम करते हैं और उनकी बड़ी बहन के नाम करते हैं। बस इसी गाने के साथ हमारी आपकी मुलाकात समाप्त होने वाली है इस प्रोग्राम में, यानी कि दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में, और इसके बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जो रेडियो मॉरिशस से प्रसारित होगा। इसलिए अगर आप फरमाइश करेंगे, बल्कि फरमाइश कीजिएगा, तो नंबर बदला हुआ होगा, 5251-7005 होगा आप हमारे फरमाइशों के लिए, हमारे SMS के लिए और WhatsApp मैसेजेस के लिए, और फ़ोन करने के लिए आप यूज़ कीजिएगा नंबर 4028085। तो हम ऐसे रेखा आपका साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे 11 बजे तक। फिलहाल तो अंतिम गाना सुनिएगा दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का, और लेकर आएंगे आपके लिए हम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते सबको, के हमने के सब श्रोता लोग के और हमने के श्रोता लोग के स्वागत भी करते हैं जहाँ हमने के कार्यक्रम है भोजपुरी तड़का में। हम सुरेखा तड़का तिल लेके आओ अब वही सब गाना जिनके फरमाइश करवा जा। चलो संगे संगे रह जाए 11 बजे ले कभी 9:16 होल बा 11 बजे ले संगे संगे रह जाओ और तोहर फरमाइश पूरा करब जा। चलो हम सबसे पहला तो लोग एगो गमठवाला गीत सुनवाओ अब जा, रोशन सदा सिंह जी के गमठवा होला गाना। चलो सुनिए जा सबसे पहला।

भोजपुरी कमेंट करते रहिए जा, भोजपुरी के ही संगीत में घुलते रहिए जा, और यहाँ के कार्यक्रम में तो भी भाग लेते चलिए जा, भाग ले ले हवन। सबसे पहला आत्माराम चाचा जी, आत्माराम जी बेलिया से मंगले हवन। साहिल जगारू जी के गावल गाना, साहिल जगारू जी के गावली गीत। आत्माराम जी मंगले हवन। अपन बहन प्रभावती, बहन ललिता, बहन सुदेवी और बहन छोटी खातिर और पूरा स्नो परिवार खातिर बेलिया के

अब चला बढ़ी जागे बढ़ते बढ़ते हम गिरीश रूपचंद जी के गावल गाना सुनी जा ललिता जी के पसीन पर थयोले के ललिता जी मंगले हवन गाना अपन बहिन सुदेवी खातिर देवयानी ज्ञानी खातिर बहिन छोटी जी प्रभावती जी खातिर हरीश जी खातिर और आत्माराम जी खातिर सुखलाल मौसी और उषा लुकाना माला राम जवन खातिर

और चला अभी कुछ सुनी जा हमने प्रवेश सहाय जी के गावेली को गाना और ये गाना हमने अनीता जी खातिर बजवावत है जा अनीता जी मदालबिया से इतु परिवार खातिर मंगले हवनी गाना गोगा परिवार महादेव परिवार लालजी परिवार खातिर चला सुनी जा प्रवेश सहाय के खूबे जोली बाछू कर गया

और आगे बढ़ब जा तो हमनी के दादा दादी के कहानी सुनब जा, हमनी के पूर्वज लोग के कहानी सुनब जा, गासन सिंगारो जी सुनई हन हमनी के दादा दादी लोग कैसे हमनी के इस देश में अइलन जा और कितना दुख सहलन जा, बकिर हमनी के देश के प्रगति के राह पर जरूर लेके गइलन जा। चला सुनी जाई गाना गासन सिंगारो जी के गावल सुनीता जी के अनीता जी के पसंद पर क्लिक ऑफ लाख से अनीता जी मंगलवानी गाना अपन बहन शोभा खातिर अनुराधा और लक्ष्मी खातिर। चला हमने दादा दादी के कहानी सुनी जा गासेन सिंगारों जी से।

दादा की कहानी सुनने के बाद चला हमने सुनीता ननकुज की आवाज़ सुनी जा सुनीता ननकुज गले हवन चमेली चमेली गाना और ये गाना बड़ी पसंद कर ले हवन अमृता जी पीतों से अमृता जी गाना मंगले हवन सोनिया और परी खातिर मीनाक्षी और विशान खातिर

तो चलो अब्रिकुत हमनी बढ़ की मसाला पिसेला छुटकी मंचली का करेला चला सुनी जाएगा ना। और ये गीत हमने बजावत है जकृत श्रीदेव जी के आवाज़ में, मंगले हवन ही गाना हमने से गायत्री जी ने बहुत से गीत मंगले हवन अवन बेटा अजय खातिर, महबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर और मोताइलोंग के भाभी शकुंतला खातिर, नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर।

आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावली गाना और ये गाना हमने बजाओ थे जा हमने के श्रोता शांति जी खातिर कटेज से शांति जी गाना माफ करिए तेहूर से शांति जी गाना मंगले हवन डागुचे के अपन मराठी परिवार खातिर अपर डागुचे के अपन भगिना ओम खातिर

और चला अभी कुछ हमने सुदेवी जी के पसंद के गाना सुनवावत है जाता हलो के वाकवा के सुदेवी जी मंगले हवन गाना विनोद सिद्धा जी के गावल ठेला ठेली गाना सुने खोजा थवन और बरजवाई खोजा थवन ही गाना अपन बहन ललिता जी खातिर लथियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना खातिर मालेगा के राम रतन परिवार खातिर और हमने के पूरा टीम खातिर तो बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी।

अब चला लाली के सिनेमा ले जाए ला जा संजय हरिचरण जी के गावल गाना चल लाली सिनेमा देखे और ये गाना हमने साजिद जी के फरमाइश पर चलावत हैं जाए रसिल के साजिद जी गाना मंगले और हमने के सब श्रोतालु के नाम और ये कनाडा मोगयाल के उनकर संगतिया सरोवर जी के नाम

अगला गाना और ये अगला गाना हमने चलावा था जा अबू जी खातिर यहाँ हमने के धोती पोथी पगड़ी विक्रम कुलाचंद जी के गावल गाना और ये गाना हमने बजाया था जब अबू जी बगल से हाफिज असलम आया जायान जाहिरा रईस कलाचुटी उनका दोस्त अपी और उनका पत्नी खातिर

और हमने के भोजपुरी तड़का तोहर खातिर प्रस्तुत करे थे जहाँ होइबा जा अपन पसंद के गाना जरूर मंगिया जा। अभी जो गाना हमने छड़ाओ अब जस फिर बाबू विश्वानी दीपुआ जी के गावल गाना ये हमने कौफुको के वीना और रवि जी खातिर बजावत है जा। वीना जी अपन पति रवि के नाम करत हमने गाना।

अब चला हमें प्रस्तुत करी ला जा पैसा के पीछे नहीं भागे होला सलाह और ये गाना हमने चंद्रदेव जी बुधन जी के गावल गाना सुनब जा और ये हमने से मानती जी मंगले हवन का तो बोन से अपन सब लैका लो खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम तोहर गाना से तड़का लगेला तोहर पर फरमाइश से तड़का लगेला एकर में और ये अभी गाना हमने बजाओ थे जग गाँव गुप के सुनीता जी बगल से उनकर कुंगुमा के बहिन विमाला जी खातिर राज दुलवा जी के गावल गाना और ये गाना हमने के बचत करे के सिखावेला चल सीखी जा हमने के कार्यक्रम में जो गाना हमने चलवाए खोजे थे जा वो गाना था तोहर खातिर हमने लेके अबे करब जा यह एक पैसा से बारह है ना और एक पैसा से बारह है ना गाना हमने बजा थे जा सुनीता जी के बगल से भी माना जी खातिर राज दुलवा जी के गाना

0: सुना जा ढेर त्राका नहीं लिया जा तोशियो बढ़ जाए जाबेद बढ़ जाए ढेर सोचिया नहीं
1: ढेर सोचा नहीं चिंता न करिया चिंता कर बात आगे नहीं बढ़ बा चिंता के दूर हटा के अपन समस्या के समाधान ढूंढा ये सबसे जस्ती है तो हर सेहत खातिर अच्छा रही। ये गाना हमने सुना थे जा धर्मदेव रंगू जी से और ये गीत हमने बजावा थे जा विजेश जी के पसीन पर कौ दुमास के विजेश जी गाना मंगलवन सब दोस्त लोग के न

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: आप चला सेल्फी निकाली ला जा, हमने विजय गणपत जी के गावल ही गाना सुनी जा, और इस सेल्फी के जो जमाना चला बा उस जमाना में थोड़ा सा अच्छा से जी ले ला जा। ये गाना हमने से मंगला हमारे लोग माउंटेन से विवेक जी, अपन पूरा परिवार खातिर और खासकर अपन बेटी खातिर खुशी खुशी रहन सेल्फी निकाले के।

चलसनीचा हमनी भुलक्कर गाना भुलक्कर कौन के देबा एगो चीज किने के तो दूसरा चीज किन के चल जावेला फीता बोलबा त जूता किन के चलाए आटा बोलबा त फीता किन के चलाए चलसनीचा हमनी गंगा राम सुनील जी के गावेली गाना

0: भोजपुरी तड़का
1: बस भोजपुरी तड़का में हमने तनी सन अच्छा अच्छा बात सोची जा कि दूसर के दिल नहीं दुखाओ अब जाता हमने के दिल के कितना खुशी मिली दूसर के बुरा नहीं चाह जा तो हमने के कितना भला हुई चला सुनी जा हमने सुखदेव रामखेलावन जी के गावली गीत और ये गीत हमने बजाओ थे जा सुनीता जी के नाम पर सुनीता जी रहलन खोबे और ये गाना मंगले हवन अपन भाई रवि के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: चले रावण कुमार जी के गावली को गाना सुनाते हैं, जा फटक फटक एकर से बचपन तो याद आ जाए। और पुराना जमाना में कौन कौन कैसे से कार्य हुआ तो लेकर बारे में भी थोड़ा बहुत हमने सुनब जा। और ये गीत हमने बजाओ थे जब बिंदिया जी खातिर, बिंदिया जी ये गाना मंगले हवन अपन बहन शोभा के नाम।

हमने के भोजपुरी तड़का के अंतिम गाना प्रस्तुत करे थे जा, और ये अंतिम गाना हमने शोभा दुमन जी के गावल प्रस्तुत करे थे जा। रात के 11 बजे हो लबा और ये 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम। सुनहरे पल कार्यक्रम लेके आए हैं विकास गौर, और हमने के कार्यक्रम यहाँ जा पर जब समाप्त हो जाए तो हर खातिर शुभ रात्रि के कामना बा और नमस्ते आवतला, फिर मिलब जा, नमस्कार।

नमस्कार और स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल। और जिंदगी की भागा दौड़ी से हम कुछ पल चुरा कर आपके साथ बिताने का इरादा रखते हैं। अगर आपके पास भी थोड़ा वक्त है तो शामिल हो जाइए इस बहुत ही खूबसूरत जर्नी में, सफर में, जहां पर यादें ताजा होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। हर गाने के साथ एक नई याद है ना, रेडियो पर अभी सुनहरे।

0: कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है। ऐसे वक्त में खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, वो चीजें जो आपको पसंद हो, फिर चाहे चाय की एक प्याली, हल्का सा संगीत और हो सके तो ढेर सारी बातें। अरे खुद से, यकीन मानिए जब आप बाहर नहीं अंदर मिलते हैं, जो खुद को समझ गया वो दुनिया को भी समझ जाता है। बस अपनी वैल्यू पहचानिए, आप बहुत खास हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: प्यार, इश्क और मोहब्बत।
1: वैसे मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती, कभी किताबों से, कभी बारिश से, कभी संगीत से भी हो जाती है। दिल को जो सुकून दे वही तो असली प्यार है। और प्यार में सबसे खूबसूरत चीज़ है एहसास। जहाँ शब्द कम पड़ जाएं वहीं से दिल की कहानी शुरू होती है।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के

0: जरा ओढ़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: रात काली अंधेरी जरूर होती है, लेकिन साथ में दिन जैसे जैसे समाप्त होता है तो एक नई सुबह। नई सुबह का मतलब एक नया मौका। कल क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, आज मुस्कुराइए और अपने आप को ये समझाइए कि एक बार फिर से कल सुबह होगी। आज फिर से सपनों को उड़ान देने का एक दिन है। चेहरे पर खूबसूरती

0: मुस्कुराहट लाने का दिन है क्योंकि हम उम्मीद का हाथ कभी छोड़ते नहीं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: चलिए इसी गाने के साथ अभी फिलहाल कार्यक्रम समाप्त होता जा रहा है और उसके बाद फिर से मुलाकात जल्दी होगी। बस आशा यही करते हैं कि गानों का भरपूर आपने लुत्फ उठाया होगा। ऐसी गानों का साथ देते जाइए, एमबीसी रेडियो का साथ देते जाइए। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है।